ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारी ये सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ

0: का विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
3: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

महान देश की महान परंपराएं, संस्कृति की विरासत, गौरव की धरोहर को हमें ही सहेजना है, संवारना और समृद्ध करना है। ये आह्वान है इस

एक सूर्य समस्त सृष्टि को प्रकाश देता है, चांद की शीतलता भी सबकी है, बहती हवा सबकी प्राणवायु बन जीवन देती है, कलकल बहता जल सभी की प्यास बुझाता है। ठीक इसी तरह वो परमात्मा भी एक है, जिसकी दया कृपा सब पर समान है।

प्रकृति के कण कण में व्याप्त है वो परम शक्ति और उसी शक्ति में समाहित है अखिल संसार। नाम रूप अनगिनत हों, पूजन अर्चन की विधि अनेकानेक हों, पर वो तो एक है।

हे दयानिधे, दीन बंधु कृपा निधान आपकी शरण में है। शरणागत पर कृपा करो भगवान, तेरे बिन किस ठौर जाऊं।

ये सच है, सुख आनंद के क्षण हमें व्यवहारिक भौतिक जगत की ओर आकर्षित करते हैं। ईश्वर की कृपा पाकर भी हम अनजान होते हैं, पर हमारी हर मुश्किल, कष्ट, दुख हमें उसके नजदीक ले जाता है। हमारी पीड़ा उससे जा मिलती है और हम कृपा सिंधु में ऊब डूब होने लगते हैं।

0: वंदना में अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण, सुरेश वाडकर, मुकेश, जगजीत सिंह और साथियों को। देशगान समूह स्वर में था।
1: वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया। आकाशवाणी भोपाल से लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, स्वर लक्ष्मी शंकर और रामकिशन चंदेश्री के।

उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने पांचों वाण छोड़े जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया।

0: रामकिशन चंदेश्री और लक्ष्मी शंकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन, विषय है संगम, आलेख राजेंद्र जोशी का।
1: अलग अलग दिशाओं से प्रवाहित हो रही सरिताओं के एक स्थान पर मिलन का बड़ा ही सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। सरिताओं के ऐसे मिलन स्थल संगम कहलाते हैं। इस तरह के संगम स्थलों की जहां एक परंपरागत और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, वहीं ये स्थल सामाजिक समरसता के पोषक भी होते हैं। हमारी संस्कृति में बहती हुई नदी के जल को शुद्ध, पीने योग्य और पवित्र माना जाता है। प्रत्येक नदी के अवतरण और प्रवाह की अपनी अपनी अलग कहानियां हैं। उद्गम से लेकर संगम में एकाकार होने तक इन नदियों के कछारों की भी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। पहाड़ों और पठारों से निकलकर मैदानी इलाकों में बहने वाली प्रायः हर बड़ी नदियों से विभिन्न क्षेत्रों से प्रवाहित होकर आ रही छोटी छोटी नदियां अठखेलियां करते करते एकाकार हो जाती हैं। संगम स्थल के पहले छोटी नदी तो अपनी पहचान रखती है, किंतु जैसे ही दोनों नदियों की जलधाराएं आलिंगनबद्ध होकर एक हो जाती हैं, वहां छोटी नदी अपने अस्तित्व को बड़ी नदी से जोड़कर अपनी पहचान खो देती है। संगम के बाद एकाकार हुई नदियां फिर बड़ी नदी के नाम से जानी जाती हैं। अमरकंटक से छोटी धार के रूप में निकली मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी का इतिहास, उसके तटों के आसपास की संस्कृति और उसका धार्मिक महत्व इतना प्रभावकारी है कि प्रतिदिन श्रद्धालु तटों के आसपास के गांवों, कस्बों और नगरों से आ जाते हैं और नर्मदा जल के स्पर्श से एक प्रकार का भावनात्मक सुख और पुण्य अर्जित करते हैं। इस बड़ी नदी में उद्गम से खंभात की खाड़ी तक अनेक क्षेत्रीय नदियां आकर आलिंगनबद्ध होती हैं। जिन जिन स्थलों पर नर्मदा और उसकी सहायक नदियों का संगम होता है, उन सभी संगम स्थलों का बड़ा ही सांस्कृतिक महत्व है। जिन जिन अंचलों में नर्मदा के संगम स्थल हैं, उनकी आंचलिकता से ये स्थल हमें परिचित कराते हैं। विशेष पर्वों, उत्सवों और त्योहारों पर संगम स्थल में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट

0: करने के लिए एकत्रित होते हैं। जब जब संगमों में स्नान का कोई पर्व आता है, वहां मेलों जैसी हलचल देखी जाती है। मूलतः भारत देश भावना प्रधान लोगों का देश है। यहाँ के लोग धर्म, संस्कृति, आध्यात्म और सामाजिकता की परंपराओं के संरक्षण में विशेष रुचि रखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है तीर्थराज प्रयाग में, जहां गंगा, जमुना और सरस्वती जैसी पावन नदियां परस्पर आपस में मिलकर हमारे देश की सांस्कृतिक एकता से संपूर्ण विश्व को परिचित कराती हैं। विशेष पर्वों के अवसर पर विभिन्न धर्मावलंबियों की भीड़ भी इस संगम स्थल की विशेषता है। प्रतिदिन त्रिवेणी संगम में लाखों श्रद्धालु स्नान कर अपनी आस्था और श्रद्धा प्रदर्शित कर पुण्य कमाते हैं। संगम स्थलों के जल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि दो विपरीत दिशाओं से बहकर आने वाली नदियों के परस्पर मेल से आगे प्रवाहित होने वाले जल भंडार का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संगम स्थल समाज के लोगों को परस्पर एक सूत्र में बांधकर घुलने मिलने का संदेश देते हैं और प्रेरणा देते हैं कि किस तरह आपस में जुड़कर एक दूसरे से आत्मसात हुआ जाता है। आस्था, श्रद्धा और विश्वास के ये संगम स्थल निश्चित ही हमें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जागरूकता का संदेश देते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था संगम, आलेख राजेंद्र जोशी का था और वचन स्वर डॉक्टर अरविंद सोनी का। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा, विषय है नींबू में कैंकर रोग का निदान। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर के सिंह।
2: किसान भाइयों, हम सभी को मालूम है कि खरीफ की फसल हो या रबी की फसल हो, इनमें पानी की जरूरत तो होती है, लेकिन अधिक पानी फसलों को हानिकारक भी होती है। इसीलिए कम पानी भी नहीं चाहिए, अधिक पानी भी नहीं चाहिए। तो बाग या खेत में पानी ठहर जाने से कई प्रकार के फफूंदजनक रोग फैलते हैं तथा कई प्रकार के कीट प्रकोप भी होते हैं। तो जैसे हम बात करें साइट्रस कैंकर, जिसको कि हम नींबू का कैंकर भी कहते हैं, ये जीवाणु रोग है जो वर्षा और आर्द्रता वाले क्षेत्रों में अधिक होता है और इसलिए इनके हमने देखा है कि ऐसी जगहों पर उनके पत्तियों के ऊपर, टहनियों के ऊपर, कांटे के ऊपर, फलों के ऊपर कुछ फफोले नुमे खुरदुरे पीले भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। अब इसके लिए ठीक है, बीमारी है, फैलती है, तो सबसे पहले इसके नियंत्रण के लिए हमें रोग ग्रसित जो भाग हैं उसको काट करके अलग कर देना चाहिए और कापर ऑक्सी क्लोराइड, ये फफूंद नाशक है और जीवाणु नाशक भी है, इसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो बहुत ही राहत मिलेगी। या यदि बाज़ार में फाइटोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम से भी एक फफूंद नाशक है, कीटाणु नाशक है, इसको 0.5 ग्राम या ये कहिए 500 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो बहुत राहत मिलेगी। आपको भी मालूम है कि जुलाई अगस्त में नींबू वर्गीय पौधों पर, खासतौर से नींबू, संतरा, मौसम्मी, ये इसके ऊपर एक नींबू की तितली, हम लोग बटरफ्लाई कहते हैं, लेमन बटरफ्लाई, उसका भी प्रकोप होता है। ये शुरू में इसके पत्तियों के ऊपर अंडे देती है और अंडे से इल्ली निकलती है। पहले शुरू में तो बहुत छोटी होती है लेकिन बाद में बड़ी होकर के बहुत पत्तियों को खा करके बहुत नुकसान करती है। तो इसके नियंत्रण के लिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके हाथ से पकड़ करके बाहर कर दें, उसको मार डालें, नहीं तो एक डाइपेल आता है, ये कहना चाहिए बहुत अच्छा कीटनाशक है, हालांकि कीटनाशक इसलिए नहीं कि ये बैक्टीरिया से हम तैयार करते हैं और बीटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, या साइपरमेथ्रिन कीटनाशक 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो इसी किली का अच्छा नियंत्रण होगा और आप नुकसान से बच जाएंगे। यदि साइपरमेथ्रिन नहीं है तो क्यूनाल्फास 25 cc, का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें और नियंत्रण होगा। आपके जानकारी के लिए मैं कह दूं कि ये की जो तितली उड़ती हुई आपको दिखाई देगी, रंग बिरंगी बहुत अच्छी सुंदर तितली दिखाई

0: दिखाई देती है। यही तितली खास तौर से निबू वर्गीय पौधों के पत्तियों के ऊपर ये अंडा रखती है, और जैसे तितली दिखे तो आप सचेत हो जाए, और सचेत होने का मतलब यही है कि आप उसका नियंत्रण करने के लिए तैयार रहें। और जैसे इल्ली दिखाई दे या अंडे दिखाई दे, बहुत सरसों के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर छोटे छोटे अंडे दिखाई देंगे, उनको जैसे इल्ली निकलती है एक स्प्रे, साधारण स्प्रे भी कर देंगे तो बहुत अच्छा नियंत्रण होगा। मैं कहना चाहूँगा कि नुकसान होने से पहले यदि आपने ये सब कम कर लिया तो आपकी पत्ती पूरा पौधा सुरक्षित रहेगा और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और न कोई अलग से खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले पहचान हमने एक ही चीज़ बताई, तितलियाँ, रंग बिरंगी तितलियाँ, बहुत बढ़िया तितली पंख फैला करके खूब उड़ती है, मतलब वो अंडा देने के लिए आ गई हैं, और उसको हमें अंडे से इल्ली निकलने के साथ ही उसको नियंत्रण कर लें। जब दुश्मन कमज़ोर हो तभी कर लीजिए, आपको कोई महंगी दवा या महंगी कीटनाशक इस तरह की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके फल फूल बहुत अच्छे रहेंगे। किसान भाइयों, ये मैं कहूँगा कि अगर इसके बाद भी फल नहीं गिरते हैं तो उसका भी हम तैयारी करते हैं, लेकिन ये मुख्य तौर से आपको ध्यान रखें, और पौधा अगर स्वस्थ है तो निश्चित रूप से आपका पैदावार भी अच्छा मिलेगा। धन्यवाद।
1: कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे नींबू में कैंकर रोग का निदान विषय पर जानकारी डॉक्टर के सिंह से। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। अब संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से।
5: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ता। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
6: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
5: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय UPI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान्, शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमंडलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्यां परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणां आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्तांग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उतवा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आंतरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति, यतः वैश्विक तैल वातेंधनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजन माध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोत् इति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरन्तरं गहनं भवति। डॉक्टर जयशंकर ह्यः बहरीन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः समापनम् अकरोत्। यात्रावधौ डॉक्टर जयशंकर बहरीन देशस्य राज्ञा हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यनेन सह मेलनं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है।

0: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। पहले आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:20 पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल होगा। कार्यक्रम में कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय भोपाल को स्वच्छ एवं हरित रेटिंग में राष्ट्रीय स्तर पर मिले द्वितीय स्थान पर प्राचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना और कुछ शिक्षक और छात्राओं के विचार आप जानेंगे। विश्व एलर्जी दिवस के संबंध में वरिष्ठ नाक कान एवं गला रोग विशेषज्ञ सत्य प्रकाश दुबे से की गई बातचीत होगी। और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित सेफ क्लिक अभियान 2.0 के बारे में पुलिस उप महानिरीक्षक श्री विनीत कपूर से की गई जानकारी आपको देंगे। कुछ बातों के साथ फिल्मी नगमे सुरमई सवेरा कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर अवधेश शिव प्रसाद त्रिपाठी के गाए कुछ गीत आप सुनेंगे। सुबह 9:30 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में होगा। जिले की चिट्ठी अपने निर्धारित समय सुबह 10 प्रसारित होगी। सुबह 10:05 पर महिला संसार कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर मालविका कानन का ख्याल गायन आप सुनेंगे। राग होगा देश। शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में डॉक्टर देवीदास पटेल से खरीफ फसलों के उन्नत बीज एवं बुवाई विधियां विषय पर की गई भेंटवार्ता प्रसारित करेंगे। ये थी जानकारी आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब संक्षिप्त रूपरेखा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। दिन में 11 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का प्रसारण होगा। आपकी फरमाइश मध्यान्ह 12 और दोपहर 2:30 पर। मध्याह्न 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक हंसना मना है की 7वीं कड़ी। दिन में 1 महिला कार्यक्रम होगा। दिन में 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे। सुगम संगीत का कार्यक्रम दिन में 1:45 पर और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। ये चारों कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6 प्रसारित होगा। रात्रि 8 कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे बंटवारा। ये नाटक रात्रि 10 आप सुनेंगे। लेखक

मुरलीधर बलवानी प्रस्तुत करता राकेश ढोंडियाल। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन होगा, राग होगा हमीर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर 2:00, शाम 5:33 पर, शाम 6:30 पर और रात्रि 8:15 पर। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपको पुनः याद दिला दें, रात्रि 10:00 आप सुनेंगे नाटक बंटवारा, लेखक मुरलीधर बलवानी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर अवधेश प्रसाद त्रिपाठी के गाए कुछ गीत आप सुन सकेंगे। शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में डॉक्टर देवीदास पटेल से खरीफ फसलों के उन्नत बीज एवं बुवाई विधियां विषय पर की गई भेंटवार्ता प्रसारित करेंगे।

कुछ बातों के साथ फिल्मी नगमे सुरमई सवेरा कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सन्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में करेंगे भूमि पूजन। प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए दोनों देशों के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और समुद्री संबंधों को रेखांकित किया। श्री मोदी ने द्विपक्षीय साझेदारी के लिए गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस विजन के 5 प्रमुख स्तंभ सभ्यतागत जुड़ाव, साझा विकास, सुरक्षा, समुद्री समृद्धि और ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दोनों का अनुभव वैश्विक स्तर पर प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने इंडोनेशिया के एमास 2045 विजन और भारत के विकसित भारत 2047 संकल्प को एक दूसरे का पूरक बताया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लॉन्च, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की और ब्रिक्स में इंडोनेशिया की सदस्यता का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ और भारत प्रशांत क्षेत्र को एक नई दिशा देंगे। श्री मोदी ने कहा,
1: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।

0: देश में सहकारी संघवाद को मजबूत करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की गरिमामय उपस्थिति में दशकों पुराने नर्मदा जल विवाद का कल सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया। नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता सरदार सरोवर परियोजना की निर्माण लागत साझा करने से जुड़े लंबित भुगतानों का वन टाइम सेटलमेंट करता है। गृह मंत्री श्री शाह ने कहा, इसे जल सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण राज्यों में आपसी समझ पड़ी है, जिससे राष्ट्रीय नुकसान को रोका जा सका है। इससे पहले अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल रक्षा, रेल और कृषि मंत्रियों से भी मुलाकात कर राज्य के विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी लियोगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की प्रमुख निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई द्वारा 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस नए संयंत्र में 272 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में यहाँ प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरणों का उत्पादन होगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि लियोगोंग वर्ष 2008 से पीथमपुर में कार्यरत है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह विस्तार मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक निवेश और विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेकिंग समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर, एसआई और सूबेदार के पदों पर भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। विभाग द्वारा कुल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें से योग्यता के आधार पर 436 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चुन लिया गया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में संजय परमार ने टॉप कर पहला स्थान हासिल किया है। इस बड़ी कामयाबी और भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने पर डीजीपी कैलाश मकवाणा ने खुशी जताई है। प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई जगहों पर खूब पानी बरस रहा है तो कुछ स्थानों में पानी की कमी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, जबलपुर और सागर सहित अधिकांश संभागों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। झाबुआ जिले में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। उधर मंडला जिले में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए कलेक्टर राहुल धोटे ने नर्मदा घाटों और शहर के जलभराव वाले इलाकों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घंटे सक्रिय रहने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं गुना जिले में 1 जून से कल तक कुल 232.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। आज पड़वानी, धार, गुना सागर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। कल रात नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया। बता दें कि शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मैच

बारिश की वजह से बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। सीरीज के आखिरी दो मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड का सामना करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस सांची के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। खंडवा जिले में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत मैराथन और साइबर रन का आयोजन कर नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षा ऐप के प्रति जागरूक किया गया। आगर मालवा जिले में आगामी सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग को अधिक से अधिक किसानों को फूलों की खेती के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। डिंडौरी जिले में युवाओं और नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आज एक दिवसीय तेजस कार्यशाला का आयोजन कर स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग पर मार्गदर्शन दिया गया। इंदौर जिले में आयोजित रोजगार मेले में 12 प्रतिष्ठित निजी कंपनियों द्वारा 300 युवाओं को विभिन्न पदों पर नौकरी के लिए चयनित कर रोजगार दिया गया। मंडला जिले में एमएसएमई उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए दो दिवसीय कंपोजिट वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी योजनाओं और डिजिटल कॉमर्स पर लाइव सेवाएं मिलेंगी। भोपाल जिले में नगर निगम ने जिला प्रशासन के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध अतिक्रमण हटाए और 5 जर्जर मकानों को जमींदोज किया। सिंगरौली जिले में बलिया नाला में कोयला युक्त दूषित पानी बहाने पर कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खदान प्रबंधन पर 63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। गुना जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द खरीदी के लिए 4 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां नोडल अधिकारियों की निगरानी में पारदर्शी व्यवस्था रहेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: नमस्कार भोपाल के सभी सुनने वालों को संजय श्रीवास्तव का नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आषाढ़ मास की 8 जुलाई 2026 की तारीख यानी एक और नए दिन की शुरुआत, और ये दिन आपके लिए शुभ समाचार लेकर आए। आपकी आशाओं, आपकी उम्मीदों को पंख मिले, आपके जीवन में खुशियों की बरखा होती रहे, हम बस इतना ही चाहते हैं। और बरखा की बात जब निकली है तो हम देख रहे हैं कि मानसून की आमद के बाद अब कभी तेज कभी रिमझिम का दौर शुरू हो चुका है और कहीं कहीं बाढ़ के हालात भी नजर आ रहे हैं। और प्रकृति के सौंदर्य का तो कहना ही क्या, बस आंखें एकटक निहारना चाहती हैं कुदरत के इस खूबसूरत हसीन आलम को। तो वो मानसूनी सीजन का आनंद उठाइए, बारिश, बूंदें, बादल, हवाएं और घटाओं के साथ उड़ान भरिए, अपने आनंद को दूना कीजिए। हाँ, एक काम और करते चलिए, क्योंकि बारिश का मौसम है और ये पौधारोपण के लिए भी काफ़ी मुफीद माना जाता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए अपने हाथों से पौधा रोपने के लिए आगे आएँ, साथ ही उनकी परवरिश का संकल्प भी उठाएं, क्योंकि आज रोपा गया नन्हा पौधा जब आगे चलकर वृक्ष का आकार लेगा और मनचाहा फल देगा तो वो पल आपके लिए बेहद अनमोल होगा। आम, जामुन, नीम, अमरूद जैसे कई फलदार और छायादार वृक्षों की आज बहुत ज़रूरत भी है, साथ ही औषधीय पौधों की भी मांग है। आपका ये प्रयास, ये कोशिश हमारे आसपास हरियाली को बढ़ाने में मददगार होगा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक अहम कड़ी बनेगा। तो आइए मौसम के मुताबिक वर्षा का मीठा राग मिलकर गुनगुनाएं।

0: आसमान पर बादलों का डेरा है, रिमझिम बारिश हो रही है और ऐसे में थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत आपके आनंद को और भी बढ़ा देगा, ऐसा हम इत्मीनान के साथ कह सकते हैं। गुलजार के बोल और खयाम की तर्ज में ढला यह गीत आशा जी की आवाज़ थी। और आज जी नमस्कार भोपाल में आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस के सेफ क्लिक अभियान 2.0 की। विश्व एलर्जी दिवस आज है, इस पर खास जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय को स्वच्छ हरित रेटिंग में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, इसकी चर्चा भी होगी। बस बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए नमस्कार भोपाल।
1: मैं हूं राजन मिश्र।
2: मैं हूं साजन मिश्र। आप सुन रहे हैं
1: नमस्कार भोपाल।
2: नमस्कार भोपाल।
0: इस अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से परिपूर्ण विविध रंगी कार्यक्रम में। नाम है नमस्कार भोपाल। 7:26 और 32 सेकंड हुए हैं। देखते हैं समाचार पत्रों की ताजा तरीन खबरें। पहली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के रणनीतिक, रक्षा और सांस्कृतिक संबंधों में एक नया ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को इंडोनेशिया के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा मेडल से सम्मानित किया गया। अगला समाचार काफी महत्वपूर्ण है, नियमित शिक्षक आने पर भी गेस्ट फैकल्टी नहीं हटा सकते। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी कॉलेज में नियमित शिक्षक की नियुक्ति होने पर वहां कार्यरत गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं सीधे समाप्त नहीं की जा सकती, पहले उसे किसी अन्य रिक्त पद पर समायोजन का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि गेस्ट फैकल्टी वैकल्पिक पद पर कार्यभार ग्रहण करने से इनकार करती है तभी सरकार उसके खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई कर सकती है। और मध्य प्रदेश की उपलब्धि से जुड़ा हुआ एक खास समाचार है, पांडुलिपि सहेजने और संरक्षित करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम। भारत सरकार की डिजिटल पहल ज्ञान भारतम अभियान में दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों की सूचना दर्ज करने और उनके संरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। अब तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से 3 जुलाई तक कुल 34,45,439 पांडुलिपियों का पंजीकरण किया जा चुका है। और डेंगू से जुड़ा समाचार ये है कि मध्य प्रदेश में 452 मरीज नियंत्रण के लिए बनाई गई टास्क फोर्स। मध्य प्रदेश में इस बार डेंगू का खतरा मंडरा रहा है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस बात को समझ रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश के सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे डेंगू नियंत्रण प्रोग्राम को सख्ती के साथ चलाएं। डेंगू बढ़ने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस बार बारिश का ट्रेंड कमजोर है। आप भी कोशिश कीजिए डेंगू से नियंत्रण के लिए

उपाय किए जा रहे हैं जो समझाइश आपको दी जा रही है उसका पालन करें। और खेल जगत में फुटबॉल का जोश बरकरार है। स्पेन 16 साल बाद अंतिम आठ में, मेजबान अमेरिका बाहर। डलास के खचाखच भरे स्टेडियम में स्पेन और पुर्तगाल के बीच खेला गया मुकाबला बेहद कड़ा और रणनीतिक था। दोनों ही टीमें निर्धारित 90 मिनट तक गोल करने के कई मौके बनाने के बावजूद गतिरोध नहीं तोड़ पाई। मैच जब एक्स्ट्रा टाइम की ओर बढ़ता दिख रहा था, तभी 91 मिनट में स्पेन के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मिकेल मेरिनो ने गोल कर इतिहास रच दिया। ये थी समाचार पत्रों की ताजा तरीन खबरें। हमें उम्मीद है कि आप होंगे अपने रेडियो सेट के नजदीक या फिर डीटीएच के माध्यम से या न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन और विव्स ओटीटी ऐप के द्वारा सुन रहे होंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। यदि आप किसी भी साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, जनहित में आपका कोई आयोजन है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुँचते हैं दूर दूर तक।

0: विकी विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म का गीत हमने आप तक पहुंचाया। विशाल मिश्रा की आवाज़ें थीं और साथ में थे साथी, और इस गीत को संगीत से संवारा सचिन जिगर ने। और नमस्कार, भोपाल में कुछ ही पलों में हम आप तक पहुंचाएंगे आज की पहली जानकारी। सुनते रहिए कार्यक्रम।
1: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा। इस वक्त आप भोपाल रेडियो का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सुन रहे हैं, नमस्कार भोपाल।

0: सुबह के 7:32 हुए हैं। नमस्कार, भोपाल में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित सेफ क्लिक 2.0 अभियान की। एक ऐसा अभियान जिसके द्वारा जनमानस को साइबर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना और दैनिक जीवन में सेफ डिजिटल हैबिट अपनाने पर जोर देना है। पूरे प्रदेश में 24 जून से इस अभियान की शुरुआत की गई है और आज 8 जुलाई को यह संपन्न हो रहा है। इस अभियान के अंतर्गत हुई कई गतिविधियों और उसके परिणामों के संबंध में चर्चा करने के लिए हमने बातचीत की है उप महानिरीक्षक मध्य प्रदेश पुलिस श्री विनीत कपूर से।
1: सेफ क्लिक एक जन जागृति अभियान है और इसके पीछे उद्देश्य यही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। साइबर क्राइम जो है आज की दुनिया में सबसे

0: कि नहीं दोगे, उससे क्या बात करोगे, उसकी बात में आओगे कि नहीं आओगे, ये आपकी परिपक्वता, आपकी समझदारी और आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी जानकारी है कि किस तरह की चीजें हो रही हैं। इसलिए लोगों को अवेयर करना ही सबसे बड़ा डिफेंस है, बड़ा हल है, सबसे बड़ा प्रिवेंशन है इस क्राइम को रोकने के लिए।
1: विनीत कपूर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि सेफ क्लिक 2.0 अभियान के खास खास बिंदु क्या रहे और आपने कौन कौन से क्षेत्र को ज्यादा फोकस किया ताकि लोग जागरूक हों और उनके साथ साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं ना हो।
0: सब लोगों में जा करके इसके बारे में जानकारी देना, स्कूलों में, कॉलेजेस में, बाजारों में, बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठानों में जहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग काम करते हैं, फैक्ट्रीज में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग अलग अलग ऑफिसेज में जा रहे हैं, सार्वजनिक चौराहों पर जा करके इसका प्रचार कर रहे हैं, हम स्कूल छात्रों को बोल रहे हैं कि आप इसको जानिए और आपके माध्यम से आपके माता पिता, आपके परिवार, आपके पड़ोस के लोग वो भी जाने। इस तरह से हम एक चेन रिएक्शन के माध्यम से इस जागृति को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है और हमें बहुत खुशी है कि मिलियंस ऑफ इंप्रेशंस हैं वो हमें सोशल मीडिया पे प्राप्त हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का हर जिला बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहा है। प्रतिदिन डीजीपी साहब इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैलाश मकवाना जी देख रहे हैं कि किस तरह से कौन से जिले पिछड़ रहे हैं, कौन से जिले आगे बढ़ रहे हैं और छोटे से छोटे जिले भी बढ़ चढ़ करके सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट लोगों से जाके मिल रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अभी हमने एक क्विज स्टार्ट किए, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस क्विज को करें, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी है, और ताकि उस क्विज को करते करते उनकी सिखलाई भी हो जाती है और एक हम भी टेस्ट कर लेते हैं कि कितने लोगों तक हम पहुंचे। बहुत लोगों को कई न्यूएंसेस नहीं पता रहते उसको, तो उनको वो पता चल पाए। सेलिब्रिटीज को हम फेस कर रहे हैं, अभी कृति सैनन जी जो बड़ी फेमस एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपना समय दिया और उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मध्य प्रदेश पुलिस को सेफ क्लिक के लिए बोला, इससे बहुत फर्क भी पड़ा है।
1: रोज के अखबारों की सुर्खियों में हम देखते हैं कि साइबर फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं, पैसों की निकासी करना, धोखे से पैसे को अपनी तरफ करना। पुलिस ने कितनी सफलता हासिल की है इन घटनाओं को रोकने के लिए और किस तरीके से अपराधियों को भी पकड़ा है?
0: जी, पुलिस जहाँ प्रचार प्रसार कर रहे वहीं पर पुलिस का प्रमुख दायित्व तो यही है कि जो अपराध हो जाए तो उसमें किस तरह से धरपकड़ करें, ये जानना बहुत जरूरी है। 1930 से हमारा 112 हेल्पलाइन है, वो जुड़ी हुई है और उससे हमारे थाने जुड़े हुए हैं, हमारे जिले जुड़े हुए हैं, साइबर थाना विशेष रूप से संचालित है, साइबर स्क्वाड्स हमारे हर जिले में मौजूद है। जैसे ही अगर हम गोल्डन आवर में 2-3 घंटे की अवधि में अगर पुलिस तक सूचना दे देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पैसे वापस आ गए, अगर समय रहते हम लोग बैंकिंग सिस्टम को इस बारे में सचेत कर पाए, करोड़ों रुपए के धनराशि वापस करवा पाए जो कि साइबर फ्रॉड से निकल गई थी। डेफिनेटली आरोपियों को तो गिरफ्तार किया ही है, डेफिनेटली साथ साथ जो धरपकड़ कर रहे हैं उसे भी हम शेयर कर रहे हैं ताकि लोगों को हिम्मत बंधे।
1: 8 तारीख को सेफ क्लिक 2.0 अभियान खत्म हो रहा है, कितना सफल रहा यह अभियान?
0: मैं मानता हूं अभियान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और लोग अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ रहे हैं। पुलिस बिना जन सहयोग के, जन चेतना के अकेले नहीं कर सकती। सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर नहीं होगा तो ये फ्रॉड्स हैं ये खत्म नहीं होंगे।
1: तो चलते चलते आपका पुलिस विभाग की ओर से सेफ क्लिक 2.0 इस अभियान को लेकर संदेश क्या है?
0: एक ही संदेश है, जब भी क्लिक करें सेफ क्लिक करें, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे टैब हो, चाहे आपका फोन हो, किसी भी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके पहले ये सोचें कि क्या मैं ये सेफली कर रहा हूं। अगर कोई वार्तालाप कर रहे, फोन पे बात कर रहे, तो जो व्यक्ति अनजान है उस पर भरोसा मत करिए, उसके झांसे में मत आइए और हर क्लिक सेफ क्लिक हो इसका ध्यान रखें।
1: विनीत कपूर साहब, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने हमारे साथ की, इतना समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच।
1: मध्य प्रदेश पुलिस के सेफ क्लिक अभियान 2.0 के बारे में हमने चर्चा की मध्य प्रदेश पुलिस के उप महानिरीक्षक श्री विनीत कपूर से। आज की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है सेफ्टी और डिजिटल दुनिया में ये और भी खास हो जाती है। हमें आशा है चाहे मनी ट्रांजेक्शन हो या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आप हमेशा सतर्कता जागरूकता के साथ बढ़ेंगे आगे और अपने दिन को बनाएंगे खुशगवार। गुड लक। आपकी सुबह को महकाने वाला और आपको अपडेट रखने वाला कार्यक्रम इस समय जारी है। नमस्कार भोपाल। रोजाना 7:20 से 8:00 तक।

सस्ती है महफिल और होता है इसमें आपका ज्ञान वर्धन, साथ ही मनोरंजन। बारी मनोरंजन की है तो आ रहा है दोस्ताना फिल्म का एक गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया हुआ। तो गीत सुनिए, उसके बाद कुछ और बातें होंगी।

0: नमस्कार भोपाल में कुछ ही देर बाद हम एक और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, आप बने रहिए नमस्कार भोपाल के साथ।
1: आकाशवाणी के सुनने वाले सभी भाइयों को आनंद जी का नमस्कार और आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।
0: जारी है नमस्कार भोपाल का सफर और मैं हूं आज आपके साथ संजय। झीलों की नगरी भोपाल को फिर से एक राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि हासिल हुई है, हम सभी के लिए खुशी की बात है। भोपाल के शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक सांदीपनी विद्यालय ने भारत सरकार की स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग यानी SHVR 2025-26 के लिए पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये रेटिंग स्वच्छता, पेयजल, जल संरक्षण, हरित परिसर और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों जैसे मानकों के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है। आइए मिलते हैं इस विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना, साथ ही शिक्षक सत्यम पांडे और प्रियंका सिंह राठौर और कुछ विद्यार्थियों से।
2: देखिए, स्वच्छता तो जीवन का अंग है, दैनिक दिनचर्या में भी स्वच्छता होनी चाहिए और विद्यार्थी जो है विद्यालय में कम से कम 6 घंटे प्रतिदिन व्यतीत करते हैं तो स्वच्छता की आदत उनमें विकसित हो सके, स्वच्छता का महत्व सब विद्यालय के बाद जब वो अपने घर जाएं तो अपने घर और आसपास के समुदाय में भी स्वच्छ रहने का संदेश सबको दे सके और स्वच्छता के लिए अन्य समुदाय को जागरूक कर सके, इसलिए स्वच्छता पर विद्यार्थियों के साथ काम किया गया। हरित हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए पर्यावरण दिशा में कार्य करना बहुत जरूरी था। इसके लिए हमने विद्यालय में पहले समिति ने एक योजना बनाई और फिर उसके बाद शिक्षकों का विद्यार्थियों का चयन किया, जागरूक किया पहले इसके बारे में, घटक तैयार किए। घटक थे जैसे कि स्वच्छता में विद्यालय परिसर की स्वच्छता, और चूंकि हमारा विद्यालय बालिका विद्यालय है तो लड़कियों की पर्सनल हाइजीन से संबंधित भी हमने इस विषय पर बहुत काम किया। इसके लिए हमने शी केयर यूनिट्स बनाई, वेंडिंग मशीन्स लगाई, साथ ही हमने अपने विद्यार्थियों को वॉलंटियर्स नियुक्त किया, अपनी जूनियर सीनियर अपनी साथी बालिकाओं को इस बारे में जागरूक किया और समय समय पर हमने प्रार्थना सभा में बच्चों को बताया।
0: मैं सत्यम जी से जानना चाहता हूं कि ये विद्यालय काफी पुराना हो चुका है, इस विद्यालय को खूबसूरत रूप देने में सभी विद्यार्थियों का और शिक्षक हैं उन सबका मिला जुला सहयोग रहा है। आपने जब ये स्वच्छ हरित रेटिंग की बात सुनी, सेकंड पोजीशन पर आया तो आपके मन में क्या भावना आई?
3: SHVR स्वच्छ एवं हरित विद्यालय की बात तो हम लोगों के मन में, सबके मन में

0: जिज्ञासा सी थी कि किस तरह से हम अपने विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला पाएं। इसके लिए समय समय पर विद्यालय द्वारा छात्राओं द्वारा एक साथ बैठ करके प्लानिंग की गई, परिसर है उसको बिल्कुल सही तरीके से यूटिलाइज किया। जैसे हमारे पास, चूंकि हमारा विद्यालय शहर में है, तो हमारे पास ओपन लैंड बहुत कम थी, तो इसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा प्रतिभाग हो पाए, इसके लिए हमने अलग अलग ग्रीन कॉरिडोर्स का निर्माण किया, जिसमें बच्चों ने जिम्मेदारी उठाई कि हर एक पेड़ हर एक बच्चे का है। बच्चों को बड़ा अपनापन लगा और हमने कोशिश की कि हम मी शिप से वी शिप की यात्रा करें, किस तरीके से हम एक अकेले से और हम सब का जो भाव है वो आ पाए। उसका ये परिणाम है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त कर पाए हैं।
1: बहुत ही खुशी की बात है। प्रियंका जी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, आप जब बच्चों के साथ काम करती हैं, विशेष रूप से आप पर्यावरण को लेकर आपने काफी इसमें काम किया है, बताएं आपकी क्या भूमिका रही है इस काम में?
2: सबसे पहले तो मैंने विद्यार्थियों को जागरूक किया, पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझे। स्वच्छता के लिए हमने स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया, जिससे बच्चों में ये भावना विकसित हुई, स्वच्छ रखना है, स्कूल को स्वच्छ रखना है, हमारे घर को भी स्वच्छ रखना है। पेरेंट्स को बुलाया, इसके अलावा SMDC के सदस्य, PTA के सदस्य, सभी को शामिल करके योजना बनाई कि हमें विद्यालय को किस तरह से साफ रखना है और विद्यालय के साथ साथ समुदाय और अपने घर को भी साफ रखना है। हमने एक एक बिन रखे हैं, इसमें विद्यार्थी स्वयं अपना कचरा डालते हैं, टेबल अपनी स्वयं की साफ करते हैं, औषधीय गार्डन लगाया है, माँ की बगिया में हमने विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगाई है, जिससे कि बच्चों में प्रकृति प्रेम जागृत हुआ है। हमारा विद्यालय हरित और स्वच्छ विद्यालय में नंबर 2 पर आया है।
1: संगीता जी, जब द्वितीय श्रेणी आपके विद्यालय को प्राप्त हो गई है, तो अब और कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती हैं, क्योंकि श्रेणी को बरकरार रखना भी एक चुनौती होती है।
3: संजय जी, एक बार काम करना और लक्ष्य को हासिल कर लेना ही काफी नहीं होता। अभी हमने विद्यालय को स्वच्छ और हरित बनाया है। इस वर्ष की योजना में हमारी जो शामिल है कि हमारे विद्यार्थी विद्यालय से बाहर निकलकर भी वृक्षारोपण करने जाएंगे और समुदाय को भी जाकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जागरूक करेंगे और ये बताएंगे कि बिना अतिरिक्त संसाधनों के हम किस प्रकार से कचरे का सेग्रीगेशन कर सकते हैं। तो हमने इस दिशा में भी योजना बनाई कि इसको हम समुदाय तक लेकर भी जाएंगे।
1: सत्यम जी, आप अपनी तरफ से और कौन सी ऐसे नवाचार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि विद्यालय में ऐसा परिवर्तन नजर आए जो सबसे हटकर और सबसे अनूठा हो?
0: नवाचार तो बहुत जरूरी है। हमने 5R को यूज किया, जिसमें हम सारी चीजों को रीयूज रिसाइकल करके जिसमें प्लास्टिक का जो बर्डन है वो हम खत्म कर पाए और विद्यालय को 0 प्लास्टिक जोन बना पाए। इसके साथ में हमने एक साबुन बॉक्स बनाया है, क्योंकि हमारे विद्यालय में लगभग 1500 छात्राएं अभी वर्तमान में पढ़ रही हैं, तो इतनी बड़ी मात्रा में साबुन का व्यवस्था कर पाना, इसके लिए हमने कहा है कि सभी लोग जो आते हैं साबुन का दान दे सकते करें। इट इज नॉट फॉर वन डे, इट इज फॉर द प्रैक्टिस ऑफ लाइफ।
1: बहुत अच्छी बात है, हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। हमारे साथ 2 विद्यार्थी भी हैं। क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम शालिनी बर्देल है, मैं 12th क्लास में हूँ।
1: आपका स्कूल अब पूरे देश में 2nd नंबर पर आ गया है, हरित और स्वच्छ विद्यालय वो कहला रहा है, कैसा लग रहा है?
4: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इवन जब मैं सुबह न्यूज पढ़ रही थी ना, मैं एक्साइटेड थी कि मैं पहले फ्रेंड्स को जाके बताऊं कि हमारे स्कूल है ना 2nd स्थान पर है, और इवन मैं चाहूंगी कि 1st आए, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है।
1: तो फर्स्ट आने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी कौन कौन से आस्पेक्ट पे काम कर रही है तुम यहाँ पर?
4: जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उसे हम सभी क्लासेस में जाते हैं, छोटे बच्चों को सिखाते हैं, पॉलिथीन नहीं लेकर आना है, जहाँ भी कचरा दिखे वैसा तो डस्टबिन में डालें। हमने 2 पार्ट में उसको सेपरेट किया है, एक में प्लास्टिक वेस्ट और एक ई-वेस्ट।
1: विद्यालय में कितने कोने कोने तक बिल्कुल स्वच्छ आपको नजर आता है?
4: हाँ, अगर कहीं कचरा भी पड़ा होता है तो भैया लोग भी तुरंत साफ कर देते हैं, क्लीन रहता है हमारा पूरा स्कूल।
1: क्या नाम है आपका?
5: नमस्कार, मेरा नाम निकिता कटारे है, मैं इको क्लब की अध्यक्ष हूँ। अच्छा। पर्यावरण के तहत हमारे विद्यालय में बहुत से माँ की बगिया है, जहाँ पे कई सब्जियाँ उगाई जाती हैं, औषधीय बगीचा भी है जहाँ पे बहुत सारी औषधीय पौधे उगाए जाते हैं। बच्चे खुद जागरूक होते हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती है और आसपास अपने परिवेश में अपने परिवारजनों को अपने पड़ोसियों को वो जागरूक भी करते हैं। तो आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना वातावरण साफ रखूं।
1: प्रियंका जी, आपका मैसेज क्या रहेगा, बाकी विद्यालयों की भी क्या जिम्मेदारी बन जाती है?
2: मैं चाहूंगी कि हर व्यक्ति को अपनी स्वच्छता स्वयं करनी चाहिए, ऐसा हर नागरिक करने लग जाएगा तो हम स्वच्छता को बढ़ावा दे सकते हैं।
1: संगीता जी, क्या कहना चाहती हैं आप लोगों से?
3: शिक्षकों का राष्ट्र निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो हम शिक्षकों का और विद्यार्थियों का ये दायित्व है, और अपितु सभी नागरिकों का, देश का ये दायित्व है, स्वयं अपने घर के साथ साथ अपने आस पास के परिवेश की भी हम स्वच्छता सुनिश्चित करें, वृक्षारोपण करें, उनका संरक्षण भी करें,
0: ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया पर काम करें, और जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी उठाएगा तो पता

0: लगेगा एक देश जल्दी विश्व पर अपना नाम ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया में आगे लेकर जाएगा।
1: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद संजय जी।
1: भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय को स्वच्छ एवं हरित रेटिंग में मिले दूसरे स्थान के संबंध में हमने चर्चा की। प्राचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना कुछ शिक्षकों और विद्यार्थियों से। हमारी पाठशालाएं विद्यार्थियों को न केवल शिक्षा का पाठ पढ़ा रही हैं बल्कि जीवन कौशल और संस्कारों से भी परिचित कराने का एक सशक्त माध्यम है। हम आशा करते हैं कि स्वच्छ हरित विद्यालय की परिकल्पना को और भी विद्यालय सार्थक करेंगे, बनाएंगे विशेष पहचान। तो ये तो थी खास चर्चा, और अब आपके मनोरंजन के लिए सुनते हैं ये गीत पति पत्नी फिल्म से।

0: और कुछ ही पलों में हम बात करेंगे आज के खास दिन विश्व एलर्जी दिवस की। जारी है नमस्कार भोपाल।
1: सभी सुनने वालों को स्वानंद किरकिरे का प्यार भरा नमस्कार और इस वक्त आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।
0: सात बजकर 52 मिनट और 27 सेकंड हुए हैं। आज 8 जुलाई के दिन विश्व एलर्जी दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। आए दिन हमारे सामने ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जब सुनने को मिलता है कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है या उस चीज़ से एलर्जी है। आज के इस दिन विशेष पर हमने कुछ जानकारी प्राप्त की है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर सत्य प्रकाश दुबे।
2: देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर किसी को, तो अगर टू बी प्रिसाइज अगर आंकड़े अपन देखें तो WHO इस दिन को मनाता है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। मकसद केवल इतना ही है कि जो एलर्जी के मुख्य कारण है, जैसे कि कई लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस होती है, नाक बहने लगती है, कई लोगों को ब्रोंकियल अस्थमा रहता है, कई लोगों को स्किन की एलर्जी रहती है, तो जागरूकता फैलाने का यही मतलब है कि एक तो इसको टाले ना। कई बार लोग अपनी परेशानियों और दुश्वारियों के साथ जीना सीख लेते हैं। हमारे देश में देखते हैं कई लोग ऐसा करते हैं, सांस चलने लगती है, नाक बहने लगती है, ईचिंग होने लगती है, तो ऐसे लोग पहले से ही डॉक्टर के पास अगर चले जाएं, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा के मरीज हैं, एलर्जिक राइनाइटिस के मरीज हैं या डर्मेटाइटिस के मरीज हैं, तो डॉक्टर उनको कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयाँ अगर शुरू कर देंगे तो वो सीजन का मजा भी ले पाएंगे और परेशान ज्यादा नहीं होंगे। इसीलिए जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड एलर्जी डे के रूप में मनाया जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल इम्यूनोथेरेपी जो है रोल प्ले करती है, जिसकी थेरेपी 3 साल तक चलती है, जिसके अंदर बहुत ही संयम बरतना पड़ता है और प्रिक टेस्ट के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कौन से एलर्जन के लिए आप सेंसिटिव हैं, और कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी आ गए हैं जो कि इसके अंदर काफी अच्छा काम करते हैं, तो एलर्जी के ट्रीटमेंट में भी बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं।
0: क्रांतिकारी परिवर्तन निश्चित रूप से आ रहे हैं दुबे साहब, और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति यदि वो जानना चाहे कि उसे किस चीज से एलर्जी है, तो ऐसा भी क्या कोई तरीका है जिससे व्यक्ति को

0: चल सके कि मुझे इस चीज से एलर्जी है तो मुझे इससे दूर रहना है।
1: सही सवाल पूछा आपने। देखिए, स्किन प्रिक टेस्ट होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो एलर्जन आम तौर पर जो हमारे देश में पाए जाते हैं, जैसे माइट्स है, डेंड्रफ हैं, इन चीज़ों के एलर्जन। लेकिन सबसे बड़ा जो एलर्जी का पता करने वाला आदमी जो रहता है, वो व्यक्ति स्वयं रहता है। कई बार लोग आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा होता है तो हमको एलर्जी हो जाती है। जैसे कई लोगों को कुछ खाद्य पदार्थों से एलर्जी रहती है, कुछ लोग जो है दूध नहीं पी पाते, कुछ लोग जो जिनको ग्लूटेन से एलर्जी रहती है, कुछ लोग को पनीर से एलर्जी रहती है। तो ये टिपिकली बताते हैं कि साहब रात को मैंने खाया तो सुबह मुझे ऐसा हो गया। तो डॉक्टर की हेल्प आप कर सकते हैं अगर आप एक बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं अपने शरीर का। कई चीज़ें ऐसी हैं हमारे देश में, जैसे धूल है, धुआं है, या जैसे वातावरण में जब बौर आती हैं, इन सबको तो आप वातावरण से हटा नहीं सकते। तो फिर आप मदद लीजिए डॉक्टर की कि कैसे उस समय में आप अपने आप को नियंत्रित रख सकते हैं सावधानी से और दवाइयों की मदद से, ताकि वो पीरियड बीत जाए तो फिर आप अच्छी तरीके से मौसम का आनंद ले सकें।
0: कुछ मनोवैज्ञानिक स्थितियां भी बनती हैं जब आदमी को लगता है कि मुझे किसी चीज की एलर्जी का मैं शिकार हो रहा हूं। कई बार धारणा बना लेता है व्यक्ति की मुझे इस चीज से एलर्जी है।
1: सही कहा आपने। देखिए, जो भी चीज़ ऐसी रहती हैं जो हमको परेशान या खीज उत्पन्न करती हैं, निश्चित रूप से इससे व्यक्ति की साइकोलॉजी पर, जिसे कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो क्वालिटी डेज रहते हैं आपके, वो जो है बहुत सारे ख़राब होते हैं। WHO की सर्वे के अनुसार अगर देखा जाए तो जिससे क्वालिटी ऑफ डेज ख़राब होते हैं वो एलर्जिक डिसीजेस के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं पूरे विश्व में, और उससे आर्थिक नुकसान भी होता है और लोग निश्चित रूप से मानसिक रूप से परेशान होते हैं। लेकिन तो भी इसका उपाय यही है कि डिफरेंट मोडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट आ गए हैं कि आपकी नेचर ही बदल जाए। और ऐसे उदाहरण हैं जिनको एलर्जी थी, जिन्होंने 3-3 साल की इम्यूनोथेरेपी ली और वो बिल्कुल अच्छे हो गए, उनका इम्यून सिस्टम बदल गया। एक विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि एलर्जोलॉजिस्ट एक नई विधा आ गई है जिसमें लोग एलर्जी का ही उपचार करते हैं, उनसे आप सलाह लें, सहयोग लें।
0: ये धारणा कहाँ तक सही है कि एलर्जी आपके साथ ताउम्र चलती है, इस पर बस नियंत्रण ही किया जा सकता है?
1: बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे बोलते थे कि दमा दम के साथ जाएगा। अब आप देखते हैं हमारे देश के जो सबसे बड़े महानायक हैं, उनको दमा है, आज वो 85 साल की उम्र में सारे काम करना है। ये सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर आप अगर जिएंगे तो ये सब चीजें आपके साथ चलेंगी, आपकी सहयोगी बनकर और आपको अनुशासित करेंगी।
0: डॉक्टर साहब, आपने तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सेमिनार में, कई कार्यशालाओं में हिस्सा लिया है जहाँ पर एलर्जी की भी बात होती है और आपके पेशे से जुड़ी हुई बातें भी होती हैं, जैसे ENT आप स्पेशलिस्ट हैं। तो यहाँ इन मंचों पर आपने क्या देखा है कि एलर्जी को लेकर किस तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं?
1: आप सही कह रहे हैं कि विश्व में एलर्जी का बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, और पिछली बार ये सम्मेलन जापान के अंदर हुआ था, उसके पहले भी सियोल के अंदर ये सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर सभी लोग डिस्कशन यही करते हैं, और उससे जो निचोड़ आया है वो यही आया है कि एलर्जी अब लाइलाज बीमारी नहीं है। एलर्जी के अंदर इम्यूनोथेरेपी एक बहुत बड़ी चीज़ उभर कर सामने आई है, जो कि जीभ के नीचे ली जाती है, पहले इस इंजेक्शन के द्वारा ली जाती थी, और साथ में कुछ बायोलॉजिकल एजेंट आ गए हैं, ये अफोर्डेबल कॉस्ट में आ गए हैं। बृहद स्तर पर कार्य चल रहा है और ऐसे लोगों की जिंदगी जो है बेहतर और बेहतर होती चली जा रही है।
0: अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को, कोई निवेदन करना चाहते हैं?
1: नहीं, संजय जी, आप श्रोताओं को यही कहना चाहूंगा कि एलर्जी को बीमारी ना समझे, सिस्टम समझे। जैसे बहुत सारे लोग आपके साथ चलते हैं, आपके परिजन लोग चलते हैं, अपने जीवन को अनुशासित करें, उसके अनुसार आपका जीवन एलर्जी के साथ भी सुखमय हो, ऐसी मेरी कामना है।
0: थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: विश्व एलर्जी दिवस के अवसर पर हमसे अपने विचार साझा कर रहे थे वरिष्ठ नाक कान एवं गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे। आपने जाना कि एलर्जी पर नियंत्रण के लिए या फिर उसे क्योर करने के लिए लगातार नई तकनीकें सामने आ रही हैं, और इसके माध्यम से एलर्जी से परेशान लोग स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। हमें आशा है कि भविष्य में और भी अच्छे परिणाम निकल कर सामने आएंगे और एलर्जी के मामलों का प्रतिशत भी कम होगा।

0: आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार भोपाल द्वारा निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल पिन 462002 इस पते पर अपनी प्रतिक्रियाएं भेजकर और सुबह 8:30 बजे सुरमई सवेरा सुनिएगा नीतिका वर्मा के साथ। इसके अलावा दिन भर चलेगा आकाशवाणी भोपाल से ज्ञान और मनोरंजन का सिलसिला। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो इसी कामना के साथ। अनुमति दीजिए अपने मित्र संजय श्रीवास्तव को, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 8 बजने वाले हैं, अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
5: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं।

0: और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने ही लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं

0: और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत पहली जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
2: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
3: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताज़ा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृहमंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश, आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत

0: ASEAN Parliament calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's Office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेबसो टीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सवेरा, लेकर हाजिर हूँ मैं नीतिका वर्मा, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। श्रोताओं, बेस्ट कीमती है जरा सा भी पानी, जी हाँ रेगिस्तान में है जिंदगी पानी, उसकी आंखों में उतर आया सुनकर मेरे गांव में है एक कहानी पानी। श्रोताओं, क्या आपने भूमिगत जल बढ़े इसकी व्यवस्था की है, यानी रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की है?

जीवन में मुस्कुराहट जो है आपकी प्रसन्नता की द्योतक मानी जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मुस्कुराहट खुशी ही हो। ऐ गमी ज़िंदगी ना हो नाराज़,

जीवन में मुस्कुराहट जो है आपकी प्रसन्नता की द्योतक मानी जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मुस्कुराहट खुशी ही हो। ऐ गमे ज़िंदगी ना हो नाराज़, मुझको आदत है मुस्कुराने की। एक मुस्कुराहट जाने कितनों को आकर्षित कर जाती है। कहना चाहिए कि आपकी मुस्कुराहट एक अजनबी को भी आपसे मेल मिलाप के लिए सहज बना देती है, एक अपनापन दे जाती है। मुस्कान आपका गहना होती है।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अपनी प्रसन्नता को जाहिर करने का सबसे आसान तरीका आपकी मुस्कुराहट होती है। अपने प्रियजन से मिलने पर आपकी मुस्कुराहट जो है वो आत्मीयता बयां करती है। तो दिन में एक बार ही सही खुलकर हंसिए ज़रूर। इससे फेफड़ों की अच्छी कसरत होगी, सांस लेने में सुधार होगा, दिल और दिमाग ज़्यादा सक्रिय होंगे।

मित्रों, हार या जीत मन की दृढ़ता पर निर्भर करती है। हमारे शिवाजी महाराज ने थोड़ी सी सेना लेकर औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए थे। अल्प साधनों वाले महाराणा प्रताप ने मन में दृढ़ संकल्प करके मुगल सम्राट अकबर से युद्ध किया था। विश्व इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध से शापित जापान अणुबम की मार सहने के बावजूद मजबूती के साथ खड़ा है। इसे ही कहते हैं मन की दृढ़ता, यानी मन के हारे हार और मन के जीते जीत।

वर्ष 1993 में अनुपम मिश्र की किताब आज भी खड़े हैं तालाब ने पर्यावरण के तात्कालीन विमर्श में सिर्फ एक नए तरह की ऊर्जा पैदा की नहीं बल्कि अपने बेहद सरल बातचीत की शैली में आम लोगों को अपने जैसे लोगों के कामकाज से रूबरू भी कराया। आज भी खड़े हैं तालाब ये वो किताब थी जो कि देश में विस्तार से फैली पानी की आज भी कारगर परंपराओं की बात करती है। यह किताब हमें मौजूदा विकास और उसके विकल्प पर भी एक सर्वथा नई और अपने आसपास मौजूद दृष्टि का एहसास कराती है।

0: सुरमई सवेरा कार्यक्रम में और बातें और गीतें गीत जारी रहेंगे। इस घंटे की खास खबरों के बाद
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया तीसरा। दोनों का अनुभव वैश्विक स्तर पर प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने इंडोनेशिया के अमास 2045 विजन और भारत के विकसित भारत 2047 संकल्प को एक दूसरे का पूरक बताया। दशकों पुराने नर्मदा जल विवाद का कल सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रक्षा, रेल और कृषि मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी लियोगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। इस नए संयंत्र में 272 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में यहां प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरणों मुख्य रूप से एक्सकेवेटर का उत्पादन होगा। प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के पदों पर भर्ती के लिए कुल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिनमें से 436 उम्मीदवारों को चुन लिया गया है। डीजीपी कैलाश मकवाना के अनुसार पूरे 8 वर्ष बाद मध्यप्रदेश में सब इंस्पेक्टर्स की यह बड़ी भर्ती हुई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के बड़वानी, धार, गुना

सागर, विदिशा, रायसेन सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच के तीसरे मुकाबले में कल इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया। सीरीज के आखिरी दो मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी भोपाल से सुरमई सवेरा कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। श्रोताओं, आज अभिनेत्री नीतू सिंह का जन्मदिन है और हम उन्हें याद कर रहे हैं, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।

नीतू सिंह सन 1973 से 1983 तक मुख्य नायिका के रूप में सिर्फ 50 फिल्मों में दिखाई दी और अपना नाम रोशन कर गईं। उसके बाद में भी 26 साल बाद उन्होंने फिल्मों में दोबारा वापसी की और लव आजकल, दो दुनी चार, बेशरम जैसी फिल्मों में दिखाई दी।

खेल खेल में रफू चक्कर, कभी कभी अमर अकबर एंथनी, पति पत्नी और वो जहरीला इंसान, दूसरा आदमी, झूठा कहीं का, धन दौलत, ये कुछ वो फिल्मों के नाम हैं जिसमें ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने अभिनय किया।

अभिनेत्री नीतू सिंह को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और कामना करते हैं कि वो हमें और भी मनोरंजक फिल्में देती रहें। इसके साथ ही सुरमई सवेरा अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत हैं अवधेश प्रसाद त्रिपाठी के गाए कुछ गीत। आरंभ कर रहे हैं मंजूर भोपाली की इस रचना के साथ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा

0: मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अवधेश प्रसाद त्रिपाठी के गाए गीत आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में, और लीजिए ये सुनिए रचना विठल भाई पटेल की।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। अवधेश प्रसाद त्रिपाठी की गायकी आप सुन रहे हैं।

0: संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में।
3: सुर्खियों में
4: नमस्कार। कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज हम चर्चा करेंगे भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी पर। जीएसटी ने देश की कर व्यवस्था को एक नई दिशा दी है। एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के साथ शुरू हुई ये व्यवस्था आज भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। आपको बता दें कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये सुधार केंद्र और राज्यों के अनेक अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करने के उद्देश्य से लाया गया, जिससे कर प्रणाली अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनी। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार, उद्योग, उपभोक्ताओं और सरकार सभी पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसकी उपलब्धियां क्या रहीं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आगे इसकी क्या संभावनाएं हैं, इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो विशेष मेहमान। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनीष शर्मा, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। आप IEHE भोपाल में पदस्थ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सर।
5: धन्यवाद मैडम।
4: और हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री संजय वर्मा, जीएसटी एवं कर मामलों के एडवोकेट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद मैडम।
4: कार्यक्रम की शुरुआत मनीष सर आपसे करते हैं। पहला सवाल, हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए कि जीएसटी लागू करने की आवश्यकता आखिर क्यों महसूस हुई।
5: सबसे पहले मैं ये बताऊं, जब 1 जुलाई 2017 के पहले जीएसटी के बदले पहले तरह तरह के टैक्सेस सिस्टम थे, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक्साइज ड्यूटी लगता था, ऑक्टराय लगता था और भैट लगता था। तो ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता, तो इसको फाइल करना भी ज़रा कठिन होता था। और सबसे बड़ी बात, कलेक्शन के बाद में जो सेंट्रल स्टेट में जो अपने वित्तीय ढांचे के तहत जो डिवीज़न ऑफ रेवेन्यू होता था वो ज़रा कठिन हो जाता था और बड़ा असंतोष सा रहता था और संघीय ढांचा के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता था। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब वाजपेयी गवर्नमेंट आई तो उसी समय से इस बात को बल दिया जाने लगा, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते एक देश एक कर की पद्धति पर प्रणाली पर चले। दुर्भाग्यवश उस समय उसको लागू नहीं किया जा सका, लेकिन बहुत मंथन के बाद में जाकर के 2017 में फिर ये जीएसटी हमारे यहाँ लागू किया गया।
4: सही कहा सर। संजय वर्मा सर, जीएसटी आने से पहले कर व्यवस्था किस प्रकार थी, यानी कैसी थी और इसमें सबसे बड़ी समस्याएं क्या थी, चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को विस्तार से समझाएं।
6: जैसे कि सर ने बताया अभी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, थोड़ा इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि डायरेक्ट टैक्स में कोई छेड़ नहीं हुई है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते थे, जैसे कि पहले वेट होता था, उससे पहले सेल्स टैक्स होता था, तो वेट, कस्टम ड्यूटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो एक्साइज ड्यूटी, इन सभी टैक्सेस को मिलाकर एक राष्ट्र और एक कर का जो नारा लेकर आया था, उन सब टैक्सेस को मिलाकर ही जीएसटी किया, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से किया है। और इसके आने से हमको ये फ़र्क पड़ा, पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे सभी के, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सबसे संपर्क करना, सबसे रिटर्न फाइलिंग अपने अपने जो उनकी कंप्लाइंसेज है वो सब करना, और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग नॉलेज के लिए आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि उसकी चूँकि एक्ट ही अलग था। अब जब सब एक्ट को मर्ज किया, एक जीएसटी लेकर आए, तो हर तरीके से, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो कंसल्टेंट वर्ग हो, चाहे एक कोई भी वर्ग हो, सबके लिए ऐसा नहीं हुई, सब एक ही उसमें लेकर आने पर कंबाइन करके फिर उसको टैक्स किया।
5: उपभोक्ता को भी पारदर्शिता मिली, क्योंकि उस समय जो 17 डिफरेंट सेंटर्स थे तो उस बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्थिति बन चुका था। धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती जा रही वो बड़ा कठिन सा समस्या बनता जा रहा था।
4: जी बिल्कुल सही कहा सर। सर क्या आपको लगता है कि एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा व्यवहार में सफल रही है?
5: बिल्कुल, अगर आप आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आंकड़े तो ये कह रहे कि आप देखिए, अप्रैल 2026 में ही भारत ने इतिहास रच दिया, अकेले एक महीने में 2,42,00,000 करोड़

0: करोड़ रुपए का कलेक्शन जीएसटी के माध्यम से हुआ। मई में भी 1.94 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। तो 2017 में जब जीएसटी कलेक्शन शुरू हुआ था तब औसत कलेक्शन 85,000 करोड़ रुपया जाता था, जो 90,000-85,000 ऐसा, उसके पहले इससे भी कम। तो जब से जीएसटी आया और हम सिंप्लीफाइड तरीके से, यूनिफाइड तरीके से इसको आगे बढ़ते गए, तो कलेक्शन भी हमारा बढ़ा, व्यापारियों का भरोसा भी शासन पर बढ़ा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलेक्शन है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यू, वो भी हमारा बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हो पाया। जो असंतोष था राज्यों के बीच वो भी घटा। तो जीएसटी अगर हर एक दृष्टिकोण से, कलेक्शन के दृष्टिकोण से देखें, या वित्त और संघ, वित्त और राज्य और संघ के बीच में जो डिस्प्यूट के दृष्टिकोण से देखें, व्यवसायियों के विश्वास के दृष्टिकोण से देखें, उपभोक्ता के विश्वास के दृष्टिकोण से देखें, तो हर दृष्टिकोण से, हर डायमेंशन से, हर एंगल से ये सक्सेसफुल पद्धति कर प्रणाली है जिससे कि हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं।
1: वाकई मनीष सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीएसटी आने के बाद कर के कलेक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है। संजय वर्मा सर, जीएसटी लागू होने के बाद

0: व्यवसायियों के विश्वास के दृष्टिकोण से देखें, उपभोक्ता के विश्वास के दृष्टिकोण से देखें, तो हर दृष्टिकोण से, हर डायमेंशन से, हर एंगल से ये सक्सेसफुल पद्धति कर प्रणाली है जिससे कि हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं।
1: वाकई मनीष सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीएसटी आने के बाद कर के कलेक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है। संजय वर्मा सर, जीएसटी लागू होने के बाद कर संग्रह में लगातार वृद्धि देखने को मिली है, इसके पीछे के प्रमुख कारण आपसे जानना चाहेंगे।
2: इसके पीछे सबसे पहला कारण जो मैं इसमें कहना चाहूँगा, जिस तरीके से पहले जो होता था, जो अलग अलग टैक्सेस थे उनका मैनुअल सिस्टम था, मैनुअल सिस्टम में जो रिटर्न्स मैंने फाइल किया, जो फिगर्स मैंने दिए, उस पर कई बार गवर्नमेंट को भरोसा ही करना पड़ता था। कुछ केसेस में जहाँ की बहुत ज़्यादा डाउट होता था तो वो सर्वे या इस तरह की एक्टिविटीज़ से वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेते थे, अदरवाइज़ तो उनको व्यापारी पे भरोसा करना पड़ता था। लेकिन जैसे जीएसटी चालू हुआ तो जीएसटी के बाद पूरी तरह से एआई बेस्ड है ये, इस तरह से इनका क्या है, जीएसटी प्लस कस्टम प्लस आईटी, तीनों सॉफ्टवेयर कम्बाइंड है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम टैक्स में गई है वो जीएसटी में भी रहेगी, कस्टम्स में भी रहेगी। मान लीजिए आपका कोई बाहर से माल आया है या कोई भी आपने जो वो सब चीज़ कम्बाइंड होने से गवर्नमेंट के पास भी इन्फॉर्मेशन पूरी रहती है और व्यापारी भी इस बात से क्लियर रहता है कि उसको भी किस तरह डाउट नहीं रहता। वो अगर कोई चीज़ बाई चांस इंटेंशनली नहीं छूट रही है, अनइंटेंशनली भी छूट रही है, तो वो उसको याद करके उसको कम्बाइन करके रिटर्न में अपने शो कर सकता है।
0: सर्विलियंस बढ़ रहा है और सर्विलियंस बढ़ने से आपका ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ रहा है। जैसे आप जानते हैं कि जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है उसके कारण ये सिस्टम एक सेकंड में लाखों इन्वॉइस को प्रोसेस करता है और टैक्स चोरी रोकने में सरकार ने इन ई इन्वॉइसिंग जो काम कर रहा है जिसके कारण बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो रियल टाइम में सरकारी पोर्टल पर बिना बिल जनरेट किए ये काम कर सकता है। तो इस तरह की जो प्रावधान जीएसटी में आजकल जीएसटीएन के कारण हो रहा है तो इसके कारण अब सुविधाएं हर के लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। और बार बार एक ही बात को कहना कि हमारा जीएसटी बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि।
1: जी सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि डिजिटल टैक्स सिस्टम, ई इनवॉइस, ई वे बिल जैसी व्यवस्थाओं ने पारदर्शिता बढ़ाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आपकी क्या राय है?
0: बिल्कुल, आप देखिए मैंने पहले भी कहा कि जब सेकेंड्स में लाखों इनवॉइस प्रोसेस होता है जो पहले नहीं हो पाता था, ये जीएसटीएन के कारण ही हो पाया है। और इसके कारण जो हम 5 करोड़ से जो ज़्यादा का इनकम है उसको रियल टाइम में हम मैनेज कर पा रहे हैं और 5 करोड़ से कम वाले को रियल टाइम में निकल उनको भी मैनेज इस नेटवर्क के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो इसके कारण कोई भी जो सप्लायर साइड है या फिर रिटेलर्स हैं ये कोई भी इससे बच नहीं पा रहा है क्योंकि जीएसटी, आपने एक बार आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब जीएसटी के पोर्टल पर आ जा रहा है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी, जैसा सर ने बताया कि जीएसटी और टेक्नोलॉजी और टैक्सेशन जो सिस्टम है ये सब इंटीग्रेटेड रूप में काम करके इसको बहुत ही ज़्यादा वायबल और आपको कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। शब्द प्रॉफिटेबल सही नहीं शासन के लिए, लेकिन फिर
2: प्रॉफिटेबल ही कह सकते हैं क्योंकि एक सबके हिसाब से सबको सुविधाजनक है, सब लोग उस पर कर सकते हैं काम।
1: जी जी, संजीव वर्मा सर, क्या जीएसटी का प्रभाव विदेशी निवेश और इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी देखने को मिला है?
2: बिल्कुल मिला है। जब तक कि हमारी कर प्रणाली पारदर्शी नहीं होगी, जब तक बाहर के लोगों को हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, टैक्सेशन हमारा अगर हायर रेट होगा तो बाहर की कोई भी, हम किसी को भी बुला नहीं सकते क्योंकि उसको सबको मालूम है कि वहाँ टैक्स हमारा कम लगना है। अभी भी कई कंट्रीज़ में देखा जाए तो हमारे यहाँ से कम टैक्स है, लेकिन फिर भी हम उनके रेशो के हिसाब से देखा जाए, रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो हम काफ़ी ऊपर हैं, हमारे सबसे कम रेट हैं, तो हम उसको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अगर हमारा ज़्यादा रेट होगा टैक्स का तो हम नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को।
0: मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ, एक बड़ी दिलचस्प सा आंकड़े जो दिखने को मिल रहे हैं आजकल जो है, इम्पोर्ट लेट जो विदेश, मतलब कि विदेशों से आने वाले सामानों पर मिलने वाला टैक्स जो है ये सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है क्योंकि इससे देखिए 19 से 22% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। और एक मजे की बात है कि रियल इस्टेट सर्विसेज में टैक्स कलेक्शन 50% और होटल रेस्टोरेंट मैंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 41% से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है। इसका मतलब लोग खुलकर खर्च कर रहे हैं और विदेशी जो इम्पोर्टेड सामान आ रहा है उस पर भी लोग खर्च कर रहे हैं, जिससे कि जो तो बने हम विदेशों का निवेश भी और विदेशों में निवेश भी दोनों से हमारा जो है जीएसटी बढ़ रहा है।

0: सर, आप ये जानना चाहेंगे कि क्या वर्तमान जीएसटी ढांचे में अभी भी कुछ सुधारों की आवश्यकता है जिनसे सिस्टम और बेहतर हो सकता है और उद्यमी और करदाताओं को फायदा मिले?
1: अभी अभी जो सुधार हुआ, अगर हम उसको इस तरीके से देखें कि जब जीएसटी आज से 9 साल पहले 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, उसकी व्यवस्था के और आज की व्यवस्था में काफ़ी कुछ फर्क हुआ। जैसे कि पहले 5 रेट ऑफ टैक्स होते थे, 5, 12, 18 और 28, अब रेट ऑफ टैक्स ही कुल स्लेब ही 2 कर दिए, 5 और 18, बाकी एक हायर स्लेब की बात नहीं कर रहे हैं वो कुछ कुछ आइटम्स पे। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होती थी, रेट ऑफ टैक्स कम होने के कम हुए, जैसे कि कई आइटम ऐसे थे जो 12% वाले रेंज में आते थे, तो 90% आइटम ऐसे जो 12% से कम होके 5% की रेंज में आ गए। तो एक तो ये फ़र्क पड़ा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डीजल पेट्रोल है जो कि जीएसटी से बाहर है, सुधार की आवश्यकता की अगर बात करते हैं तो डीजल पेट्रोल को भी हमको इसमें शामिल करना चाहिए, करेंगे तो इस पर भी फर्क पड़ेगा, काफ़ी इकोनॉमी पे अंतर आए।
0: मनीष सर, आपकी क्या ओपिनियन है इस मामले पर?
2: मेरा इसमें ऐसा कहना है कि ये ट्रायल एरर है, क्योंकि जीएसटी जब लागू किया गया था उसमें बड़ा हंगामा हुआ था संसद में कि अभी ये फुल प्रूफ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ, टेक्नोलॉजी बदलने के साथ, फैशन ट्रेंड वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के साथ साथ चेंज होने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे कोर्ट केसेस से आपने देखा होगा कि जो ऐसे ऐसे सवालों को जवाब देने पड़े जिससे आपको हंसी आती है। जैसे मान लीजिए परोठा बनाम रोटी, रोटी पर आपका टैक्सेशन 5% है, रोटी से 5% टैक्स लगना चाहिए जीएसटी। अथॉरिटी ने कहा नहीं, परोठा और रोटी में बराबर नहीं, रोटी में 5% लगेगा लेकिन परोठा लग्जरी है,
1: घी लगेगा एक्स्ट्रा, उसमें इसलिए लग्जरी है।
2: तो ये उस समय लागू करते समय ऐसा नहीं सोचा गया। चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ें जो आप रॉ लेके आ रहे हैं तो उसमें 0% है, लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट में आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसमें फिर आपको 5% जीएसटी लगता है। तो ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ऐसे जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जब लागू की गई थी तो इस तरह के एनोमली आ सकता है, ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं तब हमें समझ में आता है। और बहुत सारे कोर्ट केसेस है, बहुत सारे आरटीआई लगे हुए हैं जिसके कारण और सुधार आ रहा है, और सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है, किसी दिन नहीं कह सकते कि आज हम फुल प्रूफ। हमारा
1: अपडेशन तो होता ही रहता है हर चीज़ में, कई चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिसमें कि अगर उसको करें तो रिटर्न फाइलिंग, अपील फाइलिंग, पहले अपील फाइलिंग मैनुअल होती थी, फिर अपील फाइलिंग होगी, रिटर्न फाइलिंग, इवन अब हियरिंग भी वर्चुअल होने लगी है। पहले हियरिंग के लिए डिपार्टमेंट में जाना है, डिपार्टमेंट जाने में कई प्रॉब्लम्स आती थी, कुछ अपने इश्यूज आते थे, अब जब से वर्चुअल हियरिंग होने लगी तो हमको फिर डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं, हम अपने बैठे काम कर सकते, टाइम की बचत होती है, प्लस हम अपना काम और ढंग से कर पाते हैं, तो वो फर्क पड़ता है।
2: गब्बर सिंह टैक्स, और इसको कहते हैं वीआईपी, जो सर ने कहा कि डीजल पेट्रोल और शराब ये वीआईपी मेहमान है, क्योंकि राज्य शासन नहीं चाहता ये जीएसटी के दायरे में आए, ये राज्य शासन खुद के दरों से ही इसका नियंत्रण, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इन्हीं से आता है। तो ये जो सुधार की बात कह रहे हैं, सुधार होना चाहिए लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये बड़ा प्रश्न है।
0: संजय सर, चूंकि आप जीएसटी एडवोकेट हैं इसलिए आम जन के ओर से आपसे जानना चाहूंगी कि कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है कि जीएसटी टाइम पर दिया गया है फिर भी ईमेल्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है?
1: ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कई जगह आ जाती है। वैसे तो जो मैंने देखा है 75% तो ऐसा होता है जिनमें कि अगर नोटिस आया है या इनकम टैक्स से कोई मैसेज आया कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं चूके हैं। लेकिन कुछ केसेस में हुआ है कि जिनमें रिटर्न फाइल आपने कर दी लेकिन उनके डिपार्टमेंट में अपडेट नहीं हो पाई, तो उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन वहाँ फिर एक सिस्टम है कि जैसे आपने उनको बता दी कि हमने इस तारीख को फाइल कर दी, आपके पास भी रिसीट होती है, आपने बता दी कि हमने इस तारीख को फाइल कर दी, तो फिर उसको कंसीडर कर लेते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर परसेंटेज में तो ये है कि अगर नोटिस आया तो आप ये मान के चलिए कि आपकी रिटर्न में फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ बहुत सारी स्टेप्स होती है। लोग क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करी, वो मान लेते हैं फाइल हो, स्टाफ रहता है, जूनियर रहते हैं, कई बार फाइल कर दी, उसका वेरीफाई करना होता है, अब वेरीफाई करना छोड़ दिया तो फिर वो स्टाफ समझ लेता है हमने फाइल कर दिया, या जो उपभोक्ता होता है, व्यापारी होता है, वही समझ लेता हम तो फाइल कर चुके, पता लगा कि वो वेरीफाई नहीं कर पाते, रिटर्न रह जाती, अधूरी रह जाती, तो उसको भी इनकम्प्लीट रिटर्न मान के नोटिस आ जाता है।
0: तो उम्मीद है कि जो भी श्रोता इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे होंगे उन्हें ज़रूर इसका समाधान मिला होगा आपके ज़रिए। मनीष सर, छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के लिए शुरुआती दौर में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई?
2: देखिए, छोटे व्यापारी शुरुआत पे ऐसा है कि वो समझ ही नहीं पाए जीएसटी है क्या, और इसमें चूंकि आईटी जुड़ा हुआ है,

0: तो आईटी के जुड़ते साथ ही ऐसा एक मानना हो जाता है कि जो अनपढ़ है, जो छोटे किसान है, छोटे व्यवसायी है, वो कैसे जीएसटी फाइल करेंगे। उनको एक अलग से आदमी रखना पड़ेगा जो उनके प्रॉफिटेबिलिटी को घटा देगा। तो ऐसे बड़ा अड़चन उनको, एक बड़ा अलग सा, क्योंकि ऐसे में उनको पहले जो सिस्टम था उस सिस्टम में उन्होंने जितने रुपए का बिजनेस किया उस पर वो टैक्स दे के चले आते थे। अब ये पूरा आईटी इनेबल्ड काम गतिविधि हो गया, तो ऐसे में उनको अड़चन आते रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अब तो 10 साल होने को आ गए, तो अब इस तरह का अड़चन जो व्यवसायी वर्ग है वो नहीं सोचता, वो गब्बर सिंह नहीं बोलता है।
1: पहले इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई जो होता है बड़ा इनिशियल स्टेज वाला बिजनेस है, मतलब बहुत छोटा छोटा बिजनेस होता है। उसमें उनके कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो लोग इस बात से बचना चाहते हैं कि वो टैक्स, पहले का नियम ये था कि टैक्स से बचना चाहते थे, क्योंकि मुझे अगर मान लो किसी से परचेज करना है और जिसके पास टैक्स का बिल देगा तो मेरे भी एक नंबर में शो होगा। पहले एक नंबर दो नंबर बहुत चलता था, अब जब से ये सिस्टम आ गया कि सभी को बिल लेना कंपलसरी है, बिल देना कंपलसरी है और वन टाइम टैक्स लगता है, पहले वो अलग अलग पॉइंट पे, हर पॉइंट पे टैक्स लगता था, तो अब वन पॉइंट पे टैक्स लगता है, तो बिल देना ईजी हो गया, बिल लेना ईजी हो गया। तो वो वाली जो प्रॉब्लम होती थी वो खत्म हो चुकी है कि लोग ऐसे बच्चे कह रहा है वो मैं जीएसटी में अगर नंबर ले लूँ तो लोग मुझसे परचेज ना करेंगे, अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है। तो अब सभी को देना है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती,
0: ट्रैकिंग भी हो जाता है,
1: ट्रैकिंग भी हो
0: सुविधाजनक
1: जाता है।
0: और एमएसएमई वालों को सरकार की तरफ से जीएसटी कैसे भरा जाता है इसका समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो अब उस तरह की समस्या एमएसएमई सेक्टर को नहीं है।
2: संजय सर, जीएसटी रिटर्न और अनुपालन प्रक्रिया पहले की तुलना में और कितनी सरल हो गई है?
1: अगर पहले की बात करें तो पहले तो जो रिटर्न फाइल होती थी वो तो मैं मतलब ऑनलाइन ही होती थी, बाकी इसके अलावा जो अनुपालन की बात, पूरे पूरे प्रोसेस जो था, हमको अगर डिपार्टमेंट से नोटिस आया तो डिपार्टमेंट जाकर रिप्लाई देना है, वहाँ पेपर सबमिट करना है। जब से अभी जब से जो नया जो GSTR जो उन्होंने नया चेंज किया, GST 2 जो रिफॉर्म्स लिया है, उसके उन्होंने ये चेंज कर दिया कि टोटल ऑनलाइन काम है, मैनुअल कोई काम है ही नहीं। हमको डिपार्टमेंट में अगर चाहे तो हम डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत, झांकने की जरूरत नहीं है किसी ना किसी एडवोकेट को, ना कंसल्टेंट को, ना CA को और ना ही किसी उपभोक्ता को। वो पूरा काम अपने घर बैठ के अपने लैपटॉप पे, इवन अगर उसके मोबाइल उसके पास वो है तो मोबाइल पे भी कर सकता है। अभी हर एक चीज़ के लिए उसको ई वे बिल के लिए, उसके लिए, इसके लिए किसी के पास जाना, तो उसके पास ऐप दिया हुआ, ऐप में वो सब काम कर सकता है। और जैसे अपील फाइलिंग मैंने बताया था, अभी पहले ही बताया था कि अपील फाइलिंग के लिए पहले फाइल करने के लिए जाना पड़ता था डिपार्टमेंट में, फिर हियरिंग होती थी। अब अपील फाइल भी हम अपने डेस्क अपने टेबल पर बैठ के कर सकते हैं और हियरिंग भी हम अपने ही सीट पर बैठ के कर सकते हैं, हमको कहीं डिपार्टमेंट में झांकने की जरूरत नहीं है।
2: बिल्कुल, बहुत ही
0: बहुत
2: आसान
0: छोटा
2: प्रक्रिया है।
0: छोटा सा, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, और रियल टाइम जो बिल जनरेट कराना है बहुत कम समय में, मतलब आपको ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय, आधा दिन एक दिन पूरा बैठ करके, ऐसा नहीं है।
1: अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो मेरे ख्याल से विद इन मिनट्स आप कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि GST आने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो गई, आप घर बैठे अपने सिस्टम से ही सब कुछ कर सकते हैं। मनीष सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अलग अलग टैक्स स्लैब को भविष्य में कम किया जाना चाहिए, आपकी क्या राय है?
0: कम किया जाना चाहिए तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इस पर, क्योंकि अभी ही जो है वो कुछ लोगों को ज़्यादा लग रहा है। लेकिन कम करने से किस किस कैटेगरी में कम करेंगे? अभी जो है 0% जो है एसेंशियल गुड्स के लिए, 5% है, 18% और 3% जो रखा गया सोना चांदी के लिए रखा, वो एक्सेप्शनल है। तो ऐसे में गुंजाइश कहाँ होता है इसको और कम करने का?
2: जी,
0: तो डिमांड जरूर उठ रहा है, हम तो चाहेंगे एज ए कंज्यूमर कि हमारे ऊपर GST कम से कम लगे, लेकिन शासन जरूर चाहता है कि वो किस तरह से रेवेन्यू बढ़ाए। तो जो लग्जीरियस गुड्स पर जो टैक्स है वो तो लगेगा ही लगेगा। अलबत्ता जैसा सर कह रहे थे कि शराब और पेट्रोल डीजल को भी इस परिधि में लाना चाहिए, तो वो लाने से तो ये और बढ़ जाएगा, स्लैब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भले उसका टैक्स उसका रेट ये 18 नहीं रहेगा, उससे 40 भी नहीं रहेगा, 18-40 के
1: बीच
0: बीच
1: का
0: में
1: कोई हो सकता
0: रहेगा,
1: है।
0: तो वो लाने से शायद बढ़ जाए, एक स्लैब और बढ़ जाए, घटने का तो सवाल नहीं उठता, और ना ही मेरे को लगता है, क्योंकि हमें बजट में पैसा रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, तो वो जनरेट करने के लिए जो फिजिबल तरीके जो रेट्स है वो यही है, ऐसा लग रहा है।
2: मनीष सर, अभी आपने कुछ बहुत रोचक तथ्य बताए थे कि जब आप बेसिक्स लेते हैं तो उन पे GST बहुत ही मिनिमम या फिर नहीं होता है, जब हम लग्जरी की ओर बढ़ते हैं तो हमें अच्छा टैक्स पे करना पड़ता है, तो चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों से अवगत कराएं।
0: जैसे मान लीजिए कि

0: आपको कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है बाहर, तो आपको कॉफ़ी में एक कॉफ़ी को भी एक जैसा नहीं, चाय और कॉफ़ी को भी एक जैसा नहीं समझा जाता है।
1: जी
0: अगर आप दुकान से चाय पत्ती और कॉफ़ी बीन्स खरीद के लाते हैं तो सिर्फ 5% GST लगेगा,
1: जी
0: लेकिन जैसे ही आप किसी कैफ़े में जाकर बनी बनाई कड़क चाय या एक्सप्रेसो ऑर्डर करेंगे तो वो सामान्य गुड्स से सेवा, सामान गुड्स और सेवा बढ़ के 18% हो जाता है।
1: जी
0: उसी तरह से एसी रेस्टोरेंट और नॉन एसी रेस्टोरेंट में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो सर्विस के नाम पर आपको एसी सर्विसेज दे रहे तो उसका बिल, तो वो टोटल बिल पर एसी सर्विसेज देने का जो बिल है उस बिल पर फिर 18% आपका लग्जरी टैक्स लग जाता है। और नॉन एसी वाले में सर्विस में एसी का चार्ज नहीं लगाते हैं, बिल में हालांकि नहीं लिखा रहता है कि एसी का चार्ज लगाया, वो सर्विस लिखते हैं। तो इस तरह से कई जगह आपको हमारे लग्जूरियस लाइफ स्टाइल या कंजम्पशन के कारण टैक्स रेट का चेंज होता है और हमको ज़्यादा पैसा।
2: संजय सर, आम करदाताओं और व्यापारियों के लिए आपका क्या संदेश है?
3: मैं उनको सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि अब वो टाइम ख़त्म हो गया कि अगर हम कोई ऐसा सोच के चल रहे हैं कि हमारी कोई हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज हमारी कुछ भी हो रही है और वो हम छुपा पा रहे हैं, तो वो उस चीज़ को तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, क्योंकि टोटल इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमारी हर चीज़ की, इवन हमारा बैंक अकाउंट है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, हमारा कोई हम परचेस करते हैं कोई छोटी चीज़, हम कार परचेस कर रहे हैं जिसपे कि हम टैक्स नहीं दे के आते हैं, कोई परचेस कर रहे हैं कोई ऐसी भी चीज़ जिसपे हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारी हर एक्टिविटीज़ जो है नज़र में है AI के थ्रू या किसी भी तरीके, उसको हम ये भूल ना करें कि हम उसको छोड़ देंगे, नहीं, ये तो किसी को मालूम नहीं है, ऐसी भूल ना करें, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पर बना रखें सिस्टम कि अगर आपने किसी को पेमेंट किया तो मुझे ने रिसीव किया है मुझे। पहले कई लोग क्या करते थे, आज अभी ख़त्म हो गया, कि जैसे एक शॉप है, शॉप पे दो QR कोड लगा रखे हैं, एक उनने खुद का लगा रखा है, एक बच्चे का लगा दिया, उनको मेरा अकाउंट चलता नहीं है, मेरे अकाउंट में ऑपरेट नहीं हो पाता, या कि कोई प्रॉब्लम, बुजुर्ग हैं प्रोवाइडर एजेड है नहीं चला पाते, तो उन्होंने बच्चे का लगा दिया। अब बच्चे का जो लगा है वो तो जो फिगर बच्चे के उसमें आए वो उन्होंने छोड़ दिया, जो उनका खुद का था कैश फिगर रिटर्न फाइल कर दिया। अब इन डिपार्टमेंट GST ने नोटिस दिया डिपार्टमेंट ने कि आप ये बच्चे के अकाउंट में सेविंग अकाउंट में इतना ट्रांजेक्शन हुआ है, और वो आराम से समझ में आ जाता है कि वो ट्रांजेक्शन किसी शॉप का ही है, टुकड़ों टुकड़ों में रहता है, डेली डेली रहता है, तो जब पूछा तो पता लगा उसके 20-40 लाख रुपए उसके ट्रांजेक्शन हो गए इस अकाउंट में। इस तरह की भूल कई लोगों ने करी, तो इस तरह की भूल ना करें। अगर आप अपनी फैमिली के किसी मेंबर का अकाउंट यूज़, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए अपनी शॉप पे दूसरे का यूज़, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो उसको भी या तो अपने साथ पार्टनर बना लें या उसका भी नाम से कोई आपका शॉप होनी चाहिए जो आप इनकम टैक्स में GST में आप शो कर पाएं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती, कई लोगों को इस चीज़ के कारण नोटिसेज आए।
2: मनीष सर, आने वाले 5 वर्षों में GST से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ मिल सकते हैं?
0: सबसे पहले तो बजट में हमारा रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो एक्सपेंडिचर की संभावना हमारी बढ़ेगी, जिससे कि जिस तरह से हम जो विकसित भारत 2047 की परिकल्पना कर रहे हैं, वो परिकल्पना तभी हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं जब हमारा रेवेन्यू बढ़े, और रेवेन्यू बढ़ने के कारण हम अपने बजट में एक्सपेंडिचर का प्रावधान रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगले जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा तो लोगों को ये समझ में आएगा कहाँ हमें पैसा खर्च करना है, कहाँ हमें पैसा बचाना है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि बुनियादी चीज़ों में 0% टैक्स है, तो जो जैसे बिना ब्रांड वाला अगर खुला अनाज लेते हैं, जैसे ताज़ी सब्जियां ले लिए, चावल दाल गेहूँ ऐसा कुछ भी लिए, दूध लिए, लस्सी लिए, यहाँ तक कि हाथ से बने मिट्टी के दिए, झाड़ू भी लिए, तो वहाँ पर ये टैक्स फ्री है। लेकिन जैसे जैसे हम ब्रांडेड की तरफ बढ़ेंगे, इन्हीं आइटम्स को अगर हम ब्रांडेड आइटम्स खरीदेंगे तो हमारा टैक्स बढ़ेगा। और कुछ जगह है, कुछ जैसे आपने MSME कहा, तो कुछ MSME सेक्टर में भी हैंडमेड, जैसे चंदेरी की साड़ी है तो मिल से अगर बन रही मशीन से तो उसमें GST बढ़ेगा, और जो हैंडमेड है उस पर GST नहीं रहेगा। तो हम 5 वर्षों में अपने लेबर इंटेंसिव और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्निक, किस टेक्निक को हम यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें प्रोग्रेस के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी देखना है। तो एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट को दे पाते हैं, इसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। और आज जैसा लग रहा है, जिस तरह से हमारे यूथ जो बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर फ्रेंडली होते जा रहे हैं, तो उससे GST, जितना ज़्यादा उपभोग उतना ज़्यादा GST।
1: वाकई
2: मनीष सर, आपका क्या संदेश रहेगा आम करदाताओं और व्यापारियों के लिए?
0: करदाता और व्यापारी, देखिए जीएसटी का आवश्यकता है, देश को रेवेन्यू की जरूरत है, तो हमें जीएसटी से बचना नहीं चाहिए। आप जैसे

0: कह रहे थे कि कुछ स्लैब ज़्यादा है, स्लैब कम किया जा सकता है क्या? बहुत ज़्यादा, बहुत सारे देशों में सिंगल स्लैब भी है, लेकिन भारत की जो डेमोग्राफी है, जिस तरह से यहाँ 85% पॉपुलेशन जो है गरीब है
1: जी
0: और 60% पॉपुलेशन गांव में रहता है,
1: जी
0: तो ये जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है हमारे देश का, उस स्ट्रक्चर को देख कर के GST की दरें बनाई जाती हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमको और तरीके अपनाने पड़ेंगे। सिर्फ GST जो कम हायर GST वाले प्रोडक्शन को बढ़ाकर, कंजम्पशन को बढ़ा करके GST नहीं बढ़ाया जा सकता, बल्कि प्रोडक्शन बढ़ा करके भी GST को हम बढ़ा सकते हैं, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड।
1: जैसा कि पहले कह सकते थे, GST जो था टैक्स एक जंगल था, जहाँ कि जो जाता था वो भटक जाता था, इतने सारे वो है रास्ते हैं, वो भटक जाता था। अब वो जंगल साफ हो गया है और एकदम सब चीज़ क्लियर है सामने में, जो आज चेंज हुआ है उसके साथ उसको इस तरह से देख सकते
0: उपभोक्ता का भी, व्यवसायी का भी, उद्योगपतियों का भी, सबका यह नैतिक दायित्व है कि GST प्रॉपरली भरे, और
1: बिल्कुल।
0: GST से ही देश का विकास होना संभव है। GST अगर हम प्रॉपर GST बचाते हैं, कर चोरी करते हैं, तो हम राष्ट्र के साथ राष्ट्रद्रोही का काम कर रहे हैं। कंज्यूमर के लिहाज से भी हमें हर हर बिल, हमको GST वाला बिल का ही भुगतान करना चाहिए। अगर GST बिल नहीं, तो हम भुगतान ना करें।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की बातचीत से स्पष्ट हो गया है कि GST केवल एक कर व्यवस्था नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी, एकीकृत और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। समय के साथ इसमें कई बदलाव हुए हैं और आगे भी इसे और सरल तथा प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने बहुमूल्य विचार रखने के लिए।
1: धन्यवाद
0: आपका
1: आपका।
0: आभार, आपने इस कार्यक्रम में बुलाया।
2: इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। दमोह जिले के लिए बीता महीना विकास संस्था

0: संस्कृति, कृषि और जन स्वास्थ्य गतिविधियों पर आधारित समसामयिक रूप से समृद्ध रहा। पिछले दिनों हुई वर्षा के बाद गर्मी के तपन और तेज धूप से अब जिले वासियों को राहत मिली है। बारिश की बूंदों और रिमझिम बारिश ने नदियां, बांध, कुओं में न केवल जल भर दिया है बल्कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आने लगी है। पर्यटक प्रकृति की सुंदरता को देखने और लुत्फ उठाने सिंग्रामपुर, सिलापरी, मटककुंड, भदभदा और राजनगर जलाशय सहित जिले की प्रसिद्ध लघु वृहद सिंचाई परियोजनाओं की तरफ रुख कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपसे ने आगामी समय में जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। जिले में सोयाबीन की बोनी के लिए 10 से 12 जुलाई तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। जिन खेतों में पानी भर गया है वहां से जल निकासी कर दें ताकि खेत जल्दी तैयार हो सकें। जिले में खरीफ सीजन की बोनी शुरू हो चुकी है। कृषि विभाग ने इस साल जिले में 3,950 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी की है जो पिछले वर्ष से लगभग 1,000 हेक्टेयर से अधिक है। इसमें धान 80,500 हेक्टेयर, मक्का 40,000 हेक्टेयर, उड़द 60,000 हेक्टेयर और सोयाबीन 1.25 लाख हेक्टेयर में बोई जानी है। खरीफ सीजन के बीच किसानों को राहत देते हुए जिले में 2600 मीट्रिक टन डीएपी की खेप पहुंच गई है। जिले में आई एफको की डीएपी खेप में से 2000 एमटी विपणन संघ, 1200 मीट्रिक टन सहकारी समितियां और 800 एमटी मार्कफेड गोदाम में भेजे गए हैं। वर्तमान में समितियों में 1200 मीट्रिक टन पहुँच चुका है। इसके अलावा 1000 मीट्रिक टन डीएपी मिलने की संभावना है। वहीं 100 एमटी डीएपी पहले से स्टॉक में है। कुल मिलाकर समितियों के पास करीब 2300 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध होगा। वहीं जिले में करीब 2000 मीट्रिक टन यूरिया की भी स्टॉक मौजूद है। दमोह जिले में साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले दिनों सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया ने भी भाग लिया। मैराथन के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़े खतरों के प्रति आमजन को जागरूक करते हुए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले के 256 श्रद्धालु पिछले दिनों हरिद्वार, ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान दमोह रेलवे स्टेशन पर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी और दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया ने तीर्थयात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी श्रद्धालुओं को मंगलमय तथा सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। कुछ दिनों पहले दमोह नगर के प्रसिद्ध बेलाताल जलाशय में जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन हुआ जिसमें राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया और दमोह विधायक जयंत मलैया ने भाग लिया। इसी दौरान मंत्री ने जल संरक्षण और संवर्धन की आमजन को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण जन जन का अभियान बन गया है। आपको बता दें कि सिंचाई परियोजनाओं से न केवल दमोह की तस्वीर बदली है बल्कि किसानों की आय भी बढ़ी है। प्रदेश भर में 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे हुए हैं। 10,514 करोड़ रुपए की लागत से जल संरचनाओं के संरक्षण को नई गति मिली है। दमोह नगर टर्फ हॉकी स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल और विधायक जयंत मलैया सहित गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। राज्य मंत्री पटेल ने सभी नागरिकों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने की अपील की है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल से प्रसारित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के लाइव संबोधन को भी उपस्थित जनों द्वारा देखा और सुना गया। जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिला अस्पताल में बच्चों को दवाई पिलाकर की। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। अभियान के दौरान लक्ष्य पूर्ति के लिए 1339 बूथ बनाए गए थे। दमोह जिले के हटा की धरती पर जन्मे तबला वादक रामेंद्र सिंह सोलंकी का चयन प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार के लिए किया गया है। रामेंद्र सिंह हटा स्थित डाइट में शिक्षक रहे अजय सिंह सोलंकी के सुपुत्र हैं। इन्होंने न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और दक्षिण कोरिया में तबला वादन की प्रस्तुतियां दी हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला संसार।

बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी सभी सखियों का कार्यक्रम महिला संसार में। मैं हूं अर्चना सक्सेना और आप सभी को मेरा नमस्कार। सखियों, इन दिनों बरसात का सुहाना मौसम अपने पूरे रंग में है। इस समय ठंडी ठंडी हवाएं, चारों ओर फैली हरियाली, भीगी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और प्रकृति का मनमोहक सौंदर्य मन को आनंद से भर देता है। लेकिन सखियों, यही मौसम हमें सतर्क और सजग रहने का संदेश भी देता है। तेज बारिश, बाढ़, बिजली गिरना, जल भराव या अन्य प्राकृतिक आपदाएं कभी कभी अचानक आपात स्थिति का रूप भी ले सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में घबराने के बजाय पहले से तैयार रहना बहुत आवश्यक है और इसी तैयारी का नाम है, या ये कहें कि इसी तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इमरजेंसी स्किलिंग, यानी ऐसी आवश्यक जानकारियाँ और कौशल सीखना जो किसी भी आपात स्थिति में हमारी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करे। सखियों, आपदा कभी भी और कहीं भी आ सकती है, लेकिन सही जानकारी और थोड़ी सी समझदारी बड़े से बड़े संकट का सामना करने की हमारी क्षमता को दोगुना कर देती है। इसीलिए हर व्यक्ति को प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड की बुनियादी जानकारी, आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करने का तरीका, बिजली, आग या बाढ़ जैसी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के उपाय और बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सहायता करने जैसे आवश्यक कौशल अवश्य सीखने चाहिए। सखियों, हम भी अपने घरों में कुछ ऐसी छोटी छोटी तैयारियाँ करके स्वयं को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं, जैसे महत्वपूर्ण फ़ोन नंबर हमेशा अपने पास रखें, प्राथमिक उपचार सामग्री और ज़रूरी दवाइयाँ घर में उपलब्ध रखें, बच्चों को आपातकालीन नंबरों और सुरक्षित व्यवहार की जानकारी दें, साथ ही किसी भी संकट की स्थिति में अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। सखियों, सही जानकारी, सही समय पर लिया गया निर्णय, सही निर्णय और आवश्यक कौशल ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब हम पहले से सीखते हैं और तैयार रहते हैं तो किसी भी आपात स्थिति का सामना अधिक समझदारी, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। सखियों, बारिश हमें जहाँ सतर्कता और तैयारी का संदेश देती है, वहीं यह मौसम यादों, भावनाओं और रिश्तों को भी एक नई ताजगी से भर देता है। कभी खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें तो कभी फीकी हुई पगडंदियाँ ना जाने कितनी छोटी छोटी कहानियाँ अपने साथ लेकर आती हैं।

सखियों, आज का हमारा शीर्षक गीत का विषय भी है बारिश। सचमुच बारिश केवल एक मौसम ही नहीं बल्कि यादों का झरोखा भी है सखियों। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां भी बारिश की बूंदों की तरह होती हैं, चुपचाप आती हैं और मन को भिगोकर चली जाती हैं। बरसात की पहली फुहार पड़ते ही मन बरबस ही अपने बचपन की ओर लौट जाता है। कागज की नावें, भीगी गलियां, छत पर जाकर बारिश की बूंदों को महसूस करना, इन छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी खुशियां छुपी होती थी। और सखियों, बारिश का यही तो जादू है, ये उम्र नहीं देखती। ये बच्चों के लिए खेल, युवाओं के लिए प्यार और बड़ों के लिए यादों का खजाना बन जाती है।

सखियों, बारिश का मौसम अपने साथ सिर्फ ठंडक और हरियाली ही नहीं लाता, ये मन के भीतर छिपी भावनाओं को भी जैसे धीरे धीरे जगाने लगता है। बारिश कभी इसके बरसते हुए बूंदे कुछ कहती सी लगती हैं, तो कभी बहती हुई हवा किसी अपने की याद लेकर चली आती है। इस मौसम में प्रकृति का हर रंग थोड़ा और गहरा, हर एहसास थोड़ा और सच्चा और हर इंतज़ार थोड़ा और खूबसूरत लगने लगता है। सखियों, बरसात की

खास बात ये भी है कि इसमें मन अनायास ही किसी अपने को ढूंढने लगता है। कभी कोई चेहरा याद आ जाता है, कभी किसी की हंसी तो कभी किसी की बातें। लगता है जैसे रिमझिम फुहारें भी कोई संदेश लेकर आई हैं और हर बूंद किसी अनकही कहानी को अपने साथ बहाए जा रही है। शायद इसीलिए कवियों और गीतकारों ने बारिश को केवल एक मौसम नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा माना है। ये मौसम मिलन का भी है, इंतजार का भी है, तलाश का भी है और उन बातों का भी है जिन्हें शब्दों में कहना आसान नहीं होता।

सखियों, बरसात का मौसम अपने साथ कितने ही रंग लेकर आता है। कहीं रिमझिम फुहारे हैं, कहीं ठंडी हवाएं हैं, तो कहीं घर की खिड़की से बाहर बारिश को निहारते हुए अपने पसंदीदा गीत गुनगुनाने का आनंद। और सच कहें तो इस मौसम में मन भी कुछ ज़्यादा ही खिल उठता है। बारिश की बूंदों में अलग ही चंचलता होती है। कभी ये हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं, तो कभी गुनगुनाने पर, तो कभी अनायास ही मन थिरकने लगता है। और रिमझिम फुहारों के बीच जैसे प्रकृति भी एक मधुर संगीत छोड़ देती है। पेड़ों की सरसराहट, बूंदों की टप टप, ठंडी हवाओं का स्पर्श, सब मिलकर

मौसम को और भी खुशनुमा बना देते थे। और शायद यही मौसम है जब कोई अपना थोड़ा और अपना सा लगने लगता है। ऐसे मौसम में अनकहे भाव भी सहज ही शब्द पाने लगते हैं।

और जब बात बारिश की हो तो भला भुट्टे की याद कैसे ना आए। बारिश और भुट्टे का रिश्ता तो जैसे बरसों पुराना है। गर्मा गर्म भुट्टा और उसकी सौंधी सौंधी खुशबू और रिमझिम फुहारें इस मौसम का मज़ा जैसे दोगुना कर देती हैं। तो सखियों, अब बातों और गीतों के इस सुहाने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अब समय है हमारी आज की व्यंजन विधि का। चलिए, तो आज हम आपको बता रहे हैं भुट्टे से बनने वाली स्वादिष्ट, पौष्टिक और आसान सी रेसिपी भुट्टे का किस। इसके लिए आप सामग्री नोट कर लें। हरे ताज़े भुट्टे लगभग 4 ले लें, दूध 1 कप, हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई हो, अदरक 1 छोटा चम्मच जो कि कद्दूकस किया हुआ हो, राई 1/2 छोटा चम्मच, जीरा 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी 1 चुटकी, हींग 1 चुटकी, तेल या घी आप कुछ भी ले सकते हैं जो कि 1 बड़ा चम्मच हो, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें, और हरा धनिया और नींबू चाहिए। अब बनाने की विधि नोट करें सखियों। भुट्टों को सबसे पहले कद्दूकस कर लें, फिर एक कढ़ाई में तेल या घी गर्म करके राई, जीरा और हींग का तड़का लगाएं। हरी मिर्च और अदरक डालकर हल्का भून लें। अब कद्दूकस किया हुआ भुट्टा डालकर 5 से 7 मिनट तक पकाएं। फिर दूध डालकर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक मिश्रण नरम और हल्का गाढ़ा ना हो जाए। फिर इसमें नमक मिलाकर चलाते रहें। ऊपर से हरा धनिया और नींबू डालकर गर्मा गर्म परोसें। निश्चित ही सबको बहुत पसंद आएगा। सखियों, गर्मा गर्म पकवान और अपनों का साथ हो, मौसम का आनंद इससे बेहतर और क्या हो सकता है। चलिए, तो इसी सुहाने एहसास के साथ सुनते हैं एक और मधुर गीत।

सखियों, बरसात का मौसम केवल रिमझिम फुहारों और सुहाने गीतों का ही मौसम नहीं है, बल्कि ये हमारी धरती, खेती और अन्न उत्पादन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बारिश की बूंदें जब खेतों पर पड़ती हैं तो किसानों की उम्मीदें भी हरी भरी हो उठती हैं। सखियों, यही मौसम खेतों में नई फसलों की शुरुआत और प्रकृति के नवजीवन का संदेश लेकर आता है।

सखियों, बारिश के इन खूबसूरत एहसासों के साथ आज का ये सफर यहीं तक। उम्मीद है ये बारिश की बूंदे आपके मन को भी सुकून और मुस्कान से भर देंगी। इसी के साथ आज मुझे यानी अर्चना सक्सेना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला संसार। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। आज आप सुनेंगे मालविका कानन का ख्याल गायन, राग है देसी। विलंबित ख्याल एक ताल और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे मालविका कानन का ख्याल गायन राग था देसी। इन विलंबित ख्याल एक ताल में और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध थी। इनके साथ तबला संगतकार थे आनंद गोपाल बंदोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत की थी मोहन मुंगरे ने। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने पर कहा है कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरवमय क्षण है। श्री मोदी द्वारा इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया जाना भारत के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री श्री मोदी अपने तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं की सभा को भी संबोधित करेंगे। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न 47 शिक्षकों को आज ही संकुल प्राचार्य तत्काल कार्यमुक्त कर दें। यदि ये आज पदस्थापना वाली शालाओं में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका वेतन रोकें और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के बड़वानी, धार, गुना, सागर, विदिशा, रायसेन सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है श्वेता सिंगर ने।
1: चारों तरफ छा गई है काली घटाएं, बरखा की बूंद बरस रही है। ऐसा लगता है बड़ी दूर से हमसे मिलने आई हैं ये। हम भीग रहे हैं और चारों तरफ हमारी वसुंधरा भी भीग रही है। सब कुछ हरा और संपूर्ण सा लग रहा है और इस मौसम का नाम ही तो है बरखा बहार। तो चलिए इस मौसम में हम भी स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, जिसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 2660902 पर।

0: शहर के श्रोता साथी 0755 लगाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो इंतजार है हमें आपके फोन। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार भाई।

0: बढ़िया है, रोज बारिश हो रही है वैसे।
1: अच्छा लग रहा है ना?
0: अच्छा लग रहा, बिल्कुल सुहावना ठंडा मौसम है
1: जी जी जी
0: और बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ये मौसम बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है बारिश के मौसम में।
1: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है ना।
0: आज आज आसमान में काले काले बादल होते हैं, ठंडी फुहार देते हैं, हवा चलती है ठंडी ठंडी, तो बहुत बढ़िया सुहावना लगता है।
1: बिल्कुल है ना। और इस सुहाने मौसम में हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आज आपका फोन लगा है, फोन करें गीत सुने में, है ना? तो कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म का नाम रहेगा प्यासा सावन।
1: जी प्यासा सावन जी।
0: हाँ। गाने के बोल रहेंगे मेघ हरे मेघा मत तू परदेश जा रे।
1: हाँ बिल्कुल, परदेश हम यही चाहेंगे कि वो ना जाए, खूब अच्छी बारिश हो, है ना? बिल्कुल। तो आपने फोन किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार। मित्रों को याद कर सकता हूँ?
1: बिल्कुल, नाम बताएं।
0: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं
1: जी,
0: गुलशन पाल जी हैं मनकारी से
1: जी,
0: और दिनकर सिंह जी हैं चित्रकूट धाम से, बेटा सिंह यादव जी हैं
1: जी,
0: दास बाबा जी हैं
1: जी,
0: सिंह राजपूत जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं
1: जी,
0: इन सभी को बहन जी ये गाना दे दीजिए।
1: बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका। हाँ जी
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: मैं ग्राम गौर जामार जिला सागर मध्य प्रदेश से कटारे बात कर रहा हूँ।
0: जी तो बताएं कैसे हैं आप?
1: जी मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ। आपका फोन लगा है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: आज गाने तो मुझे दो तीन याद आ रहा है, लेकिन फिल्म है जंगबाज
0: जी,
1: और गाना इसी में गंगा जैसा मन तेरा, और मोहम्मद अजीज और कविता कृष्ण मूर्ति जी ने गाया है। आप सोहिता जी बोल रही हैं?
0: जी बिल्कुल।
1: आवाज तो लगी रही थी
0: जी। और एक और पिक्चर का नाम बता दीजिए, एक और फिल्म आपकी जो पसंद के गीत है एक और बता दीजिए।
1: तो दूसरी मूवी रहेगी भ्रष्टाचार, और इसी में एक गाना है सुरेश वाटिकर और अनुराधा पोटवाल ने गाया है
0: जी,
1: तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करती।
0: बिल्कुल। तो क्या करते हैं आप बताएं?
1: वैसे हम किसान हैं, खेती किसानी का काम है, बाकी फिर घर में बहुत सारे काम होते हैं वो करते हैं, और इसके अलावा रेडियो सुनते हैं, और अलग अलग शौक है उनको भी पूरा करते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आप तो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं खेती किसानी, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ, और इसके अलावा और कौन कौन से शौक हैं आपके रेडियो सुनने के अलावा?
1: तो रेडियो के अलावा ऐसा कोई चीज ही नहीं इसमें मेरा शौक ना हो। स्पोर्ट में मेरा काफी इंटरेस्ट है, क्रिकेट वगैरह है।
0: अच्छा।
1: और इसके अलावा शेरो शायरी का शौक है, गाना सुनने
0: अच्छा,
1: का बहुत
0: अच्छा,
1: शौक
0: अच्छा।
1: है,
0: जी जी जी
1: शेरो शायरी करता हूँ, दूसरों को भी फॉलो करता हूँ, इसके अलावा बहुत सारे शौक है मेरे।
0: बहुत अच्छी बात है ना? देखिए आपने फोन किया, हमसे अच्छी बातें शेयर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: आपका नाम बताएं।
1: मैं कृष्णपाल परमार, छाई मीना, सोनकी तहसील, देवा जिले।
0: हाँ जी, नाम बताएं एक बार फिर से।
1: कृष्णपाल परमार, छाई मीना, गांव का नाम।
0: अच्छा जी, तो बताएं कैसे हैं आप।
1: बढ़िया है दीदी,
0: हाँ, आपका फोन लगा
1: गाना
0: है।
1: सुनना था।
0: हाँ जी बिल्कुल, तो क्या हालचाल है आपके यहाँ, मौसम का।
1: बस बढ़िया, पानी गिर गया था अभी 2 दिन से, बारिश थोड़ी
0: अच्छा
1: रुकी है।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: मौसम अच्छा हो गया।
1: मौसम अच्छा है मैम, बिल्कुल। पर उमस तो है अभी, क्या पानी
0: हाँ
1: गिरा, पानी पर्याप्त तो हुआ नहीं है तो उमस तो है।
0: चलिए,
1: गाना
0: कौन सी
1: सुनना
0: फिल्म।
1: था,
0: हाँ बताएं, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: सेनाई पिक्चर का था मैम,
0: हाँ जी,
1: सेनाई,
0: शहनाई जी।
1: ना झटको जुल्फ से पानी, ये
0: हाँ
1: मोती फूट जाएंगे।
0: बिल्कुल, और एक और मूवी बता दीजिए आप जिनका गीत सुनना चाहेंगे।
1: एक सुना दीजिए, सिंदूर पिक्चर का, पतझड़ सावन बसंत बहार,
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो
1: दोनों
0: देखिए।
1: में
0: हाँ
1: जो मिल जाए, ये लता
0: हाँ
1: जी का
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, हाँ आपने
1: दोनों गाने पुराने हैं, अच्छे गाने हैं।
0: बहुत अच्छे गाने हैं, तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: ठीक है दीदी, नमस्ते।

0: जी नमस्कार।
1: हेलो
0: हेलो। हाँ
1: जी,
0: जी
1: नमस्ते
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: बताएं, नाम बताएं आपका।
1: रानू गुप्ता।
0: हाँ जी रानू गुप्ता, स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, है ना।
1: जी।
0: कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: मूवी का नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके, और उसी में एक सॉन्ग है, देखने वालों ने क्या क्या देखा नहीं होगा।
0: बिल्कुल। चुपके चुपके है फिल्म का नाम, चोरी
1: चोरी
0: चोरी।
1: चोरी चुपके चुपके।
0: जी
1: ठीक है,
0: चलिए, आपने फोन किया, हमसे बातें करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते मैम।
0: हाँ जी,
1: वंदना उपाध्याय बोल रही हूँ, बरेला से। मैं
0: हाँ जी, नाम बताएं।
1: बरेला से बोल रही हूँ, जबलपुर बरेला से वंदना उपाध्याय। जी
0: वंदना उपाध्याय जी। जी
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है, आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
0: मैं भी
1: बहुत देर
0: अच्छी
1: से
0: हूँ।
1: ट्राई कर रही हैं आप, लगा मेरा फोन
0: अच्छा, तो क्या
1: आपका
0: हाल चाल हैं
1: फोन है।
0: आपके? क्या हाल चाल हैं?
1: बढ़िया है, आप
0: बढ़िया।
1: दीदी कौन बोल रहे हैं?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: अच्छा हाँ, बहुत अच्छा बोलती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलती है ना।
0: आप क्या करती
1: मैं
0: हैं? क्या क्या करती हैं आप?
1: वो सर्विस करती हूँ बैंक में,
0: अच्छा, जी
1: अभी छुट्टी
0: सर्विस।
1: पर है,
0: अच्छा
1: महाराष्ट्र में है मेरा जॉब, तो मैं
0: अच्छा
1: जबलपुर में हूँ, तो अभी फिलहाल नहीं जा रही हूँ।
0: हाँ,
1: हाँ मेरी मम्मी नहीं रही थी तब से, मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है,
0: अच्छा,
1: तो हाँ इस वजह से।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ,
0: तो चलिए, ये बात भी बहुत अच्छी है कि आप नौकरी भी करती हैं, साथ साथ रेडियो भी
1: मेरे
0: सुनती
1: मेरे
0: हैं।
1: हस्बैंड भी करते हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं
0: अच्छा,
1: हाई स्कूल में,
0: जी
1: और मैं जब इसमें बैंक में हूँ।
0: बिल्कुल। तो
1: हाँ
0: कौन सी
1: हाँ
0: फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: अब मेरे फोन लग गया, मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना। तो चलिए, बारिश के ऊपर कोई सा भी गाना, बादल यूं गरजता है
0: जी, ये बेताब
1: जी
0: फिल्म का गाना है ना?
1: जी
0: बादल
1: जी हाँ
0: यूं
1: हाँ
0: गरजता,
1: हाँ
0: बहुत प्यारा सा
1: आप
0: गाना
1: इतने
0: है।
1: अच्छे से बोलती हूँ आपका
0: नहीं, आप
1: पर
0: बहुत अच्छा
1: आपसे ही
0: बोलते
1: पूछ
0: हैं।
1: रही हूँ, इसमें क्या दीदी,
0: हाँ
1: आवाज बहुत दबी आती है, लेकिन रेडियो में जो सुनते हैं ना
0: जी
1: तो
0: जी
1: बहुत क्लियर आती है आवाज।
0: जी, और
1: हाँ
0: आपकी भी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लग रही है। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे सब लोगों से बात
0: जी जी जी
1: करके
0: जी बिल्कुल, है ना? तो
1: जी
0: चलिए, आपसे
1: जी
0: बात
1: जी
0: करके
1: जी
0: हमें अच्छा लगा। सुनते हैं
1: हाँ
0: आपकी पसंद का ये गीत।

0: मेरा नाम सागर सिंह है
1: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन सी जगह से?
0: बसई नवाब धौलपुर,
1: जबलपुर से जी।
0: बसई नवाब धौलपुर
1: जी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: दामिनी मिल जाएगी?
1: दामिनी जी,
0: हाँ दामिनी सावन पे झूलों ने मुझे कुछ लाया, मैं परदेसी घर वापस आया।
1: अच्छा, ये कौन? अच्छा ठीक है, क्या करते
0: दामिनी
1: हैं?
0: फिल्म का है?
1: हाँ जी,
0: दामिनी पिक्चर का है।
1: जी जी जी बिल्कुल। क्या करते हैं आप?
0: मैं राजमिस्त्री हूँ।
1: अच्छा, काम करके साथ साथ आप रेडियो भी सुनते हैं?
0: बिल्कुल सुनते हैं
1: जी, और हमें खुशी इस बात की कि हमारे प्रोग्राम आप सुनते हैं, है ना? कार्यक्रम में फोन
0: मैं
1: किया।
0: 90 से सुन रहा हूँ
1: जी जी
0: प्रोग्राम,
1: जी जी जी जी बिल्कुल, इसी बात की तो हमें खुशी। हाँ
0: पुराना श्रोता हूँ मैं बहुत
1: जी, तो कार्यक्रम में आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: हसीन मुलाकात हो और रिमझिम बरसात हो
0: जी,
1: और फिर उसमें कहीं मध्य प्रदेश आकाशवाणी में बात हो,
0: बिल्कुल
1: सौगात ही सौगात हो, सौगात ही सौगात हो। नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार, हम जानते हैं शायद आपका नाम बताएं।
1: जी बता दीजिए बहन जी।
0: मैं कुछ भूल जा रही हूँ, माफी चाहूंगी, आपका नाम बताएं।
1: जी जी जी बिल्कुल
0: जी, नाम बताएं आपका।
1: जी बिल्कुल बताइए,
0: आप बताएं, मैं भूल जा रही हूँ, है ना।
1: अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैं चित्रकूट धाम दिनकर सिंह रूबरू हो रहा हूँ।
0: जी जी जी,
1: भूम से आपको सत सत बार राम राम पहुँचा रहा हूँ।
0: जी नमस्कार, तो कैसे हैं आप?
1: दीदी जी, आपका भी नाम जानना चाहूंगा, काफी दिनों के बाद मेरा फोन लगा है।
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, है ना। कैसे हैं आप?
1: बहुत मस्त है, और रिमझिम बरसात हो रही, उसी में तो मैं जो है ये शायरी कर रहा हूँ। तीन लोग बैठे, राजू और बब्बू वर्मा
0: जी जी,
1: और खेत में जंगल में बैठे, नर्सरी की धान की नर्सरी तैयार हो रही है, बढ़िया।
0: अच्छा,
1: बरसात चल रही है।
0: अच्छा हाँ हाँ हाँ बिल्कुल, तो अभी धान की मतलब चावल की मौसम के लिए चावल बुआई कर रहे हैं आप?
1: जी जी जी, धान की जो है ये बेल तैयार हो रही है, खेत
0: अच्छा
1: तैयारी चल रही है, और
0: हाँ
1: 4 से 6 दिन के बाद जो है बेल लगने लगेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये मौसम बहुत उपयुक्त है, और हम तो यही कामना करेंगे कि भरपूर बारिश हो, है ना, फसल के लिए।
1: जी जी जी, और आपसे ये भी बता दूं कि आपसे पहली मेरे अंदाजे पहली बार बात हो रही है।
0: जी नहीं, हमने आपसे बहुत सारी बातें करी, बस मैं आपका नाम भूल गई थी, है ना। जी,
1: जी, जी
0: तो कौन?
1: कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहती थी कि मैं आपका नाम जानती हूँ, बताऊँ क्या तो आपको भूल गया।
0: जी
1: तो
0: चलिए
1: जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी
1: और हम
0: हाँ।
1: और रक्षा जी रही, कविता
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: मुझे फिल्म जो है सनम बेवफा का गीत सुना दीजिए।
0: जी,
1: चूड़ी मजा न देगी तेरे बगैर, साजन सावन मजा न देगा।
0: बिल्कुल।

0: तो देखिए, आपने फोन किया हमें।
1: प्रेम बाबा जी है, फूलचंद है, और
0: जी जी
1: पेटर सिंह जी है,
0: बिल्कुल
1: अमित तिवारी जी है और पूजा तिवारी, इनके साथ ये गीत सुनूंगा।
0: अच्छा लगा हमें जानकर आपके सभी मित्र ये गीत सुनना चाहते हैं। आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: तो ये था कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दीजिए मुझे इजाजत, आपके रेडियो मित्र श्वेता को नमस्कार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने एक पोस्ट में संस्कृत का प्रेरक कथन साझा करते हुए कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी व्यापारिक नेताओं की सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक पोस्ट में कहा है कि स्वच्छ मध्य प्रदेश हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने और स्वच्छ, सुंदर तथा स्वस्थ मध्य प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनने की अपील की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी कर श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी अभिनव आर्य ने गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न शिक्षकों पर कार्रवाई कर तत्काल प्रभाव से 47 शिक्षकों को उनकी मूल पदस्थापना वाली शाखाओं से कार्यमुक्त कर दिया है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के बड़वानी, धार, गुना, सागर, विदिशा, रायसेन सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये चिट्ठी आई है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा बेलई ज़िला सागर से लक्ष्मण रैकवार की। साथ ही श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रैकवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रैकवार, कंवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनके परिवार के सदस्य, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक की यह चिट्ठी है। दीवाना फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है, कुमार सानू का गाया हुआ। नदीम श्रवण ने धुन बनाई है, समीर ने गीत लिखा है।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाएं, उसके पहले एक सूचना आपको दे देते हैं। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक या कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानूनन व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा भी है कि वे केवल प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में ये अगला पत्र हमें मिला है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद कुमार वर्मा का। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित पसंद और भेजते हैं। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। सुनना चाहा है अभिमान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मनहर उदास का गाया। मजरू के बोल हैं, एस टी बर्मन की धुन है।

अगले गीत के लिए फरमाइश आई है बनियापारा छत्तीसगढ़ धमतरी से रामचंद्र माखीजा का, फिर श्रीमती सविता बेबी स्वाति माखीजा, पूजा छुटकी शरद और पूरा माखीजा परिवार। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। चंबल की कसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया। खयाम के संगीत निर्देशन में साहिल रुध्यानवी ने लिखा है।

और कार्यक्रम में ये अगला गीत नसीब फिल्म का कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर और साथियों ने इसे गाए हैं। आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, सुनना पसंद किया है। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जुंदले और आरती जुंदले। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद आरिश अरसलान और यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज़ बिटिया, रोजमीन, तैमूर और समस्त तड़वी परिवार। महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारणी, सूरज ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर।

फिल्म नसीब के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
2: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडिल नहीं।

0: और डिस्पोजेबल है या नहीं।
1: मतलब?
0: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की नीडल शेयरिंग से एचआईवी एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और एचआईवी के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
4: आकाशवाणी

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं, मगर इतने भी नहीं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ये कुछ ना समझते हो। अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने।
2: फैक्ट्री से एक सज्जन जब चले, वो बड़े मूडी आदमी थे साहब, फैक्ट्री से जैसे ही चले तो तुमने देखा कि एक दूध वाला भी चला जा रहा है, वो भी साइकिल।

में और वो भी साइकिल में। साइकिल में ये चले जा रहे हैं, दूध वाले की कुछ पता नहीं जल्दी जाना होगा या जो भी, तो उसने दूध वाले ने थोड़ी साइकिल की स्पीड बढ़ाई और इनसे आगे निकला। जैसे ही ये इनसे आगे निकला, अच्छा हमसे आगे, मेरी साइकिल की स्पीड बढ़ाई, हम आगे, कभी वो आगे, कभी ये आगे, कभी वो आगे। फैक्ट्री से उन्हें मान लीजिए रांझी जाना था, और साहब ये आगे पीछे आगे पीछे। फिर हमने पूछा कि भैया हुआ क्या आगे पीछे आगे पीछे, कह लगे नहीं जाना तो रांझी था, लेकिन गुरु कभी वो आगे कभी हम पीछे, मेडिकल में जाके हराया उसको। ऐसा आजकल देखा जा रहा है कि आजकल मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले तो बहुत कम थे, और इस समय मीडिया क्रांति है। कोई अगर न्यूज़ दिन भर की दिखा रहा है तो कोई दिन में 6 बार दिखा रहा है, कोई दिन में 15 बार दिखा रहा है, कोई 24 घंटे न्यूज़ दिखा रहा है, पता नहीं कहीं 48 घंटे ना दिखाने लगे, कोई तुरंत की, कोई अब्बी की न्यूज़ दिखा रहा है। ऐसी न्यूज़ में एक न्यूज़ एक ने सुनी और क्या कहा दूसरे दोस्त से, दूसरे दोस्त ने क्या कहा, हाय बोले वो देखी, बोले कौन सी, बोले न्यूज़ वो अब्बी वाली, बोले नहीं यार नहीं देखी। अरे उसमें दिखाया गुरु बहुत डेंजर वाला दिखाया। क्या दिखाया गया? उसमें दिखाया कि एक आदमी अपने शहर का, वो गुरु 72 घंटे माने अफ्रीका के और इंडिया के और बने विदेश के और एक से एक खतरनाक सांपों के बीच में रहे। अच्छा कहले कितने घंटे? 72 घंटे उस्ताद, मतलब अपन 1 घंटे के साथ नहीं रह सकते सांप के सामने, सांप कितना डर लगता है, लेकिन वो 72 घंटे सांपों के बीच में। अरे कहने लगे कोई बड़ा काम नहीं। अरे अरे तुम 72 घंटे तुम बोल रहे बड़ा काम नहीं, बोले भैया ऐसा है 72 घंटे वो सांपों के बीच रहा ना, 2 घंटे हमारी पत्नी के बीच रह के दिखाए। स्टेज पर, चैनल्स में, मीडिया में, सभी तरफ हम लोगों को प्रोग्राम करने होते हैं। खासकर लाइव प्रोग्राम में जब हम लोग शहर से बाहर जाते हैं, तो एक दूर दराज के गांव में भी मैं गया, और वहां पर चूंकि हम लोग प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा का था, हम लोग गए हुए थे, पूरी टीम हमारे साथ थी, लेकिन वहां के जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने कहा था कि भाई हमारे जो आर्टिस्ट हैं, लोकल आर्टिस्ट, उनको भी आपको मौका देना पड़ेगा। हमने कहा अवश्य देंगे। तो ब्रेक के दौरान उनको भी मौका मिला, और उन्होंने भी कुछ अपने गीत प्रेजेंट किए, कुछ अपने आइटम्स प्रेजेंट किए, और उसका एक अलग मज़ा है। देखे साहब वो एक ऑब्जर्वेशन, हम लोगों की ऑर्केस्ट्रा चल रही थी, और वहां से अनाउंस हुआ कि और इसी के साथ ऑर्केस्ट्रा धमाल झमाल कमाल आपसे थोड़ी देर के लिए विराम लेती है, तब तक आपके लोकल आर्टिस्ट होंगे, आपके अपने आर्टिस्ट होंगे, आप खुद होंगे। आइए सुनते हैं आपके आर्टिस्टों को और आपके अपनों को। बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद, बहुत अच्छा, जबलपुर से आए आप लोगों ने सुनाया, बड़ा हम लोग का दिल जो है गदगद हो गया, और अब इसके बाद अनाउंसमेंट हम ही करेंगे और हम ही सुनाएंगे और हमारे बीच के लोग भी सुनाएंगे। हाँ सुनाइए साहब। उनने अनाउंसमेंट किया और म्यूजिशियन को रोक लिया कि भाई आप बजाएंगे, यहाँ म्यूजिशियन तो नहीं, लेकिन मैं आइटम वो बता रहा हूँ कि कैसे उस आइटम को किया। और सबसे पहले बड्डू भैया और बड्डू भैया की श्रीमती जी आ रही हैं, और वो एक गाना पेश करेंगे। आजा ना करिया, अब मधुर चाल में दोनों चले आ रहे हैं बड़े प्यार के साथ, मंच पे आए बकायदा, मंच के उन्होंने पैर पड़े, घुटना पड़े, और फिर उसके बाद मंच पे चढ़े। मंच पे जैसे चढ़े तो अच्छा कौन सा गाना गाएंगे भाभी जी आप बताइए। नहीं अल्लाह जी जी बोल आप तुम ही बता दो ना, वो क्या बताएं आपको, चांदनी पिक्चर का गाएंगे। अच्छा गाइए भाई चांदनी का पिक्चर का गाना गाएंगी, और बहुत बढ़िया गाती हैं, और उसके पहले बलुआ में भी गा चुकी हैं, 3 इनके प्राइवेट एल्बम लॉन्च हो चुके हैं। कौन सा हुआ? एक सोहरों का एल्बम लॉन्च हुआ, और एक दो जो है बधाई गीत का लॉन्च हो गया, और हमने 3-4 जो है दादरे कहरवा और पता नहीं कई कई चीज़ें हमने गाई, बहुत बढ़िया, मतलब बन्ना बन्नी गाए हैं, और मतलब बहुत अच्छा अच्छा हमने गाया है, तो चांदनी पिक्चर का गाएंगे। अच्छा ठीक है तो शुरू करिए। नहीं पहले म्यूजिक तो लगाओ। अब साहब म्यूजिक वाले ने म्यूजिक व्यूजिक बजाया और उन्होंने गीत गाया, कैसे दोनों ने ड्यूट गाओ सॉन्ग है। हाँ तुम तो शुरू करो पहले, तब तो हमारा नंबर है। अच्छा हम शुरू कर रहे हैं, हम सोचे कि तुम शुरू। नहीं आप शुरू करो। अब उन्होंने शुरू किया।

0: महबूबा से मिलने खाली हाथ नहीं जाते। तुम्हें नहीं पता सत वही ले आते यहाँ से छूछे यहाँ चले आए तुम
1: साहब। ये आइटम का खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रयास रहा। आप चलिए दूसरे और हमारे जो गाने के लिए आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया गाते हैं। आ जाओ भैया, तुम्हारा क्या नाम?
2: हमारा नाम है
1: वही
2: वही नहीं हम भूल गए नाम नाम बताओ।
1: हमारा नाम है कुरकुर कुरकुर कुरकुर।
2: क्या नाम है?
1: कुरकुर कुरकुर कुरकुर।
2: कैसा नाम है?
1: शॉर्टकट में है ना लंबा बहुत बड़ा है, वो हम नहीं बता पाएंगे, हमारे भैया बता पाते।
2: अच्छा अच्छा ठीक है, आप कौन सा गाना गाएंगे?
1: आज की पिक्चर का गाएंगे।
2: अच्छा गाइए आज की पिक्चर का गाना। देखिए बहुत बढ़िया है खुरखुर खुरखुर जी, और ये आज की पिक्चर का गाना गाएंगे।
1: कौन सा वाला?
2: टाइटल वाला गाना गाएंगे। टाइटल वाला गाना गाइए। कैसे उन्होंने गाना का सत्यानाश किया?
1: मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, अगर साथ छोड़ा ये बाधों न तोड़ा, मैं तुमको भुला दे आऊंगा।
2: ऐसा गा रहा है बेसुरा। चलो इसके

0: प्यारी है, कहो ना प्यारी है।
1: और अब एक बार फिर मैं आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी एक फिल्म की कहानी सुना रहा हूं। ऐसी फिल्म की कहानी जिसको मैं देखने गया था और मेरा साथी था मेरे साथ लल्लू। लल्लू जो था उसको पान खाने का बड़ा शौक था, तो मैं और लल्लू दोनों फिल्म देखने के लिए गए। बड़े प्यारे प्यारे गाने थे उस फिल्म में, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे। तो साहब ऐसा है कि फिल्मों का शौक तो सभी को है, रेडियो के माध्यम से बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हम सुनते हैं। कभी कभी हमारे दूरदर्शन वाले भी बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चरें दिखाते हैं, गाने भी दिखाते हैं। खैर, तो उसी शौक को पूरा करने के लिए हम फिल्म देखने के लिए गए। साहब टिकट ली, टिकट लेने के बाद जब उस थिएटर में यानी टॉकीज के जो द्वार था, दरवाजा था, वहां जब हम पहुंचे तो हमने अपनी टिकट किसको दी? गेट कीपर को। उसने टिकट ली और हमसे कहा कि हाँ आप बैठिए, आपकी चेयर का नंबर है K41-42, यानी के सीरीज में 41-42। तो हमने लल्लू से बोला चल भाई अपन बैठे। तो लल्लू मुझसे बोलता है, इसके मुंह में पहले से पान था, उसके बाद मुझसे लल्लू बोलता है,
2: एक काम करो भाई साहब, आप जाकर बैठो, मैं एक आध पान खा के आता हूँ।
1: हमने कहा भाई साहब आपके मुंह में पान तो पहले से है। तो वो मुझसे बोलता है,
2: अरे नहीं ऐसा है कि अब एक आध पान और खा लेंगे, एक आध हम आपके लिए ले आएंगे।
1: हमने बिल्कुल ठीक है। मैं अकेला उस हॉल में जाकर बैठ गया, लल्लू भैया गए थे पान खाने। तो मैं जहां बैठा था क्या देखता हूं क्या सुनता हूं, एक भाई साहब बिल्कुल मेरे बाजू वाली कुर्सी पर बैठ के सो रहे थे। बड़े खर्राटे ले रहे थे, बड़ी जोर जोर से। हमने कहा भाई साहब, ओ भाई साहब ये सोने की जगह नहीं है भाई साहब, यहाँ लोग सिनेमा देखने आते हैं, हैं? आप सिनेमा देखने की जगह सो रहे हो, अब घर में जाके सो? तो ये मुझसे बोलते हैं साहब ऐसा है हम घर में जाके सो नहीं सकते। मैंने कहा आप क्यों घर में जाके सो नहीं सकते? इसलिए नहीं सो सकते भाई साहब कि मेरी धर्मपत्नी मेरे को सोने नहीं देती है। कभी बोलती है बर्तन मांजो, कभी बोलती है कपड़े धो, कभी बोलती है घर में झाड़ू लगाओ, कभी बोलती है पैर में मालिश करो, ये करो वो करो, फलाना करो ठिकाना करो। हमने अरे अरे अरे अरे बड़ी दयनीय स्थिति है तुम्हारी, तुमने क्या दहेज वगैरह ज़्यादा लिया था क्या शादी में? तो वो मुझसे बोलते नहीं साहब दहेज मैंने नहीं लिया, मैं तो बिल्कुल दहेज का विरोधी हूँ, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने दहेज ज़रूर लिया था, वो काम उन्होंने गलत किया था, लेकिन दहेज लेने के थोड़े दिन के बाद वो चल दिए ऊपर चले गए। वो तो खैर ऊपर चले गए लेकिन ये सब काम काज करने को मुझको छोड़ गए। हमने कहा चलिए ठीक है, आप सो जाइए या देखिए पिक्चर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है साहब, ये तो सो गए। अब इनके खर्राटे की आवाज मेरे दाहिने कान में आ रही थी और जो बायां कान मेरा खाली था वो क्या सुन रहा था? जो पर्दे के अंदर से गाना आ रहा था। कलाकार पर्दे पे आ गए, उन्होंने फटे कपड़े पहने हैं और पागल जैसा उनका सीन मतलब दृश्य है, ड्रेसेस है पूरा बढ़िया, बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। वो गाना आया, बाएं कान से सुना, दाहिने कान से जो भैया बाजू में बैठे थे, भगवान इनका भला करे, इनके खर्राटे। तो खर्राटे और गाना, गाना और खर्राटे कैसे सुनाई दे रहा सुनिए।

हमने कहा उठो यहाँ से, उठो यहाँ से और तुम सीधे घर जाओ। अरे हम फिल्म देखने के लिए आए हैं, गाना सुनने आए हैं, तुम तो खर्राटे लिए जा रहे हो, जमाई लिए जा रहे हो। इनको तो साहब मैंने भगा दिया, ये तो चल दिए। एक भाई साहब मेरे इस तरफ यानी बाएं की तरफ बैठे हुए थे, बाएं हाथ की तरफ, वो तालियां बजा रहे थे, बड़ी जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। मैंने उनसे बोला क्यों भाई ताली क्यों बजा रहे हैं? कोई अच्छा सीन पर्दे पे आए, जब कोई बहुत बढ़िया सा डायलॉग आए, उस समय आपको ताली बजाना चाहिए। तो ये मुझसे क्या बोलते हैं कि साहब हम ताली इसलिए बजा रहे हैं कि कहीं हमको नींद ना आ जाए। तो साहब उनको शांत किया, पिक्चर आगे बढ़ी, बड़ा मजा आया। फिर वो मेन पिक्चर चालू हो गई, उसमें आगे कौन वो मुख्य कलाकार हीरो थे उस फिल्म के, चले जा रहे थे, उसका एक मेन गाना आया, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा में सीधा साधा। ये गीत भी मैं अच्छे से नहीं सुन पाया साहब। क्यों नहीं सुन पाया? इसलिए नहीं सुन पाया कि एक भाई साहब मेरे पीछे बैठे हुए थे, उनको खांसने की बीमारी थी। अब आप सोचेंगे उनके खांसने में क्या तकलीफ, हम जो भारत के वासी हैं उनकी और हमारी, हमारी और आपकी खांसी कैसी होती, बड़ी साधारण, किस तरह से कुछ इस तरह की खांसी। लेकिन उनकी खांसी ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि विदेश से बुलवाई हो, भगवान जाने कहां से बुलवाई थी, उत्तर से बुलवाई थी कि दक्षिण से बुलवाई थी कि पश्चिम से, मालूम नहीं कहां से बुलवाई थी। क्योंकि उनकी खांसी, खांसने का बड़ा अजीबोगरीब स्टाइल था, जब वो खांसते थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रॉकेट, हवाई जहाज आसमान की तरफ हाई स्पीड में चला जा रहा हो। किस तरह से खांसते थे जरा देखेंगे, ये उनके खांसी की आवाज। अब बताइए ये खांस रहे हैं पीछे से, हीरो पर्दे पे है वो गा रहा है आगे से, मैं बीचों बीच, गाना खांसना, खांसना गाना, एक साथ कैसे सुनाई दिया। पहले तो वो गाना सुन लें आप, दो तीन लाइन ओरिजिनल जो बिना खांसी का है, और उसके बाद खांसी के साथ किस तरह से सुनाई दे रहा है मुझको, मैंने कैसा सुना वो मैं सुनाता हूँ आपको ओरिजिनल गीत।

ओरिजिनल गीत है, ये सुनने मैं गया था जिसका मैंने शुल्क दिया था, लेकिन एक सेवा जो निशुल्क पीछे से उपलब्ध हो रही थी वो भी मेरे अपने मेरे भाग में आ गई। तो कभी गाना कभी खांसना, कभी गाना कभी खांसना, कैसा सुनाई दे रहा है सुनिए।

ते पे तेरे गया बंदा में सीधा दा तेरा वा ते पे तेरे गया बंदा में सीधा दा तेरा वा अरे दा तेरा वा अरे दा तेरा वा अरे दा तेरा हमने उठो यहां से अलग हो हट जा यहां से। तो इनको तो खैर भगा दिया, लेकिन ये दो मिनट के बाद फिर वापस आ गए। हमने क्यों आ गए, तुम घर क्यों नहीं गए? तो ये मुझसे बोलते हैं कर कैसे जाएंगे साहब, घर वालों ने यहाँ पे भेजा है। अच्छा घर वालों ने यहाँ पे भेजा है। हाँ तो भैया दवाई क्यों नहीं करा लेते भाई साहब, दवाई कराइए, होम्योपैथिक कराइए, एलियोपैथिक कराइए, आयुर्वेदिक कराइए, यूनानी कराइए, हैं नेचुरोपैथी कराइए भाई साहब, हैं कुछ ना कुछ तो इलाज होगा इसका खांसी का, आप कब से खांस रहे हैं? तो ये मुझसे बोलते हैं भाई साहब मैं 18 साल से अखंड खांस रहा हूँ। 18 साल से आप अखंड खांस रहे हैं, बहुत अच्छे साहब, वाह भगवान आपका भला करे, हैं। और ये खांसी लेके आप मेरे सामने आए, मेरी पूरी पिक्चर आपने गड़बड़ कर दी भाई साहब। ओहो, तो पिक्चर में यानी हॉल में अंधेरा था, ना हाथ को हाथ दिख रहा था, ना पैर को पैर दिख रहा था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, अंधेरे में एक गोली उनको दे दी। किनको दे दी? वो खांसने वाले को मैंने कहा लो भाई साहब इसको आप चूसते रहना, जैसे बच्चे

0: आपके चॉकलेट वगैरह लेके, गोली बिस्कुट वगैरह लेके चूसते रहते हैं ना, वैसा आप चूसते रहिएगा हैं। इसको गले से नीचे नहीं उतारना, नहीं तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो ये मुझसे बोलता है, ये साहब काहे की दवाई है? ये आपके खांसी की दवाई है, इससे आपको बहुत आराम मिल जाएगा। चलिए ठीक है साहब। उनको मैंने अंधेरे में एक गोली दे दी, उनको तो खैर आराम दो चार मिनट के बाद मिला। तो मुझसे क्या बोलते हैं, भाई साहब, भाई साहब। मैंने कहा बोलिए साहब क्या बात। अरे साहब ऐसी कौन सी जादू वाली गोली दे दी साहब आपने, भगवान आपका भला करे साहब, बिल्कुल मेरी खांसी तो बिल्कुल रुक गई साहब। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आप तो मेरे को एक काम करिए, वो जो दवाई आपने मेरे को दी है ना, उसका आप मेरे को नाम लिख के दे दीजिए, ताकि मैं बाजार से खरीद लेता हूँ। भाई साहब मैं 18 साल से अखंड खांस रहा था, विदाउट ब्रेक खांस रहा था, मैं अखंड खांस रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, वो क्या है कि वो जो हमने तुमको दवाई दी है वो बाजार की दवाई नहीं है, हमारा अपने घर का ओन प्रोडक्ट है, हम स्वयं उस दवाई को बनाते हैं, बाजारू दवाई हमने तुमको नहीं दी। भगवान भला करे उस खांसी वाले का, और भगवान मेरा भी भला करे, उसकी खांसी बंद हो गई। लेकिन उसने जो मुझसे पूछा था कि दवाई का नाम लिख के दीजिए, तो मैं क्या दवाई का नाम लिख के देता? अरे मैंने उसको दवाई दी ही नहीं थी, मैंने तो अपने कोट का बटन तोड़ा और उसको दे दिया था। चलिए साहब पिक्चर आगे बढ़ती है, बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आ रहा था। अचानक एक आवाज मेरे कान में आई, वो कौन सी आवाज थी?
1: भाई साहब, ए भाई साहब, भाई साहब।
0: हमने कौन है भाई?
1: मैं लल्लू आपका दोस्त।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई साहब जो पान खाने गए थे मेरे मित्र, ये आ गए हैं। हमने अच्छा अच्छा, आ जाइए अंदर, आ जाइए हॉल के अंदर आ जाइए। तो ये मुझसे बोलते हैं,
1: कहाँ से आ जाइए, हमको तो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है।
0: हमने किसी को नहीं दिखता भाई साहब अंधेरे में, आपको कैसे दिखाई देगा अंधेरे में है? चले आइए, एक काम करिए, वो जो कुर्सियों के बीच में रास्ता है जहाँ और लोग बैठे हुए हैं, जो कुर्सियों की लाइन है उसके जो बीच में रास्ता है, धीरे धीरे चले आइए, धीरे धीरे चले आइए है, वहां मैं आपका आगे आके हाथ पकड़ लूंगा।
1: जी भाई साहब।
0: तो ये साहब अंधेरे में धीरे धीरे धीरे धीरे चले आ रहे हैं, मेरी तरफ बढ़े जा रहे हैं। लेकिन इनके कारण अंधेरे में किसको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, जरा मैं उनकी कहानी आपको सुनाता हूँ, बड़े संक्षिप्त में, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। तो ये धीरे धीरे चले आ रहे, ये अंधेरे में चले, ये चले, एक ने कहा, अरे अरे ये क्या करते हो? क्यों भाई साहब क्या हो गया?
1: अरे क्या हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया?
0: अरे मेरी मूंगफली पूरी आपने गिरा दी, मेरी पूरी मूंगफली गिरा दी। अरे अरे अरे ये मेरे जूते, जूते कहाँ लेके जा रहे हो भाई, मेरे जूते कहाँ?
1: अरे साहब गलती होगा साहब, कुछ नहीं दिखाई दे रहा साहब। अरे बाप रे,
0: ये चले आ रहे, चले आ रहे, चले आ रहे। अचानक किसी ने मजाक कर दिया बीच में, कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ये सोचे कि मेरे पास आ गए, मैंने बोला बैठ जाओ, मैं तो बहुत दूर बैठा था, किसी ने मजाक कर दिया, कहा बैठ जाओ, तो ये बैठ गए। एक छोटा बच्चा बैठा था उसकी गोदी में वो बैठ गए। उनकी गोदी में बैठ गए। तो उनके पिताजी ने एक तमाचा उसको मारा, वो गिरते पड़ते वो लल्लू लाल हमारे पास आए। हमने उनसे बोला, क्यों लल्लू लाल कहाँ बैठ गए थे?
1: अरे कहले बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन एक हमको भगा दिया मार पीट के।
0: हमने, वो तो बच्चा बैठा था भाई साहब, है वहां नहीं बैठना चाहिए आपको। खैर मैंने उनको बैठाया अपने पास, फिल्म आगे बढ़ी, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। इंटरवल हो गया मध्यान्ह।

शिखर अवजानी और प्रिया सरैया की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म जयेश भाई जोरदार से। आवाज़ से हमने आपको बता दी और संगीत था विशाल शेखर का, बोल लिखे थे जयदीप साहनी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है जुबिन नौटियाल की आवाज़ में, फिल्म का नाम है रूही।

0: कर
1: सचिन जिगर का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल जुबिन नौटियाल की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रूही से और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

0: मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े हैं। इसमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र जिला धार में आयोजित लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नवीन विनिर्माण संयंत्र के भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकेथॉन 2026 का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के अंतर्गत संचालित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम छोर तक रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जाए और प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेले का आयोजन कर रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं।
2: आज
3: हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे

0: तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे। गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
1: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने।
0: जी
1: वे बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही।
0: जी
1: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
0: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
1: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
0: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
0: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
1: क्यों?
0: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
0: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी।
0: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं। लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वुमेरा,

0: जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता यह है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एमयू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने

0: अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आई
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीट जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।

0: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
1: वाकई कमाल है।
2: अभ्यास से गलतियां नहीं होती। हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
0: सचमुच?
1: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
0: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
2: लीजिए, ये आपका हुआ।
0: इसकी कीमत?
2: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
1: सच?
0: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
4: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं। वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जहां पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म ताल से।

या रहमान का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म ताल से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म दिल्ली 6 से, आवाज़ है मोहित चौहान की।

यार रहमान का संगीत प्रसून जोशी के लिखे बोल मोहित चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दिल्ली 6 से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुनिधि चौहान की आवाज़ में, फिल्म का नाम है चमेली।

संदेश शैंडिले का संगीत अरशाद कामिल के लिखे बोल, सुनीति शाहन की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म चमेली से। कार्यक्रम का अगला गीत चित्रा और उस्ताद सुल्तान खां की आवाज़ में फिल्म ट्रैफिक सिग्नल से।

संदीप शांडले का संगीत खिलेश शर्मा के लिखे बोल, चित्रा और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म ट्रैफिक सिग्नल से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है फिल्म गुरु से श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज़ में।

या रहमान का संगीत गुलजार के लिखे बोल, श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गुरु से। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब एक सूचना सुनिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

0: 23 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी ये संदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने का अपील करती है। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल। सूचना समाप्त हुई।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार

0: चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्त पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यह मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन के हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए निजी कंपनी और उसकी संबंध इकाइयों में स्थानांतरित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 27 मार्च की मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। यह योजना खाड़ी देशों के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए थी जिनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण रद्द हो गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार और CBSE से जवाब मांगा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें।

कार्यक्रम सुर्खियों में सुनिएगा रात 8 बजे। चर्चा का विषय है, प्रसारित होगा रात 9:30 पर। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। मुरलीधर बलवानी द्वारा लिखित नाटक बंटवारा सुनवाया जाएगा आज रात 10 बजे। प्रस्तुत करता है राकेश ढौंडियाल।

सजी फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे माफ कीजिएगा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे प्रसारित होगा कल दोपहर 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन सकेंगे कल दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम संग्रहालय सिंह के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक हंसना मना है की 8वीं कड़ी सुनवाई जाएगी कल दोपहर 12:30 पर। महिला कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम सुनवाया जाएगा दोपहर 1:30 पर और कल दोपहर 1:45 पर सुने सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होंगे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन सकेंगे कल दोपहर 2:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा कल शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगा। प्रायोजित कार्यक्रम NCRT सुनवाया जाएगा कल शाम 6 बजे। सुर्खियों में सुनिएगा कल रात 8 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश प्रसारित किया जाएगा रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागरजनी में कल रात 10:30 पर सुन सकेंगे वसंत रानाड़ी का वायलन वादन राग कमोद।

आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। रात 7:21 पर सुनेगा कार्यक्रम ग्राम सभा। कार्यक्रम नमस्कार भोपाल सुन सकेंगे कल सुबह 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनवाया जाएगा कल सुबह 8:30 पर। कल सुबह 9:15 पर सोम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा भाग्यश्री सहस्त्रबुद्धे द्वारा गाए भजन। निकोलाई गोगोल द्वारा लिखित नाटक इंस्पेक्टर जनरल सुनवाया जाएगा कल सुबह 9:30 पर। प्रस्तुत करता है राकेश ढौंडियाल। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10:00। कार्यक्रम गीत सागर प्रसारित होगा कल सुबह 10:05 पर। और कल रात 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

0: ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00 आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा पूरी कर ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया और दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो को लेकर की समीक्षा, कहा अच्छी बारिश से वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या घटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण के तहत इंडोनेशिया की सफल यात्रा पूरी कर दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो ने खुद एयरपोर्ट पर उन्हें विदाई दी। इस दौरे में ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल प्रणालियों से जुड़े रक्षा समझौते हुए, जिससे दोनों देशों के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने योग्याकार्ता स्थित करीब 1000 साल पुराने परम्बानंद मंदिर में पूजा अर्चना की और राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मिलकर मंदिर के पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव से अपने आध्यात्मिक जुड़ाव का जिक्र करते हुए वड़नगर, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि केदारनाथ धाम, उज्जैन महाकाल लोक के बाद अब परम्बानंद मंदिर के पुनर्निर्माण से जुड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। वे भुवनेश्वर में समुद्री मत्स्य संसाधनों से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ओयूटी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से जुड़े दस्तावेज का लोकार्पण भी होगा। इसके बाद वे नाइसर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह खोरधा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर बांध परियोजना की लागत को लेकर 3 दशक से लंबित विवाद सुलझ गया है, जिसके तहत अब मध्य प्रदेश गुजरात को 217 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश के सभी जिलों में छोटे आईटी पार्क विकसित करने के साथ ही डेटा सेंटर उन्नयन के लिए 800 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। वहीं उज्जैन के निकट डोंगला वेदशाला के विकास कार्यों के लिए 39 करोड़ रुपए और नमो हरित नगर योजना के तहत 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए से नगर वन विकसित करने का निर्णय भी लिया गया है।
1: पर्यावरण से संबंधित नई योजना बनाई जा रही है, वह योजना है नमो हरित नगर योजना, जो हर नगर के अंदर नगर वन बनाने हैं पर्यावरण संतुलन के लिए। उसके लिए नमो हरित योजना में अगले 5 सालों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन बने, नगर वन जो बने, उन वनों में स्थापना के समय भी CSR स्थानीय जन भागीदारी की राशि जो मिलेगी उसका बराबरी का राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रति वर्ष 5 सालों तक उनको मेंटेनेंस की राशि भी राज्य सरकार देगी।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुआंगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है।
2: इंडस्ट्रियों का एक तरह से ग्रोथ इंजन पूरे प्रदेश में माने तो वो धार जिला है। आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का लोकार्पण, दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत के अंदर ये सभी संभावना है जिसके आधार पर उसकी विकास दर बता रही, और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके वो सभी संभावनाओं पे काम कर रहा है जिसकी आज दरकार है।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां हर साल 6500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता होगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकेवेटर बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हवाई अड्डों की सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ ये बैठक की। श्री शाह ने सभी हवाई अड्डों पर स्वचालित एक्सरे ट्रे सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। एरो ब्रिज और बैगेज ड्रॉप सुविधा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 2027 तक सभी राज्यों में विदेशी पंजीकरण कार्यालय शुरू होंगे। अगरतला और जेवर हवाई अड्डों पर जल्द आवर्जन जांच चौकी शुरू करने को भी कहा गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AI

0: न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में वर्षा की स्थिति पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के प्रभाव पर हुई समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने बताया कि जून में 33% बारिश की कमी थी, जो जुलाई में घटकर 24% रह गई है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 350 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल से कम है। मंत्री ने किसानों को मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम पानी वाली फसलें बोने की सलाह दी है।
2: अल नीनो के कारण जो कृषि की परिस्थितियां पैदा हो रही है, उस पर लगातार हमारी नजर है। अभी हाल में 3-4 दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, कई राज्यों में बारिश हुई है, और पहले जो 262 जिले कम बारिश वाले थे, उनकी संख्या घटकर अब 178 रह गई है। कल तक 350,85,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह, क्योंकि अब देर हो जाएगी, तो मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम अवधि की फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: धार वन मंडल ने जनवरी से मई 2026 के बीच वन भूमि संरक्षण अभियान चलाकर करीब 590 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। सबसे ज्यादा जमीन बाघ परिक्षेत्र में छुड़ाई गई है, जिसके बाद धार, टांडा, मांडव, सरदारपुर, कुक्षी और धामनोद का नंबर आता है। इस मुक्त कराई गई जमीन पर अब सागौन के पौधे लगाकर पुनर्वनीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कामकाज की समीक्षा की। सीईओ आयुष्मान अरविंद कुमार शाह ने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 5,86,00,000 आभा आईडी बनाई जा चुकी हैं, जबकि लगभग 20,000 अस्पताल और 18,000 डॉक्टर नर्स डिजिटल रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। प्रदेश के 533 अस्पतालों में स्कैन एंड शेयर सुविधा से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा ओपीडी टोकन जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेला आयोजित कर रहा है। यह हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें विद्यार्थियों को एक ही जगह पर पंजीयन, च्वाइस फिलिंग, दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान जैसी सुविधाएं मिलेंगी। राजधानी भोपाल में दवा दुकानों पर सख्ती की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शहर के कई मेडिकल स्टोर्स की अचानक जांच की। जांच में गड़बड़ी मिलने पर 32 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है। बिना फार्मासिस्ट दवा बेचने वाले 2 स्टोर्स का लाइसेंस रद्द किया गया। डॉक्टर के पर्चे के बिना दवा बेचने पर 1 स्टोर का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। इसके अलावा 8 स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड कर 21 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है। भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र से 2 कैनो खिलाड़ियों का चयन हुआ है। एल नेहा देवी और हर्षवर्धन सिंह शक्तावत अब भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। दोनों खिलाड़ी 2026 ICF कैनो स्प्रिंट और पैरा कैनो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। ये प्रतियोगिता 9 से 12 जुलाई तक कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में होगी। कैनो स्प्रिंट एक रोमांचक और प्रतिस्पर्धी जल क्रीड़ा है, जिसमें एथलीट शांत या समतल पानी पर विशेष रूप से डिजाइन की गई नावों में एक सीधी रेखा में कम दूरी की रेस लगाते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा ने जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर सभी बेड पर बच्चों को भर्ती करने और फायर सेफ्टी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय शिक्षा दिवस पर भारतीय ज्ञान परंपरा एवं चरित्र निर्माण विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन नागानंद नाटक की पृष्ठभूमि और रस सिद्धांत पर व्याख्यान हुआ। देवास जिला चिकित्सालय में विश्व क्लब फुट माह के तहत जनजात पैर के तिरछेपन से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। आगरमालवा कलेक्टर ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान को गंभीरता और आपसी समन्वय से संचालित करने के निर्देश दिए। सीहोर में सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत आज भैरुंदा में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अशोकनगर में स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी में विद्यार्थियों को रोजगार परक और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए कई नवाचारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और झाबुआ में शासकीय विद्यालय पिपलिया पारा रोड और आंगनवाड़ी केंद्र का कलेक्टर ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है। शाम के 7:21 हुए हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनवे वारे हमारे सभी भैयन खो सभी बहनन खो आपकी अपनी पूनम बहन की प्रेम भरी नेह भरी राम राम। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जने खूब नौने हुओ और देखो भैया बहना हरम मौसम बदल गयो है, बस कारो शुरू हो गयो है। तनक देरी से ही बरसात लगी है लेकिन मानसून की बारिश होन लगी है। सो समो है हमारे किसान भैया बहनन के लाने महत्वपूर्ण है, कह सके जो समो बुआई के लाने हैं ताकि वे अगली फसल की तैयारी कर पावे। सो हम आपसे कहबो चाहत हैं कि आप और नियमित रूप से ग्राम सभा सुनत रहो ताकि आप और उनको समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलत रहें और सलाह मिलत रहें। और आज भी हम अपने भैया बहनन के लाने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं, सो बने रहो हमारे संगे। लेकिन सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं जा गणेश भजन के संगे ईखो गाँव है बाबूलाल कुशवा और संगी साथियों ने।

0: ग्राम सभा में अब बेरा हो चली है बुंदेली समाचारन की।
1: बुंदेली समाचार।
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। सबसे पहले बात करते हैं सीएम की कैबिनेट बैठक की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताई कि सरदार सरोवर बांध परियोजना की लागत को लेकर 3 दशक से लंबित मामला सुलझ गया है। इसके तहत अब मध्य प्रदेश गुजरात को 217 करोड़ रुपया को भुगतान कर है। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश के सभी जिलों में छोटे आईटी पार्क विकसित करवे के साथ ही डेटा सेंटर उन्नयन के लाने 800 करोड़ रुपया की योजना को

0: जो रसोई दई है उत उज्जैन के निकट डोंगला बेशाला के विकास कार्य के लाने 39 करोड़ रुपया और नमो हरित नगर योजना के तहत 5 सालन में 100 करोड़ रुपया से नगर वन विकसित करवे को निर्णय सुई लौगो है। अब बात करते हैं धार में चीनी कंपनी के भूमि पूजन की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धार जिला के पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियोगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र को भूमि पूजन करो। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी ग्वांगशी लियोगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपये के निवेश से जो संयंत्र स्थापित कर रही है। 9 संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित करो जाए हैं। प्रारंभिक चरण में इतने हर साल 6500 निर्माण उपकरण के उत्पादन की क्षमता है, जी में मुख्य रूप से एक्सकेवेटर बनाए गए हैं। अब बात करते हैं मांडविया ईपीएफओ की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जा महीना की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लाने 8.25% ब्याज जमा करवे को काम पूरा कर ले है। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बताई है कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकन के खातन में 1,44,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा करी जाए है। श्री मंडाविया ने कही है कि ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के पूरे रिकॉर्ड को पुराने केंद्रीकृत संरचना से नए केंद्रीकृत डाटाबेस में स्थापित करवे की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब बात कर रहे थे प्रवेश मेला की। प्रदेश के सभी शासकीय अशासकीय और निजी महाविद्यालय में रिक्त सीटन पर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलावे के लाने उच्च शिक्षा विभाग 8 से लेकर 15 जुलाई तक प्रवेश मेला आयोजित कर रहा है, जो हर दिन सवेरे 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चल है। इनमें विद्यार्थियों को एक ही जगह पंजीयन, चॉइस फिलिंग, दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान की जैसी सुविधाएं मिल हैं। और अब बात कर रहे थे एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 की। भोपाल में 13 जुलाई को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 को आयोजन हुए, जी में GCC डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश पर फोकस रहे है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद कर हैं। पिछली 2 कॉन्क्लेव में कुल 32,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। कार्यक्रम में देश विदेश की कई अग्रणी कंपनियां भी शामिल हुए। और अब बात कर लेते हैं UGC क्रेडिट पॉइंट सिस्टम की। UGC ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लाने महत्वपूर्ण निर्देश जारी करे हैं। जुलाई 2026 सेमेस्टर से पोर्टल के मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स शैक्षणिक पाठ्यक्रम को हिस्सा बनाए गए हैं। छात्र कोनो भी डिग्री या डिप्लोमा लेवे के लाने 40% तक क्रेडिट पॉइंट ऑनलाइन कोर्स से पूरे कर सकते हैं। इसे दूर दराज के विद्यार्थियों को देश के श्रेष्ठ शिक्षकों से पढ़वे को मौका मिल है। विश्वविद्यालय ने जो क्रेडिट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट में जोड़वो अनिवार्य हुए। अब बात कर लेते हैं कोचिंग संस्थान फायर सेफ्टी की। लखनऊ के कोचिंग हादसा के बाद भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी को लेकर सख्त रुख अपनाओ है। निगम अब तक फायर सेफ्टी नियमन के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर चुका है। अन्य संस्थानों को 15 से 30 दिन के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी भवनों में फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम और 2 सुरक्षित इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य हुए हैं। संचालकों को शपथ पत्र देके अपनी कमियां बताने हुए प्रशासन को कहवो है कि तय सीमा में सुधार ना होवे पे कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं। और अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज अमरनाथ यात्रियों के लाने श्रद्धालुओं को 7 बजे जत्था जम्बू बेस कैंप से रवाना भो। यात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिलो। श्रद्धालुओं ने यात्रा की व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामन की सराहना सुई करी है। यात्रियों ने कही है कि पूरे मार्ग पर सुरक्षा बलन की तैनाती से वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और अब मौसम को हाल बात करें मौसम की तो प्रदेश में मानसून पूरी रफ्तार से सक्रिय है। पन्ना, छतरपुर, खंडवा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालत बन गए हैं। मौसम विभाग ने श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर और टीकमगढ़ में अति भारी बसकारी को ऑरेंज अलर्ट जारी करो है और अगले 4 दिन तक भारी से अति भारी बसकारी की संभावना है। और इसके संग ही बुंदेली समाचार समाप्त भय।
1: बुंदेली समाचार।
0: भैया बहनाहरों, सरकार हमें किसान भैया बहनों के कल्याण के लाने कई सारी योजनाएं चलात है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भारत सरकार द्वारा साल 2007 में शुरू करी गई। ई में

सिंह एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना है। इको मुख्य उद्देश्य है कृषि और संबद्ध क्षेत्रन में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाके कृषि को एक लाभकारी और आर्थिक गतिविधि बनावो और किसान की आय में वृद्धि सोई करवो है। और योजना राज्य को अपनी स्थानीय जलवायु आवश्यकताओं के अनुसार कृषि योजनाएं बनावे लागू करवे की पूरी पूरी छूट देते हैं। इसके तहत फसल पूर्व और फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा जैसे कि भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, बाजार के निर्माण पर जोर दो जाते हैं। केंद्र और राज्यन के बीच इको वित्त अनुपात 60-40 को होते हैं, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यन के लाने 90-10 और केंद्र शासित प्रदेशन के लाने 100% होते हैं। इसे साल 2017 में RKVY रफ्तार के रूप में पुनर्गठित करो गो है ताकि कृषि व्यवसाय नवाचार और युवा उद्यमियन को सोई बढ़ावा दो जा सके। सो जो तो हती जानकारी और अब अपन सुन लेते हैं जो देवी गीत बहादुर सिंह नरवरिया और संगी साथिन की आवाज़ में।

0: भैया बहनों, खरीफ फसलों जैसे कि धान, सोयाबीन, मक्का की बुआई को जो समय है, इसे भरपूर उत्पादन लेबे के लाने बुआई के समय अपन और रखो कई सारी छोटी छोटी बातन को ध्यान रखो बहुत ही जरूरी है। और ई के लाने हमेशा प्रमाणित मने उन्नत किस्म के बीजन को चुनाव करवे। बुआई से पहले बीजन को अंकुरण परीक्षण करवे। फपूंद और कीटनाशक से बीज उपचार भी करवो जरूरी है। लेकिन का है कि भैया बहनों, ई के लाने अपन को सही जानकारी और तकनीकें भी पता हो वो जरूरी है। सो चलो ई के संबंध में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुनत हैं जो भेंट वार्ता, खरीफ फसलों के उन्नत बीज एवं बुआई की विधियां, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर देवीदास पटेल, इनसे बातचीत करी है राधा चौरे बहन ने।
1: किसान भाइयों, अच्छी पैदावार की नींव सही समय पर सही बीज के चयन और वैज्ञानिक तरीके से की गई बुआई पर ही निर्भर करती है। यदि किसान उन्नत एवं प्रमाणिक बीजों का उपयोग करें और अनुशंसित विधि से बुआई करें तो कम लागत में भी बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि खरीफ का मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए आज हम भेंट वार्ता में इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। विषय है खरीफ फसलों के उन्नत बीज एवं बुआई की विधियां। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर देवीदास पटेल जी, जो कि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर नर्मदापुरम में। सर, ग्राम सभा के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम।
1: सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि खरीफ मौसम की प्रमुख जो फसलें होती हैं कौन कौन सी होती हैं और इस समय किसान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें।
2: बहुत अच्छी बात है। खरीफ फसल में जो हमारे पास जो मुख्य फसलें हैं उसमें धान, सोयाबीन, अरहर और मक्का, ये हमारी चार मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा जो श्री अन्य फसलें हैं उसमें कोदो, कुटकी, रागी, सावा, ज्वार और बाजरा, ये प्रमुख रूप से हमारी श्री अन्न है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में मिर्ची और कपास की खेती भी की जाती है।
1: डॉक्टर देवीदास जी, उन्नत जो बीज होते हैं उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। किसानों को हमेशा प्रमाणिक बीज ही क्यों खरीदना चाहिए और बीज खरीदते समय किसान किन किन बातों की जांच अवश्य करें?
2: किसान भाई, खरीफ फसलों की बात आती है तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है बीज। अगर आप उचित अच्छा गुणवत्ता युक्त अगर बीज खरीदते हैं तो आपकी जो आदान सामग्री है जैसे खाद, बीज, खाद, पानी और ये है, उसका अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हमें हमेशा उन्नत बीज ही खरीदना चाहिए। उन्नत बीज ही क्यों, जैसे हम जब अपने खेतों में बुआई करते हैं तो अगर हमने सही बीज का चयन किया है तो उसमें अंकुरण अच्छा आएगा, फसल अच्छी आएगी, उसमें जो आदर इनपुट्स हैं, आदान सामग्री है, उसका उचित उपयोग होके हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। हम देखते हैं कि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि सस्ते बीज के चक्कर में कहीं ना कहीं से जो टीएल सीड होते हैं उसको खरीद लेते हैं और जब वो बुआई करते हैं तो कहीं ना कहीं जर्मिनेशन में दिक्कत आती है या फिर अच्छी प्लांट डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि आप प्रमाणित बीज ही खरीदें और वो

0: बीज आप प्रमाणित संस्थाओं से, चाहे तो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से या NSC के माध्यम से या कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से ही आप प्रमाणित बीज का ही चयन करके उसकी बुआई करें। इसकी गुणवत्ता, जिस भौतिक गुणवत्ता और आनुवंशिक गुणवत्ता की गारंटी होती है अगर आप प्रमाणित बीज ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आप अगर प्रमाणित बीज खरीदते हैं तो आपके यहाँ फसल बहुत अच्छी होगी और हम कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर पटेल, कई बार क्या होता है कि किसानों का खुद का भी बीज रखा होता है, तो वो सोचते हैं कि जो अपना रखा हुआ बीज है उसको बोना चाहते हैं। तो अगर वो अपना रखा हुआ बीज बो रहे हैं तो उस वक्त उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: ये बहुत अच्छी बात है कि अगर किसान

0: और हम कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर पटेल, कई बार क्या होता है कि किसानों का खुद का भी बीज रखा होता है, तो वो सोचते हैं कि जो अपना रखा हुआ बीज है उसको बोना चाहते हैं, तो अगर वो अपना रखा हुआ बीज बो रहे हैं तो उस वक्त उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: ये बहुत अच्छी बात है कि अगर किसान अपना ही बीज बोना चाहे तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है बीज का अंकुरण। अगर किसान अपने घर पर रखा हुआ बीज उपयोग करना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले उसका अंकुरण परीक्षण कर ले। अंकुरण परीक्षण करना बहुत आसान है। आज एक नॉर्मल जैसा किसान है वो अपने जो बीज है उसको पहले तो अच्छा साफ सुथरा कर ले, क्लीन कर ले। क्लीन करने के बाद 100 दाने उसमें से निकाले, रेंडमली उसमें से 100 दाने निकाले, उसको चाहे तो सूती कपड़े में कपड़ा गीला करके 100 दाने गिनकर उसको फोल्ड करके रख दें ऐसे स्थान पर जहाँ का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जिसको हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं, उस पर अगर रखता है तो 2 से 3 दिन में उस पर अंकुरण आ जाता है। अगर 100 दाने में से 80 दाने 85 दाने अगर जर्मिनेट होते हैं, मतलब धान के खेत में 80 दाने के जर्मिनेट होते हैं तो वो बीज आपका सही है। सोयाबीन के केस में अगर 90 लगभग 70 दाने अगर ठीक जर्मिनेट हो रहे हैं तो वो बीज आपका अच्छा है। तो किसान भाई अगर जर्मिनेशन परसेंट अच्छा है उनके बीज का तो उसका भी वो बीज बुआई के लिए उपयोग कर सकते हैं, परंतु बीज भौतिक और आनुवंशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। बहुत से समय क्या होता है कि हमारे यहाँ मशीनरी ज़्यादा के कारण हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग होती है तो कहीं ना कहीं बीज मिक्सिंग होता है। तो किसान भाई अगर अपना बीज स्वयं का रख रहे हैं तो वो इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें कुछ किसी दूसरा अन्य वेरायटी का बीज मिक्सिंग ना हो।
1: जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बीज उपचार हम अक्सर सुनते हैं और वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है कि बीज उपचार बहुत ज़रूरी है, तो ये क्यों ज़रूरी है और अगर कोई करना चाह रहा है बीज उपचार तो कैसे किया जाता है और इससे किसानों को क्या लाभ मिलता है?
0: बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब हमारे यहाँ नवजात शिशु बच्चे होते हैं तो उसको हम टीका लगाते हैं।
1: जी जी जी।
0: तो जो हम फसल बो रहे हैं उसको भी अगर हम टीका लगाते हैं तो जो आने वाली बीमारियाँ हैं उससे हम अपने बीज को बचा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बीमारी 2 प्रकार से आती है, एक होती है बीज जनित बीमारियाँ और एक होती है मृदा जनित बीमारियाँ। इस बीज जनित और मृदा जनित बीमारी कीटों से फसल को सुरक्षित रखने के लिए बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार करने की विधियाँ अलग अलग हैं। जैसे हम बात करें तो जब बीज उपचार किया जाता है तो सबसे पहले हम करते हैं फफूंदी नाशक से।
1: जी जी।
0: फफूंदी नाशक के रूप में हम कार्बेंडाजाइम दवा ले सकते हैं, है ना, या अगर हम जैविक में करना चाह रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा वृडी ये ले सकते हैं। अगर हम केमिकल से कर रहे हैं, ट्राइकोडर्मा से कर रहे हैं, तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम उसको दवा को ले सकते हैं। अगर ट्राइकोडर्मा वृडी से कर रहे हैं तो 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम इस दवा को ले सकते हैं। पहले हम फफूंदीनाशक से करें, उसके बाद से बात करते हैं कीटनाशक से, जिसमें एमामेक्टिन बेंजोएट या थायोमिथाक्सान 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम बीज उपचार कर सकते हैं। और जो तीसरी दवा होती है वो होते हैं कल्चर, जैसे PSB हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पैरिलम हो गया, इनसे हम बीज उपचार कर सकते हैं 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के। अगर हम सोयाबीन की बात करें उसमें राइजोबियम से भी बीज उपचार हम कर सकते हैं।
1: सर, धान की बात करें, सोयाबीन की, मक्का, उड़द या मूंग जैसी किसी भी प्रमुख हम खरीफ फसलों की बात करें तो इनकी बुआई का सही समय क्या होता है और उनकी जो उन्नत विधियां होती हैं उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे।
0: जी मैडम, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाई बहुत परेशान होते हैं कि वो प्री मानसून ही सोइंग कर देते हैं। अभी बहुत से केसों में सोयाबीन की बुआई लोगों ने कर दी है, किसानों ने कर दी है, और मेरे पास बहुत से फ़ोन भी आ रहा है कि सर हमारी वो सोयाबीन जमी नहीं। तो जब तक हमारी 5 से 7 इंच बारिश ना हो जाए, है ना, 10 सेंटीमीटर तक बारिश ना हो जाए जब तक हमें बुआई नहीं करना चाहिए। अगर हम बुआई पहले करेंगे तो जमीन की क्या होती है, गर्मी निकल नहीं पाती, और जिसके कारण थोड़े से बारिश हो रहे और अगर हमने बुआई कर दी तो उसमें आपका जो सीड है वो खराब हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि 12 से 15 इंच बारिश हो जाने दें, उसके बाद ही हम बुआई करें, है ना। उसके लिए सबसे अच्छा जो जून, अभी इस साल थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो जुलाई का 1st वीक बुआई के लिए उपयुक्त रहेगा, क्योंकि जो बारिश आने वाली हो मतलब 15 जून के आसपास आ रही है, तो 15 जून के पास आसपास ही हम उसकी बुआई करें। 15 जुलाई के पास बुआई करें तो वो उपयुक्त रहेगा।
1: जी जी जी।
0: बात आप कर रहे हैं कि जैसे हमने अच्छी उन्नत किस्म का बीज भी ले लिया, पर अधिक उत्पादन के लिए उसकी बुआई बहुत ही जरूरी है। अगर सही तरीके से अगर हम बुआई करते हैं तो उसमें हमारी लागत कम बीज में भी अच्छा हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आप सबसे पहले हम बात करते हैं धान की।
1: जी।
0: तो अगर धान की बुआई, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है इसमें

0: में खरीफ में सबसे मुख्य फसल हमारी धान है।
1: जी
0: अगर हम सही तरीके से धान का बुआई करते हैं तो अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उपलब्ध जल, मौसम और संसाधनों के आधार पर हम अलग अलग प्रकार से हमारी धान की बुआई कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ब्लैक सॉइल हो, काली मिट्टी हो, जहाँ अधिक बारिश हो, उस क्षेत्रों में हम धान की जो विधि है उसमें हम ट्रांसप्लांटिंग के माध्यम से भी बुआई कर सकते हैं।
1: जी, अगर हम बात करें कि कई बार पानी आ गया और आपने जैसे बताया मजदूरों की कमी है, तो आप इन इन विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर कहीं मानसून देर से आए, तो उस स्थिति में किसान भाइयों को क्या बुआई की योजना बनानी चाहिए?
0: अगर मानसून देर आता है और तो उस कंडीशन में हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि फसलों का चयन,
1: जी
0: अगर बहुत ज़्यादा लेट हो रही है तो फिर हम श्री अन्न की ओर जाएं, है
1: जी
0: ना। क्योंकि धान के लिए अगर आप उचित समय पर बुआई करोगे तो आपको अच्छा प्रोडक्शन आएगा, क्योंकि उसको लगभग 120-125 दिन की ड्यूरेशन चाहिए। और
1: जी
0: अगर मानसून लेट आता है तो उस कंडीशन में हम धान की बजाय जो हमारे अन्य विकल्प है, श्री अन्य,
1: कोदो कुद
0: कोदो, कुटकी,
1: जी
0: सावा,
1: जी
0: क्योंकि ये 70-75 दिन की फसलें हैं तो
1: जी
0: उस पर हमको शिफ्ट होना चाहिए।
1: जी
0: या फिर धान की जो ऐसी किस्में हैं जिन कम अवधि में पक के तैयार हो रही, जैसे JR 21, JR 206, जो JR 206 वो 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है,
1: अरे
0: तो
1: वाह
0: हमें उस वेरायटी की ओर जाना चाहिए। JR 21 110-115 दिन में पक के तैयार हो रही है, तो हमें इन वेरायटियों का सिलेक्शन उसमें करना चाहिए।
1: सर, सोयाबीन की बुआई के बारे में भी आपसे
0: जी
1: जानना चाहेंगे, उसकी उन्नत विधि भी समझना चाहेंगे।
0: हमारे यहाँ की जो दूसरी महत्वपूर्ण फसल सोयाबीन है,
1: जी
0: और यह सोयाबीन बहुत सेंसिटिव फसल है ना, तो इसके लिए अगर हम उन्नत विधियों का अपनाते हैं तो सोयाबीन का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो दो वैसे तीन विधियाँ हैं, एक तो होती है डायरेक्ट सीड्रिल से बुआई। डायरेक्ट सीड्रिल से बुआई हम 40 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस रख के नॉर्मल अपनी जो सीड कम फर्टिलाइजर है उसके द्वारा हम बुआई करते हैं। परंतु जब पर्याप्त अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जब हम बुआई करते हैं सीड्रिल से तो कहीं ना कहीं पानी भरा जाएगा, तो वो गलने की समस्या हो सकती है। इसके लिए दो बहुत अच्छी विधियाँ हैं। एक है ब्रॉड बेड फर्रो विधि,
1: जी
0: है ना। इसमें क्या होता है कि ब्रॉड बेड फर्रो प्लांटर एक इक्विपमेंट है, उसके माध्यम से हम अपने खेतों की तैयारी करते हैं। उसमें लगभग 1.2 से 1.5 मीटर चौड़ी ऊंची हुई क्यारियाँ बनती हैं, और पानी निकलने के लिए साइट में 30 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 15 सेंटीमीटर ऊंची नालियाँ निकलती हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: अगर जब अधिक पानी होता है तो नालियों के माध्यम से पानी खेतों से बाहर जाएगा, तो हमारी फसल उसमें सुरक्षित होगी। एक रिज एंड फर्रो मेथड है। रिज एंड फर्रो मेथड में लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंची और लगभग 2 फीट
1: जी
0: चौड़ी बेड बनाते हैं, उसके ऊपर दो क्यारियों में हम सोयाबीन की बुआई करते हैं। इसमें भी वही फायदा है कि अगर जो हम नमी को संरक्षित कर सकते हैं और अधिक बारिश होती है तो पानी नलियों के माध्यम से बाहर
1: बाहर
0: निकल
1: निकल,
0: जाए,
1: जी
0: और
1: जी
0: जब हम दो लाइन ही सोइंग कर रहे हैं तो उसमें पानी और हवा, प्रकाश, इसका पर्याप्त मात्रा में फसल को मिलता है, जिसके कारण हमारा उत्पादन बढ़ सकता
1: बढ़िया
0: है।
1: होता है
0: अगर
1: जी।
0: आपको सोयाबीन का उत्पादन अधिक लेना है तो रिज एंड फर्रो मेथड और ब्रॉड बेड फर्रो मेथड का ही उपयोग करें।
1: सर, अंत में हमारे किसान भाइयों को, बहनों को, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, ताकि वे खरीफ मौसम में अच्छी पैदावार और बेहतर आय प्राप्त कर सकें?
0: जी, सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि पर्याप्त मात्रा में नमी होने पर ही बुआई करें। अगर हम पहले बुआई करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका हमें नुकसान होगा। और जब भी हम बीज लाएं तो बीज किसी भी प्रमाणित संस्था से लाएं या ऐसी विश्वसनीय संस्थाओं से ही बीज खरीदें जिसकी जो आनुवंशिक गुणवत्ता, भौतिक शुद्धता और साथ साथ अंकुरण प्रसरण अच्छा हो। अगर किसान भाई अपने घर का बीज खरीदना अपने घर का बीज बोना चाहते हैं तो उसमें अंकुरण प्रतिशत जरूर देखें।
1: जी
0: अगर 70% से कम अंकुरण आ रहा है तो उस बीज की बुआई नहीं करें। अगर जैसे धान की बात करें तो उसमें कम से कम 80% जर्मिनेशन आना चाहिए। सोयाबीन की बात करें तो कम से कम 70% जर्मिनेशन आना चाहिए। अगर इनसे कम आता है तो हमें उस बीज का उपयोग अपने बुआई के लिए नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारणवश बुआई करना भी पड़े तो आप उसकी बीज दर बढ़ा के करें। उसके बाद जब भी हम बीज उपचार करते हैं या बुआई बीज की बुआई करते हैं तो उसको बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बीज की बुआई करते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ जो कि बीज जनित होती है और कुछ बीमारियां जमीन से होने वाली होती है, तो उनसे हमारी फसल को सुरक्षा, शुरुआती दिनों में फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार

0: करने के तरीके, जैसे अभी हमने चर्चा करी कि उसमें फफूंदी नाशक, कीटनाशक और कल्चरों के माध्यम से हम बीज उपचार कर सकते हैं। उसमें आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप 200-250 ग्राम गुड़ लीजिए। गुड़ को 1 लीटर पानी में हल्का सा कुनकुना कीजिए, गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद उसको ठंडा कीजिए और उसको 3 भागों में बांट दीजिए। पहले भाग में फफूंदी नाशक, सेकेंड में कीटनाशक और थर्ड में हम कल्चर के द्वारा मिक्स करके उसके बाद लेयर बाय लेयर उसकी उपचार करके ही बीज को बुआई करें।
1: तो डॉक्टर देवीदास पटेल जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद,
1: नमस्कार।
2: भैया बहना हरों, अब अपन ने सुनी जो भेंट वार्ता, खरीफ फसलों के उन्नत बीज एवं बुआई की विधियाँ। विशेषज्ञ हते डॉक्टर देवीदास पटेल और इनसे बातचीत करी हती राधा चौरे बहन ने। भैया बहना हरों, देखो का है कि आधुनिक तकनीकें और वैज्ञानिक तरीकन के माध्यम से अपन और अपनी खेती की उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकत हैं। इके लाने किसानन के लाने डिजिटल लर्निंग एक ऐसी क्रांति है जिसमें किसान घरे बैठे फसल प्रबंधन, मौसम की जानकारी और सरकारी योजनाओं को लाभ अपनी भाषा में अपने फ़ोन पर या कंप्यूटर के माध्यम से पा सकत है। किसानन को सशक्त बनावे के लाने सरकार और विभिन्न संस्थाएँ कई शानदार डिजिटल प्लेटफॉर्म और पहल शुरू कर चुकी हैं। किसानन को डिजिटल रूप से जागरूक करने के कई सारे ऐप लाए गए हैं। इमें भारत विस्तार ऐप एक ऐसी विशेष कृषि एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म है, जिते किसान अपनी स्थानीय भाषा में भारतीय एआई के जरिए खेती से जुड़े कोनो भी सवाल को तुरंत जवाब पा सकत है। डिजिटल ग्रीन संस्था 50 से अधिक भाषाओं में किसानों को किसान प्रशिक्षण वीडियो प्रदान करत है, जिसे किसान अपनी समस्याओं को समाधान और अन्य किसानन की सफलताओं से सीखें कर सकत है। एमपी किसान ऐप जो मध्य प्रदेश के स्थानीय किसानन के लाने बहुत ही उपयोगी सुविधा है, जी के जरिए आप खसरा खतौनी, गिरदावरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकत है। इसके अलावा ENAM जो एक राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच है, जो किसानों को डिजिटल रूप से देश की विभिन्न मंडियों और खरीदारों से जोड़त है, ताकि उन्हें उपज को सही दाम मिल पावे। सो जो तो हती जानकारी, चलो अब आपको सुनवाते हैं जो दादरा अलका गुप्ता को गाओ भाव।

भैया बनाहरण चलो अब आपरण को कछु सलाह दे देते हैं। मौसम की परिस्थितियां धान की नर्सरी तैयार करवे किलाने अनुकूल हैं, साथ ही क्यारियां तैयार करवे और अच्छी तरह से सड़ी भई गोबर की खाद और कार्बन डाइजिम ई को उपयोग करके बीज को उपचारित अपन सोई करवे। नर्सरी में उपचारित उचित नमी बनाए रखवे किलाने, अत्यधिक गर्मी से बचावे ई किलाने पुआल आदि से ढकवे। स्वस्थ पौधा तैयार करवे किलाने कीट और रोगों की नियमित निगरानी सोई करवे। सोयाबीन की बुआई की तैयारी करवे किलाने कृषि आदानों की व्यवस्था करवे। उन्नत और अनुशंसित किस्मन को चयन करके पर्याप्त नमी उपलब्ध हो बे पे बुआई करवे। आम फल में विकास में परिपक्वता अवस्था में गर्म और शुष्क मौसम के कारण फल झड़पे और मक्खी को प्रकोप हो सकत है, संगे संगे पाउडरी मिल्ड्यू को भी प्रकोप हो सकत है। हल्की सिंचाई करके मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। फल मक्खी नियंत्रण के लाने मिथाइल यूजेनॉल के 10 ट्रैप प्रति एकड़ लगावे और आवश्यकता हो पे मेलाथियन 50 ईसी को 2 मिलीलीटर प्रति लीटर में छिड़काव करवें। सो ज्योति है सलाह। अब आपको कछु पशु सलाह दे देते हैं। हरे चारे के संगे सूखो चारा खनिज मिश्रण सोई अपने पशुओं को खबावे। पशुशाला की नियमित सफाई करवे और जल की निकासी की उचित व्यवस्था करवे। खुरपका मुंहपका मने MFD और गलघोटू मने SH रोगन के समय पर टीकाकरण करवावे। असामान्य लक्षण दिखवे की स्थिति में पशु चिकित्सक से संपर्क करें और सलाह लेवे। सोर ई के संगे आज को ग्राम सभा कार्यक्रम हम इतना समाप्त करते हैं। स्वीकार करो पूनम बैन की। राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और इंडोनेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा का पहला चरण इंडोनेशिया की यात्रा के साथ आज समाप्त हुआ है और भारत और इंडोनेशिया के बीच जो कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते हुए हैं, जो कई क्षेत्रों में हुए हैं, चाहे वो रक्षा हो, उद्योग हो, तकनीक हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर संस्कृति, इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस तरह से महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं वो भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को और प्रगाढ़ करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो आज हम

0: मंत्री की इंडोनेशिया यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी कार्यक्रम में जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: कमल जी, आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार और सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: सबसे पहला मेरा मूल जो सवाल है वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच जो द्विपक्षीय वार्ताएं हुई वो कैसे भारत के और इंडोनेशिया के संबंधों को आगे आने वाले समय में और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, और कैसे दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग जो खासतौर पर जो इंडो पैसिफिक एक क्षेत्र है उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।
1: यदि हम इंडोनेशिया और भारत को देखें तो बहुत लंबे सभ्यतागत रिश्ते दोनों देशों के बीच में रहे हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म की संस्कृति का ध्वजावाहक इंडोनेशिया भी है, और 2018 तक 1949 से जो राजनयिक कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच स्थापित हुए थे बहुत अच्छे चले। 2018 में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की यात्रा की तो इन संबंधों को एलिवेट करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हमने शुरुआत की, और इसके बाद से हमने देखा कि कैसे जो एक क्रिटिकल महत्व के सामरिक क्षेत्र है इसमें न सिर्फ दोनों देशों के अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए, बल्कि यदि हम हिंद प्रशांत के क्षेत्र को देख लें तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कैसे रक्षा सहयोग के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीक सहयोग के क्षेत्र में दोनों देश लगातार आगे बढ़े हैं। और इसमें अब यह देखना सुखद है कि इस बार की यात्रा के दौरान जो महत्वपूर्ण MOU साइन हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी डील तो ब्रह्मोस मिसाइल प्लस डील को माना जा रहा है, जिसमें इंडोनेशिया हमारी होम ग्रोन ब्रह्मोस मिसाइल्स को न सिर्फ लेगा बल्कि फिर आगे को प्रोडक्शन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमारा भागीदार होगा। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को लेकर के, सामुदायिक सुरक्षा को लेकर के, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, और हमारे इलेक्टोरल मैनेजमेंट की जो सराहना की है इंडोनेशिया ने, तो EVM मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी एक बड़ा MOU दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। और ये न सिर्फ दोनों देशों के बीच के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए और विकास को विस्तार देने के लिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्टेबल बनाए रखने के लिए, प्रॉस्परस और इन्फ्लुएंस फ्री बनाए रखने के लिए ये समझौते आगे चल करके बहुत कारगर साबित हो।
0: प्रोफेसर अंशु जोशी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि भारत और इंडोनेशिया का जो एक अगर रक्षा सहयोग की हम बात करें तो दशकों पुराना एक साझेदारी जरूर रही है, लेकिन पहले ये खाली एक संयुक्त एक तरह से ज्वाइंट वेंचर जो होते थे, एक संयुक्त जिसमें कि हम कह सकते हैं एक मैरिटाइम पेट्रोलिंग तक ये सीमित था, लेकिन अब इसे उद्योग तक बढ़ाने की एक पूरी पहल हुई है। तो कैसे जो समझौते हुए हैं ये भारत और इंडोनेशिया के जो रक्षा सहयोग है, खासतौर पर जो उद्योग है और आदान प्रदान है, उसमें और ज्यादा इससे बढ़ोतरी होगी।
1: कमल जी, पहले तो हम ये समझें कि भारत की जो छवि थी वो आज से 11 वर्षों पहले तक रक्षा के क्षेत्र में एक इम्पोर्टर देश की छवि थी। हम जो अपने रक्षा के इक्विपमेंट थे वो दूसरे देशों से इम्पोर्ट करते थे, लेकिन अब 11 वर्षों में ये देखना बहुत सुखद है कि रक्षा के क्षेत्र में हमारी छवि एक एक्सपोर्टर देश की छवि बनी है, और हमने अपने यहाँ पर इतने बढ़िया रक्षा प्रणालियों को, अलग अलग अस्त्रों शस्त्रों को विकसित किया है। ऑपरेशन सिंदूर में उसकी चमक और धमक पूरी दुनिया ने देखी। तो अब इंडोनेशिया के साथ भी जब हम रक्षा सहयोग की बात करते हैं तो बात द्विपक्षीय या आसियान जैसे बहुपक्षीय मंचों पर एक जॉइंट मिलिट्रल एक्सरसाइजेस की और सामुदायिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रह जाती। एक तो जो ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर के बड़ी डील हुई है, उसको लेकर के भी आगे ये बिंदु देखने को मिलते हैं कि इंडोनेशिया आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो ये पूरा हमारा आह्वान है, मिशन है, इसके तहत जो हम अपने रक्षा क्षेत्र में इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं उसमें इंडोनेशिया हमारा बड़ा साझेदार बनेगा। इसके साथ आपसी निवेश की भी बात है, और जो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इसको सरल बनाते हुए इसमें जो दूसरे औद्योगिक जगत से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको शामिल करने की बात है। तो हम दोनों देशों की ओर देखें तो बड़ी आबादी वाले देश हैं भारत और इंडोनेशिया, तो इससे फिर जो है प्रोफेशनल मोबिलिटी को और एम्प्लॉयमेंट को भी हम मजबूत होते हुए देख सकते हैं। तो ये रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से अलग अलग प्रकार के तकनीकी साझा करने को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, इक्विपमेंट के आदान प्रदान को लेकर के, और इसके अलावा अलग अलग जो हमारे मिनिस्ट्रियल लेवल के डायलॉग शुरू हुए हैं दोनों देशों के बीच में और जो कार्यक्रम होंगे ये भी हम जोड़ करके देख सकते हैं। जी कम,
0: तो आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाले पक्ष हैं वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे आने वाले समय में दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में?
1: कमल जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के लिए आज किस तारीख में यदि उसकी शक्ति के संचालक तत्वों को हम देखें तो उसमें उसकी आर्थिक शक्ति का एक बड़ा महत्व होता है। तो जब हम भारत भारत और इंडोनेशिया के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को व्यापार की ओर दृष्टि डालें तो विगत कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हुए हैं ये संबंध। आज 38 बिलियन USD का लगभग व्यापार है दोनों देशों के बीच में। भारत बड़ी मात्रा में क्रूड पाम ऑयल को इंडोनेशिया से मंगा

0: है, वही हम इंडोनेशिया की ओर देखें तो फार्मास्यूटिकल से लेकर के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तक जो है हम यहाँ से, अपने यहाँ से इंडोनेशिया को भेज रहे हैं। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में तो विशेषकर जैसे स्टील के क्षेत्र में ये देखना सुखद रहा कि हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल और इंडोनेशिया की जो क्रकताऊ स्टील है उन्होंने स्टेनलेस स्टील के स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए और किस प्रकार से रेयर अर्थ मैग्नेट्स को साथ में को डिवेलप कर सकते हैं इसको लेकर के एक बड़ा समझौता किया है। इसके अलावा आप देखें कि इसमें अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डायलॉग्स को भी शुरू किया गया है। और इसके साथ साथ हम यदि देखें तो व्यापार के क्षेत्र में कैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर बढ़ावा देते हुए फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में हम कैसे उत्पादों के आदान प्रदान को बढ़ा सकते हैं इसको लेकर के भी समझौते देखने को मिले हैं। तो व्यापार की दृष्टि से निश्चित तौर पर रिश्ते नई उड़ान ले रहे हैं। और द्विपक्षीय के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आसियान का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडोनेशिया हमारे साथ। तो फिर जब ऐसे देश हमारे साथ द्विपक्षीय स्तर पर मजबूती से खड़े रहते हैं तो फिर आर्थिक दृष्टि से चाहे हम ऐसे व्यापार समझौतों की बात करें या कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने की
1: जी
0: बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, तो वहां फिर आसियान जैसे मंचों पर भी भारत की स्थिति मजबूत होती है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक परमानंद मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की, तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के बीच हुए सहयोग के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: तो जो मजबूत ऐतिहासिक संबंध है उनको नई दिशा देने में किस तरह से ये सहयोग भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और आज जो प्रधानमंत्री की यात्रा रही परमानंद मंदिर की उस पर भी आप क्या कहेंगी?
0: कमल जी, ये आपने चर्चा में बहुत ही सुंदर आयाम जोड़ा है। और यदि हम भारत के इंडोनेशिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि हमारे सभ्यतागत रिश्ते रहे हैं।
1: जी
0: हिंदू और बौद्ध धर्म की संस्कृति को देखें तो वो हमें इंडोनेशिया में भरपूर दिखाई पड़ती है। उसका ध्वजा वहां के अलग अलग प्रकार के मंदिर हैं, जिस प्रकार से संस्कृत का यहाँ सम्मान है, भारत की अलग अलग भाषाओं का सम्मान है। और इसके साथ हम रामायण और महाभारत की धरोहर को जिस तरह से इंडोनेशिया द्वारा संभाले जाते देखते हैं वो अपने आप में अनोखी है। मुद्रा पर यहाँ की गरुड़ अंकित है, गणेश की पूजा होती है। तो ऐसे में जो ये बहुत महत्वपूर्ण शिव मंदिर है, पुराना शिव मंदिर है, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री का जाना और भारत द्वारा इस बात का बीड़ा उठाया गया है कि इस पूरा प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार इसकी तकनीकी सहायता, आर्थिक सहायता भारत करेगा, तो किस प्रकार से नवाचार के माध्यम से नई तकनीकों को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखते हुए भारत आगे बढ़ रहा है, ये एक इसी बात का द्योतक है। तो आज जो प्रधानमंत्री इस प्रसिद्ध शिव मंदिर गए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ, वहां पर जीर्णोद्धार के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया, तो ये उसी बात को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, उसका ये एक प्रतीक है कमल जी।
1: दोनों देशों ने आतंकवाद को लेकर साझा रुख स्पष्ट किया है, तो क्या कहेंगे इस पर?
0: बिल्कुल कमल जी, भारत का अलग अलग मंचों से ये वर्षों से प्रयास है कि आतंकवाद को पूरा पूरा विश्व मिलकर एक मुंहतोड़ जवाब दे। और न सिर्फ भारत, आज विश्व के कई देश, सशक्त देश जैसे कि अमेरिका, आतंकवाद का शिकार बने हुए हैं। और ऐसे में जब भारत, हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं तो उसमें इंडोनेशिया जैसे देश एक बहुत सशक्त साझेदार के रूप में खड़े दिखाई पड़ते हैं। द्विपक्षीय स्तर पर भी और बहुपक्षीय स्तर पर हम देखें तो ब्रिक्स के मंच पर, G20 के मंच पर, आसियान के मंच पर, और ये भारत की महासागर डॉक्ट्रीन में जो ये म्यूचुअल एंड
1: जी
0: होलिस्टिक एडवांस ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स की बात हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से की थी। इसके पहले सागर की बात की थी, तो इसमें ये सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र या हिंद महासागर को सुरक्षित रखने की बात नहीं है, प्रॉस्परस बनाए रखने की ही बात नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आतंकवाद निरोधी हम कैसे अलग अलग तकनीकें हैं या फ्रेमवर्क्स हैं उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं इसकी भी बात है। और कल हमारे प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में घिरे संकट का समाधान भी सुझाया। उन्होंने बताया कि जैसे भारत टू स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, इसको पूरे विश्व को ध्यान से समझना चाहिए और पश्चिम एशिया के देशों को इसे अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ जब आतंकवाद निरोधी जो उपाय हैं उनको जब उन्होंने अपनाने की बात की तो यहाँ पर तकनीकी कहीं ना कहीं सहयोग के स्तर पर, नियमन के सहयोग के स्तर पर, और फिर एक जनता की दृष्टि से भी देखिए जिस प्रकार का लोगों का यहाँ से साथ हमको मिलता है, इस बात को मिलता है, इस लड़ाई को मिलता है, तो भरपूर सहयोग इंडोनेशिया का जो है भारत को मिलते हुए दिखाई पड़ता है। भारत के साथ साथ इंडोनेशिया भी इस बात का पक्षधर है कि विश्व में शांति होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, और इसी की बात हमारे

0: प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की संसद में।
1: इंडोनेशिया में बसे भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: Our language, I would say, Falizon, Minister of Culture, our language was 50% from Sanskrit. Many of our names are Sanskrit names. And therefore, there is this closeness and we welcome more close cooperation.
1: आखिर में प्रश्न मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे दोनों देशों के बीच 1200 किलोमीटर की एक लंबी समुद्री जो सीमा है वो साझा होती है, तो किस तरह से महासागर विजन और इस तरह के जो समुद्री सहयोग हैं उसमें दोनों देशों की एक मजबूत साझेदारी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है आने वाले समय में।
0: इंडोनेशिया की और दृष्टि करें तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी एक महत्वपूर्ण या सहयोगी देश है, और महासागर विजन की दृष्टि से भी देखें तो इंडोनेशिया की जब हम लोकेशन को देखते हैं, उसके महत्व को देखते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री सेशल्स की यात्रा पर थे और ये तमाम हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के जितने ये देश हैं इनकी ओर भारत का ध्यान है, ताकि चीन ने जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी अपनाई, एक नेगेटिव कूटनीति भारत को घेरने के लिए या इन सामुद्रिक क्षेत्रों में अपना असर्शन दिखाने के लिए, उसका कहीं ना कहीं मुकाबला किया जा सके और इन सामुद्रिक क्षेत्रों को किसी भी देश के प्रभुत्व से मुक्त रखा जा सके। इंडोनेशिया इसमें भारत का बिल्कुल साझेदार सहयोगी है इसके रूप में नजर आता है, और इस नीति के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर के और रक्षा सहयोग को लेकर के बातें भारत करता है, और इंडोनेशिया, सेशल्स, मॉरिशस ऐसे देशों को बड़ा अपना लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी प्रदान करता है। तो ये देखना सुखद रहा कि इंडोनेशिया का जो महत्वपूर्ण सबांग बंदरगाह है जो अंडमान निकोबार से बहुत करीब है, और यहाँ भारत जो है इस पोर्ट के विकास के लिए अपना आर्थिक और तकनीकी सहयोग देगा, इससे लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज में भी सहायता मिलेगी और भारत को जो जियो स्ट्रेटेजिकली ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो इंडोनेशिया से लगी है, इसका अर्ली और टाइमली एक्सेस जो है वो भारत को मिलेगा। वहीं इंडोनेशिया को भारत के सबांग एयरपोर्ट को विकसित करने से व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बड़ा लाभ मिलेगा। तो भारत की जो महासागर नीति है वो ये तमाम लाइक माइंडेड देशों को साथ में लेकर इन समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए, यहाँ की संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए, व्यापार बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की है। तो इसमें इंडोनेशिया के साथ एक भविष्य की जो रूपरेखा है वो भारत ने तय कर ली है और अब दोनों देश आगे बढ़ने को तैयार हैं।
1: जी निश्चित तौर पर, और जो भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र है और इसके अलावा जो एक वैश्विक साझा विकास है, इस दिशा में दोनों देशों की साझेदारी निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है और इन समझौतों से इस साझेदारी में और मजबूती मिलेगी। आगे आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा है उस पर भी हमारी नजर रहेगी और उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रोफेसर अंशु जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़ी और भारत इंडोनेशिया के द्विपक्षीय संबंधों पर आपने विस्तार से अपना विश्लेषण हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत आभार कमल जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत और इंडोनेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: सुर्खियों में
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है काला पानी।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,

एस डी बर्मन का संगीत मजरूह के लिखे बोल मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म काला पानी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म काला बाजार से।

एससी बर्मन का संगीत शैलेंद्र के लिखे बोल मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म काला बाजार से। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में, फिल्म का नाम प्यासा।

इस जीवन का संगीत साहिर लुधियानवी के लिखे बोल गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म प्यासा से। और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

एस डी बर्मन का संगीत शैलेंद्र के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में अब आपको सुनवाएंगी फिल्म गाइड का एक गीत,

0: लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गाइड से। संगीत था SD बर्मन का और बोल लिखे थे शैलेंद्र ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है SD बर्मन की आवाज़ में फिल्म बंदनी से।
1: पूरे माजी

एस डी बर्मन का संगीत शैलेंद्र के लिखे बोल एस डी बर्मन की है आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बंदनी से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म आराधना से।

0: सेना।
1: एसटी फिल्म का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म आराधना से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ए मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
1: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
2: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें
1: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
2: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
1: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
2: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
1: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
2: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
1: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
2: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
1: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
2: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
1: थोड़ी सी सावधानी
2: दूर करे सभी परेशानी।
0: बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे पम पम पम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम।
3: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता।

मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य ंगना संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी।

0: लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है, अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
4: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया

0: आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक ने जैस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
3: The air in Melbourne buzzed with immense

0: एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत का भी मौका मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी की अहम बुनियाद है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: आज मेलबोर्न की पूरी फजा जोशो खरोश से भर गई जब ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय बिरादरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में जमा हुई। इस पुरवकार तकरीब में एक शानदार सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें मौसीकी और रक्स के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया गया। सकाफती प्रोग्राम के आगाज से कबल वजीर आजम ने भारतीय बिरादरी के अफराद से मुख्तसर मुलाकात की और उनके साथ गुफ्तगू भी की। तकरीब का आगाज एक मुनफरिद और अलामती मौसीकी से हुआ। इसके बाद मेलबोर्न में मुकीम मारूफ कथक डांसर संचिता एब्रोल ने दिलकश कथक रक्स पेश किया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। तकरीब का अख्ताम ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा के 10 रुकनी ग्रुप की शानदार मौसीकी से हुआ, जिसने एआर रहमान के मारूफ नगमे माँ तुझे सलाम को शानदार अंदाज में पेश किया, जिससे वहां मौजूद तमाम लोग जज्बात से सरशार हो गए। मेलबोर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
0: अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत करेंगे। वो भारत ऑस्ट्रेलिया के सीईओज के फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारियों के इज्तम से खिताब करेंगे। इससे कबल दिन में वजीर आजम मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। दोनों रहनुमा नवी सदी के मंदिर गए, जहां वजीर आजम मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के इहाते में एक मुश्तरक प्रेस बयान में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो ने मंदिर इहाते के तहफ्फुज़ और अहिया में भारत की मदद के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम मोदी ने अपने दौरे को इंतहाई रूहानी और यादगार तजुर्बा करार दिया।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: भारत और रूस ने आज अक्वामे मुत्तहदा ब्रिक्स ईएजी और शंघाई तावुन तंजीम समेत मुख्तलिफ कसीर जहती फोरम्स पर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए तावुन को मजीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। वजारत खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक भारत रूस मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 14वीं मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सिबी जॉर्ज और रूस के नायब वजीर खारजा दिमित्री ल्यूबिंस्की ने की। दोनों ममालिक ने हर किस्म की दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों, खासतौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने दहशतगर्दों, दहशतगर्द तंजीमों, उनके दरपर्दा ग्रुपों और नेटवर्क्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर दिया। सरफैन ने इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी की सूरत हाल पर अपने ख्यालात का तबादला किया और इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और दहशतगर्दी के मकासद के लिए नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए बाहमी तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कुवैत के वली अहद शेख सबह अल खालिद अल हमद अस सबह से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से वली अहद को नेक तमन्नाएं पहुंचाई। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और कुवैत के दरमियान दो तरफा तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए वली अहद के अज़्म को सराहा। उन्होंने खलीजी खित्ते के ताज़ा हालात वाकयात से आगाह करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। दिफाई तहकीक तरक्की के इदारे DRDO ने आज उड़ीसा के चांदीपुर में वाक़ मरबूत आजमाइशी रेंज से तवील फासले के गाइडेड रॉकेट पिनाका का कामयाब तजुर्बा किया। वजारत दिफा ने कहा कि रॉकेट का कामयाब तजुर्बा सारिफ की जानिब से मुकर्रर करदा 60 किलोमीटर की कम अज कम रेंज पर किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाब आजमाइश पर DRDO, भारतीय फौज और दिफाई पैदावारी सनत को मुबारकबाद दी। उन्होंने इसे घरेलू सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले गाइडेड रॉकेटों के डिजाइन और तैयारी की सलाहियत में एक अहम संगे मील करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है।

बाजार में आज जबरदस्त फरोख्त हुई और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। खाम तेल की कीमतों में इजाफा, कमजोर आलमी रुझानात और एक बार फिर पैदा होने वाली जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी का बाजार पर काफी असर हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी है। अनकरा में मुनाकिदा नेटो समिट के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ मुजाकिरात में मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहते। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नुमाइंदे मुजाकिरात जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें इन मुजाकिरात के कामयाब होने के इम्कानात पर शुबा है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका ने ईरान के खिलाफ एक नई फौजी कार्रवाई करते हुए 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीका का कहना है कि ये हमले आबनाए हुर्मुज में तजारती जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में जदीद और इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए, जिनका मकसद बैनुल अक्वामी बहरी तिजारत को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करना था। ईरानी फौज के मुताबिक हॉर्मुज़गान और महशार सूबों में साहिली फौजी अड्डों और शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में रूस के रात भर जारी हमलों में 3 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक शख्स की मौत राजधानी कीव में हुई। खारकीव में 2 अफराद हलाक जबकि 20 दीगर जख्मी हुए। विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तुयुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 12वीं सीड की खिलाड़ी मार्ता कोस्तुयुक ने आज सेंटर कोर्ट में इटली की जैस्मिन पाउलिनी को 6-3 6-2 से शिकस्त दी और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। इसी तरह 9वीं सीड की खिलाड़ी लिंडा नोस्कोवा ने बेल्जियम की खिलाड़ी एलिस मार्टिन्स को 6-3 7-5 से हराया और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3री भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबोर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसीर रुखी प्लेटफॉर्म पर इनजाद दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तकम करने के अपने अज्म का इरादा किया। वह दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में तवील दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका की कामयाब आजमाइशी परवाज की। मानसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने एतमाद जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, जिससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार,
4: धन्यवाद।
2: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि

0: एलनीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है?
1: एलनीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का वो सामान्यतः ठंडा रहता है, बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, लानीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्लैकन कर जाती हैं, ये वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, जो पानी था वहाँ जिस जिसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज़्यादा था वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहाँ समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज़्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफ़ी सारे बदलाव लेके आता है कि जहाँ कहीं बारिश होती है पहले वहाँ सूखा पड़ने लगता है और जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहाँ की प्रेशर को टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एलनीनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एलनीनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एलनीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है इतने ज़्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही हैं तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए, तो ऐसा होता तो ये सुपर एलनीनो होगा और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पर ज़्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मानसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कुछ कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी ज़रूर हुई और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
0: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज़्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ दन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहाँ होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहाँ बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर इरिगेशन कवरेज जो है, जहाँ पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहाँ पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में NDMA की मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे अभी शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहाँ पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो

0: लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं, उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी हैं कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है, तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी, कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो हैं जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती हैं, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, और एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही हैं, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहाँ पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है, कंटीजेंसी प्लान की आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयार ही है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो हैं, फ्लड रिलेटेड जो हैं वेराइटीज़ हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज़ तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज़्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के बाद पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफ़ी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहाँ हम लोग यही डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध हैं कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिस सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफ़ी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वेराइटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है,
1: जी
2: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहाँ पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पर लगाने हैं मिलेट्स एक चीज़। और दूसरी बात, जो मौसम विभाग समय समय

0: में बताता है आपको गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस। यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
1: जी।
0: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब मतलब कि भाई अलिनो है इस बार, मानसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है। तो उसके लिए कृषि मंत्रालय, मौसम विभाग, NDA में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूँगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें

0: कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय, मौसम विभाग, एनडीए में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पे क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूँगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना, कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहाँ कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहाँ पे यदि बारिश कम हो जाए ना, बल्कि फसल और अच्छी होती है, क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहाँ पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को, जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी,
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, मगर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई, और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली,
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगरकेन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरिगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरिगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरिगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है, और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स हैं ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीज़ों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियाँ वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डेवलप की हैं, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली वट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो ए बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहाँ बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहाँ पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10-15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करें कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कहिए, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहाँ पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता, दूसरे हमारा जो

0: एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, एआई की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो, और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर। तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है, और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है हमारा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए। तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं, जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है, और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है। तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ, ये है कि पिछले कुछ बरसों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी, लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए, वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है। क्योंकि देखिए, दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी, वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूँगा नहीं, अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी बेच जाएगा, और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात हो। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है, और आपने कहा फोन उससे भी मिलता है, और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं, उसको वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पॉर्टेंट बड़ी चीज़ है कि आप हर, जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहाँ पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहाँ चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है, ये मुझे लगता है जिसे कहते हैं ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में, जहाँ पे किसान आके ये सब चीज़ों को वो कर ले। एक और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है, वो हर गांव के अंदर एक जो वहाँ

0: सरपंच होता है उसको जरूर भेजें जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दें, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच ले आपके गांव के सब लोगों को तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फ़ोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूँ, ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए एक घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है। यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल, मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है, वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में। आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजरी देते हैं, व्हेन टू सो, व्हेन टू हार्वेस्ट, व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, व्हेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर, वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए, और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेंगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीज़ें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एश्योर्ड इरीगेशन, और वो चार नहीं पाँच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरीगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
2: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर बोरवेल्स जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन हैं वो दुरुस्त हों, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेन भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सेप्टेम्बर उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान

0: को कहाँ जरूरत है वहां उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं, तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं, बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है नाटक बंटवारा, जिसके लेखक है मुरलीधर बलवानी और प्रस्तुतकर्ता है राकेश ढौंडियाल। कुछ ही पलों में सुनवाएंगे हम ये नाटक आपको, कृपया प्रतीक्षा करें।
5: प्रस्तुत है नाटक बंटवारा, लेखक मुरलीधर बलवानी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढौंडियाल।

0: हाँ भाई राम प्रसाद, अब तबीयत कैसी है?
1: अब जिंदगी की इस आखिरी घड़ी में तबीयत कैसी डॉक्टर साहब?
0: ऐसा मत कहो भाई, वो भी एक डॉक्टर के सामने। जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक जियो आशा के साथ जियो। विद्याराम
2: जी,
0: आज मैं एक दवाई बढ़ा रहा हूँ, इसे रात को सोने से पहले देना।
2: जी डॉक्टर साहब।
0: अच्छा मैं चलता हूँ।
2: जी
1: बेटा। विद्या।
2: जी पिताजी।
1: मुझे लगता है बेटा कि अब बिस्तर से मैं शायद ही उठ पाऊंगा।
2: ऐसा मत कहिए पिताजी, आप जरूर ये बिस्तर छोड़ देंगे और दुकान पर भी बैठेंगे।
1: तेरा प्यार और उम्मीद अपनी जगह सही है बेटा, पर मेरी सेहत को मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि
2: कहने सुनने को बहुत वक्त पड़ा है, अब पहले आप थोड़ा आराम करिए।
3: चरण स्पर्श पिताजी।
1: सदा खुश रहो बच्चों, मैं भी कितना बदनसीब हूँ, उठकर अपने हाथों से तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं दे सकता।
3: अरे इसमें क्या समस्या है पिताजी, लीजिए हम अपना सर आपके हाथों से छुआ देते हैं।
4: चलिए पिताजी आप सूप पी लीजिए। और सुनिए, आप जरा पिताजी को दो तकिए और लगा दीजिए, ये पलंग को थोड़ा और ऊपर उठा दीजिए।
3: ऐसे बैठिए, बैठिए बैठिए,
4: आप पीजिए।
1: जीते रहो बहू, ईश्वर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। बेटी भगवान करे विद्या के आने वाली बहू भी तुम जैसी ही हो। बेटा ज्ञान प्रकाश, अरे उसकी शादी के मुहूर्त का क्या हुआ बेटा?
3: पिताजी पहले आप ठीक हो जाइए, फिर सोचेंगे उसकी शादी का।
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे कारण इस शुभ काम में देरी मत करो, मैं जीते जी अपनी इस आखिरी जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहता।

0: करता हूँ बेटा। और फिर ऊपर जाकर तुम्हारी माँ को भी तो जवाब देना है बच्चों। मुझे ठीक होना होगा तो हो जाऊँगा, पर इस शादी को समय पर हो जाने दो बेटा। अकेली महिमा कब तक मेरा और घर का बोझ उठाएगी?
1: पिताजी, आते सोमवार का मुहूर्त निकला है।
0: अच्छा अच्छा है, बस तो तुम अब तैयारी शुरू कर दो बेटा। अरे भाई, हमें कौन सा राजाओं या सेठों जैसा तामझाम करना है?
1: ठीक है पिताजी, जैसा आपका आदेश।

0: पिताजी अपने बेटे और नई बहू को आशीर्वाद दीजिए।
1: प्रणाम पिताजी।
2: ईश्वर तुम्हारा विवाहित जीवन सदा खुशियों से भरा रखे बेटा। मैं तो बस कुछ दिनों का मेहमान हूँ इस घर में। अपने भैया भाभी को ही माँ बाप की तरह प्यार करना बेटा, और सेवा करना उनकी जैसे इन दोनों ने मेरी सेवा की है।
1: पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मुझे तो भाभी ने ही पाला पोसा है।
2: अब तुम जाओ बेटा और सब बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों का आशीर्वाद ले लो। मुझे ज्ञान प्रकाश से कुछ बात करनी है बेटा। बेटा ज्ञान प्रकाश
0: जी कहिए पिताजी।
2: मुझे नहीं लगता कि अब मैं अधिक समय इस बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। सच पूछो तो मैं खुद इस लाचारी के जीवन से अब मुक्त होना चाहता हूँ।
0: भगवान के लिए आप ऐसी बात ना करें पिताजी।
2: बेटा मैं मानता हूँ कि माँ बाप की सेवा एक पुण्य का काम है, पर यह भी उतना ही सच है कि किसी की सेवा लेना भी एक कर्ज के समान है जिसे इंसान को अगले जन्म में चुकाना होता है।
0: ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं पिताजी।
2: नहीं बेटा नहीं नहीं। बहरहाल मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ बेटा कि हमारी संस्कृति में घर को एक मंदिर कहा गया है, जहाँ परिवार वाले यदि सुख शांति और एकता के साथ मिलजुल कर जीवन बिताएं तो लक्ष्मी जी वहाँ विराजमान रहती हैं।
0: आप सही कह रहे हैं पिताजी।
2: मेरे बाद तुम ही विद्या के पिता रहोगे और महिमा उसकी माँ।
0: आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, विद्या मेरे अपने बेटे रघु समान है।
2: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा।
3: पिताजी आप मुझे हरास करके नहीं जा सकते। बोलिए बोलिए पिताजी बोलिए।
4: रघु बेटा बहुत खेल लिया, अंदर चलो और होमवर्क करो अब अपना। तुम्हारे पापा भी आने वाले होंगे, और हाँ अब मैं कोई बहाना नहीं मानूंगी तुम्हारा, सीधे अंदर आओ।
5: दीदी दाल सब्जी बना दूं, चावल चढ़ा दूं अभी?
6: अरे नहीं नहीं रानी, तू रहने दे। और ये बता विद्या कहाँ है?
5: वो तो दुकान चले गए दीदी, मैं खाना बनाती हूँ ना।
6: अरे नहीं, तेरे हाथों की तो अभी मेहंदी भी नहीं सूखी, और वो कहाँ छोड़ के चला गया तुझे? वापस आए तो मज़ा चखाती हूँ उसे। और हाँ रानी, पिताजी के देहांत की वजह से तुम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा सके, कम से कम कुछ वक्त तो उसको घर में गुजारना था तुम्हारे साथ।
5: वो कह रहे थे दीदी कि घर पर पिताजी की याद आती रहती है।
6: अब उन्हें याद करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मुझे तो तेरा दुख हो रहा है। तेरे हाथ पीले होते ही सर पर दुख की घड़ी आन पड़ी।
5: ये मेरी ही किस्मत का दोष है दीदी, अभी चांद ठीक से देखा भी नहीं था कि ग्रहण लग गया।
6: दिल छोटा ना कर, और मेरी मान अब तू दो चार दिन के लिए अपने मायके चली जा, और हाँ विद्या को भी साथ ले जा, दोनों का मन बहल जाएगा।
5: आप ही मनाइएगा दीदी अपने देवर को।
6: ठीक है, मैं ही तैयार करती हूँ उसे, ठीक है।
0: अरे भाई क्या गपशप हो रही है देवरानी जेठानी में?
6: जी मैं कह रही थी कि घर में गमी की वजह से विद्या नई बहू को कहीं घुमाने तो ले नहीं जा पाया, तो अब कम से कम दो चार दिन उसे उसके मायके ही ले जाए।
0: कभी कभी भाई तुम भी अकल की बात कर लेती हो।
6: हाँ मैं कम से कम कभी कभी तो कर लेती हूँ।
0: बहरहाल तुम्हारी सलाह 16 आने सही है। विद्या
7: जी भैया
0: तुम कल ही ससुराल निकल जाओ। अरे भाई थोड़ी सी

0: तो करवाओ ससुराल वालों से।
1: नहीं भैया, अभी मेरा मन नहीं है।
0: अरे भाई, हर चीज मन के हिसाब से नहीं की जाती है, है? जरा नई दुल्हन का भी तो सोचो।
1: ठीक है भैया, आप इतना जोर दे रहे हैं तो चला जाता हूँ।

0: माँ कैसी हो तुम?
1: अरे अरे रानी, मेरी बच्ची, तू यहाँ? तूने तो आज दिल खुश कर दिया मेरे बच्चों।
2: अरे बेटी, अरे वाह वाह, दामाद जी कहाँ हैं?
0: वो आ रहे हैं पिताजी, मैं तो दौड़ कर चली आई।
3: चरण स्पर्श,
2: जीते रहो।
1: तुम्हारा बहुत आभार है।
0: माँ ये तो बताओ, भैया और लता कहाँ हैं?
2: दोनों कॉलेज गए हैं। अरे भाई दुलारी
1: जी,
2: जरा दामाद जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो।
1: जी जी।
2: वो कमरा तैयार करो।
1: जी जी।
2: बेटा तुम्हारे भैया भाभी तो कुशल पूर्वक है ना, और उनका बेटा?
3: सब आनंद में है।
2: चाय नाश्ता करके मुंह हाथ धो लो, तो तुम्हें भी मैं दुकान ले चलता हूँ।
1: अरे अब छोड़ो भी, और तुझे मई जी को पूरा आराम करने दो।
2: ये भी ठीक है। शाम को अर्जुन से कह देना शहर घुमाने ले जाएगा।
4: बेटी, तेरी ससुराल में सब ठीक तो है ना?
0: हाँ माँ, बस ठीक ही है।
4: अरे मुझे तो तेरी बड़ी फिक्र होती है।
0: क्यों, ऐसे क्यों कह रही हो तुम?
4: बेटी, तेरे ससुर की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति तो बड़े बेटे के हाथ आ गई। पता नहीं तेरे पति को पूरी जायदाद की जानकारी है भी कि नहीं। हे तू जरा पूछती रहा कर, क्योंकि जमीन जायदाद में आधा हिस्सा तेरे पति का भी है।
0: वो तो मैं पूछ लूंगी माँ, पर अभी से क्यों?
4: अरे इससे पहले कि तेरे जेठ का वो छुटकू बेटा है ना, वो हिस्सेदार बने, तू अपना हिस्सा लेकर अलग हो जा, बाद में बड़े झंझट होते हैं।
0: ये बात तो तुमने बड़े ही पते की है।
4: अरे वही तो। और देखना, तू तो अभी बच्ची है, मगर मैंने दुनिया देखी है। मैंने सुना है तेरे ससुर का लगाव भी बड़े बेटे से ज्यादा था। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जमीन जायदाद बड़े बेटे के नाम ही कर गए हो वो।

0: माता जी, अब मुझे और रानी को वापस घर जाने की इजाजत दें।
1: जल्दी क्या है?
0: भैया दुकान पे अकेले हैं, मेरे ना होने से उनकी दिनचर्या बिगड़ जाती है, जरा भी आराम नहीं कर पाते। ऊपर से भाभी भी घर का काम अकेले कर करके थक जाती होंगी।
1: देखा रानी, मैं ना कह रही थी कि दामाद जी को तुझसे ज्यादा भैया भाभी की चिंता है।
0: ये बात नहीं है, अब बड़ों का मान तो रखना ही चाहिए ना।
1: बेटा, हम भी तो तुम्हारे माँ बाप समान हैं। अरे, 2-4 दिन और रुक जाते तो हमें भी अच्छा लगता।
0: देखिए माता जी, अब ये उस घर की बेटी ज्यादा है, ज्यादा वक्त तो उसे वहीं गुजारना है ना।
1: ठीक है बेटा।

0: क्या बात है, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? मायके वालों की याद आ रही है क्या?
1: नहीं, मैं कुछ और सोच रही हूं।
0: और क्या सोच रही हो भाई?
1: मैं देख रही हूं कि तुम दुकान पे जाते भी जल्दी हो और रात को भी अक्सर देर से आते हो। जेठ जी का लाया दुकान पे ठंडा नाश्ता और खाना खाते हो, जबकि जेठ जी वो तो तीनों वक्त का खाना घर पर खाते हैं, गर्मा गर्म, और वो भी आराम से।
0: बड़े होने के यही तो फायदे हैं। जब पिताजी थे तो वो मेरे वाला काम बड़े भैया करते थे और मैं पढ़ाई करता था।
1: अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि बड़े भैया दुकान पे कम बैठते हैं।
0: अरे भाई, बाहर के भी कई काम होते हैं जो सिर्फ भैया ही करते हैं। खरीदारी, सामाजिक काम, बिजली, टेलीफोन बिल भरना। अब इसके बीच अगर वो घर पे आकर खाना खाते हैं तो क्या?
1: केवल खाना खाने की बात नहीं, 1 घंटा आराम भी करते हैं घर पर, और तुम्हारा खाना इतना लेट लाते हैं।
0: तो क्या हुआ, मैं नाश्ता भी तो लेट करता हूँ।
1: इसीलिए कि जेठ जी तुम्हारा नाश्ता लेट लाते हैं। तुम दिन रात दुकान भी संभालो और खाना भी वक्त पर ना खाओ। नई शादी तुम्हारी है।

0: और घर पर ज्यादा वक्त बड़े भैया बिताते हैं।
1: देखो रानी, कल को जब रघु बड़ा होगा वो भी मुझे आराम देगा। आखिर मेरी उम्र ही क्या है जो अभी से आराम का सोचूं, इसलिए तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो।
0: तुम अपनी चिंता खुद करते तो मुझे क्या पड़ी थी जो तुम्हारे बारे में सोचती। अच्छा एक बात तो बताओ, दुकान का हिसाब किताब, जमीन जायदाद का लेखा जोखा ये कौन रखता है?
1: बड़े भैया, आज तुम ये क्यों बात कर रही हो?
0: मैं भी तो जरा समझूं कि तुम्हारी कमाई क्या है और मेरे हिस्से में क्या रहेगा।
1: हे भगवान, अभी से ये चिंता? तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं भैया से लेके दे दूंगा। घर खर्च के अलावा 200 रुपए काफी रहेंगे।
0: इतने में तो मेरा मेकअप का सामान भी नहीं आएगा।
1: तो 500 रुपए ले लेना बस। अब जरा सोने भी तो।
0: ये तो पूरी तरह से अपने भाई पर आश्रित है। यही हाल रहा ना तो मुझे भी दीदी की गुलामी करनी पड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा रानी, कोई तो चक्कर चलाना पड़ेगा।

0: भाभी ये क्या, अब तो रानी घर में है, वो भी एक महीना पुरानी, फिर भी चाय तुम ला रही हो।
1: वो भी सो रही है।
0: अरे भाभी मैं उसे उठा के आया था अभी।
1: फिर आंख लग गई होगी, देर रात तक मायके वालों से बतियाती रही। अब मुझे लगता है तुम उसका ख्याल नहीं रखते विद्या।
0: लो उल्टा उसे तुम्हारा और हम सबका ख्याल रखना चाहिए।
2: ऐसा नहीं है विद्या, हम सबको भी तो उसका और उसकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए ना, आखिर वो तो छोटी है ना।
0: उसकी बातों से तो वो छोटी नहीं लगती भैया।
2: क्या मतलब?
0: मेरा मतलब उम्र से क्या होता है, उसकी सोच और सियानापन तो बड़े बूढ़ों वाला है।
1: विद्या ऐसा नहीं कहते अपनी पत्नी के लिए।
0: बहरहाल भाभी तुम उससे ज्यादा नरमी और लाड़ मत करो, घर के काम में पूरी पूरी मदद लो। अब मैं चलता हूँ, दुकान के लिए तैयार होता हूँ।
2: ये विद्या आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है?
1: पता नहीं क्या हुआ है आज इस लड़के को।
3: ये लो तुम्हारा दूध।
0: क्या बात है, आज ये तुम्हारी आवाज में गुस्सा क्यों है?
3: दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करूंगी तो कहीं तो गुस्सा निकलेगा ही ना।
0: घर के काम में भी कोई थकावट होती है?
3: अब तुम्हें तो दुकान के काम में नौकर की वजह से थकावट नहीं होती, तो जरूरी नहीं कि औरों को भी ना हो। घर में तो नौकर भी नहीं।
0: अच्छा चलो तुम सो जाओ बस।
3: मैं सो या जागू तुम्हें से क्या, तुम्हें तो मेरी बातें सुनने का भी समय नहीं।
0: हे भगवान अब क्या हुआ?
3: जब तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती तो क्या बात करूं तुमसे, कुछ पूछो तो तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं रहता।
0: क्या मालूम नहीं है?
3: तुम्हारी दुकान की कमाई कितनी है?
0: ये तो सचमुच नहीं मालूम, मैंने बताया तो सब हिसाब किताब भैया रखते हैं, पर तुम्हें उससे क्या, तुम्हें 500 रुपए दे दिया करूंगा।
3: सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आजादी भी कोई चीज होती है। तुम दुकान की गुलामी करो और मैं घर की। हम कब घूमेंगे, सिनेमा देखेंगे, बाहर खाना खाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब? अरे इतनी उम्र हो गई, शादी हो गई, एक गाड़ी तक तो है नहीं तुम्हारे घर में। कल को तुम्हें अगर अपना धंधा करना पड़े तो तुम्हें क्या जानकारी है धंधे की, सरकारी कामों की, कोर्ट कचहरी की, कमाई खर्चे की।
0: पर भैया के रहते मैं क्यों अलग धंधा करने लगा?
3: अगर कल को भैया ही नहीं रहे तो?
0: रानी ये क्या बकवास कर रही हो तुम?
3: सच्चाई बोलो तो तुम्हें बकवास ही लगती है। कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या वो भी अपने ताऊ जी के सामने हाथ फैलाए अपने लिए खर्चा मांगेंगे? किसी पे इतना आश्रित होना भी ठीक नहीं है।
0: मेरा दिमाग खराब ना करो, चुप हो जाओ प्लीज।
2: अरे अभी तक तुम बहू को सुबह नहीं उठा रही हो, तुम्हें विद्या ने उस दिन कहा तो था ना, कम से कम अपनी तबीयत का तो ख्याल करो। वो सारा दिन टीवी देखती है या मायके बात करती रहती है। अरे भाई नई दुल्हन 9 दिन की, अब तो 4 महीना होने को आए, तुम कब तक यूं अकेली खपती रहोगी?
1: अब आप कब से मेरी चिंता करने लगे हाँ?
2: अरे भाई जब तक अकेली थी तब तक कोई चारा नहीं था, खामखा बहू को क्यों आलसी बना रही हो?
1: अब ठीक है, विद्या तो तुम्हें कम से कम आराम देता है ना, तुम तो दोनों तरफ से सुखी हो, घर हो या दुकान, अब मेरे सुख की तो तुम छोड़ ही दो।
2: अरे बीमार हो गई तो मेरे ही पल्ले पड़ोगी ना।
1: घर का काम करने से भी कोई बीमार पड़ा है क्या भला?
2: ठीक है भाई, तुम औरतों की चिंता करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत।
0: रानी तुम आज भी जल्दी नहीं उठी?
3: अब तुम ही तो रात को देर तक जगाते हो।
0: ये बहाने छोड़ो और बिस्तर छोड़ो, मेरे दुकान जाने का वक्त हो रहा है और तुम हो कि
3: तुम्हें ध्यान रहता है,

0: रात को 11 बजे सोई थी।
1: सुबह के 8 बज रहे हैं। सेहत के लिए केवल 6 घंटे की नींद काफी होती है। शादी को पूरे 4 महीने हो चले हैं, अब तो भाभी का हाथ बटाओ।
0: अरे वाह, भाभी की बड़ी फिक्र है।
1: तुम जानती हो, मेरी माँ की जगह है मेरी भाभी, वो तुम्हारी तरह नहीं है। नाम से रानी और काम में महारानी।
0: अरे वो तो मुझसे पूरा काम करवाती भी नहीं।
1: अरे वाह, तुम्हें खुद भी तो अपनी जवाबदारी का एहसास होना चाहिए। ये घर तुम्हारा नहीं है क्या?
0: मेरा घर तो वो होगा जो तुम बनवाओगे मेरे लिए।
1: मेरा हिस्सा भी है इस घर में।
0: सच भी, घर तुम्हारा हिस्सा है तो उसे लेके अपना एक अलग घर बनाओ। वैसे भी आजकल अलग जीने का जमाना है और इसका मजा भी कुछ और ही है। वैसे भी तुम्हें यूं घर के लिए पिसता देखकर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
1: मेरा पिसना दिख रहा है, भाभी का पिसना तुम्हें दिखाई नहीं देता। 8 साल का था जब अम्मा चल बसी, तब से हम 3 मर्दों को पालती आ रही हैं।
0: मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि ग्रेजुएट होकर भी तुमने कोई नौकरी क्यों नहीं की।
1: ये मेरी बात का जवाब नहीं है।
0: मैं ये फालतू के सवाल जवाब नहीं जानती। तुम्हें मेरे साथ सुखी जीवन गुजारना है तो इस घर से निकलो और खुद की अपनी कहने लायक जमीन जायदाद और दुकान लो, नहीं तो नौकरी ही कर लो। मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी और तुम्हारे भविष्य की चिंता है। मेरा क्या, मैं तो मजे से जी रही हूं।
1: शायद तुम सही कह रही हो। जब तक तुम्हारे सर पे नहीं पड़ेगी, तुम अपना महारानीपन नहीं छोड़ोगी, और मेरी मां समान भाभी सारी उम्र यूं ही नौकरानी बनकर मरती खपती रहेगी।
0: अब आई ना बात भेजे में, मुझे भी तुम्हारी कमाई का पूरा पैसा चाहिए, ना कि उस आधी कमाई का जिसको कि कमाते तुम अकेले हो।
1: ठीक है, मैं चलता हूं, समय देख के भैया से बात करूंगा। प्रणाम भैया।
2: आओ आओ विद्या, चाय आने ही वाली है।
1: भैया अगर बुरा ना माने तो आपसे कुछ पूछना चाहता था।
2: अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, दिल खोल के और बिना किसी झिझक के पूछो।
1: मैं सोचा था कि मैंने खर्चे के 500 रुपये ले तो लेता हूं, पर ये कहीं दुकान की कमाई के हिसाब से ज्यादा तो नहीं?
2: अरे नहीं, अच्छा हुआ जो तूने आज दुकान की कमाई की बात निकाल दी। अब तुझे भी दुकान और जमीन जायदाद के बारे में जान लेना चाहिए। आखिर तो मेरे बाद तू ही संभालेगा ये सब। तुझे तो पिताजी ने नौकरी नहीं करने दी। मैं तो खुद चाहूंगा कि रघु अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करे। दुकानदारी तो तू देख रहा है कितनी मगजमारी है इसमें। बहरहाल हमारी दुकान की कमाई है करीब 25,000 रुपये महीना। सो धीरे धीरे करके करीब 50-50 हज़ार की बैंक से FDR बनवा के रखे हैं। अब तक करीब 10 लाख रुपये की FDR हो गई होगी। खेती वाली जमीन भी करीब 10 लाख रुपये की होगी। बाकी ये घर और दुकान का स्टॉक वगैरह, ये है हमारी कुल संपत्ति जिस पर हम दोनों में बराबर बराबर का हिस्सा है।
0: आपने अपने पिता समान भाई से आज सुबह कोई बात की?
1: की थी।
0: तो क्या बताया उन्होंने?
1: यही कि दुकान की कमाई करीब 25,000 रुपये महीना है और घर जमीन मिला के कोई 40-45 लाख की कुल संपत्ति होगी।
0: अब बताओ, लखपति होकर भी तुम इस 8x8 के कमरे में सड़ रहे हो। सुनो, क्यों ना हम अपना घर ले ले, आज नहीं तो कल हमारे भी बच्चे होंगे ना।
1: वो तो इसके ऊपर भी कमरे बन सकते हैं।
0: चलो ये ही सही, तुम अपना घर ऊपर बनवा लो या फिर भैया ऊपर रह ले।
1: पर अभी कहाँ उसकी जरूरत है।
0: अरे दिन ब दिन मटेरियल की कीमत भी तो बढ़ती जा रही है।
1: हाँ ठीक है, मैं भैया से बात करूंगा, पर रसोई एक जगह ही होगी। हाँ?
0: अच्छा बाबा अच्छा, तुम बात तो करो। ये लीजिए भैया, चाय लीजिए।
2: अरे वाह, आज चाय तुम लाई हो। महिमा की तबीयत तो ठीक है ना?
0: हाँ भैया, दीदी की तबीयत बिल्कुल ठीक है।
2: अरे वाह, चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है तुमने।
1: अब आपको रोज यही मिलेगी भैया। अच्छा भैया, मेरे मन में ख्याल आया है, क्यों ना हम 2-3 FDR कैश करवा के ऊपर 2 कमरे बनवा लें। साल दर साल मटेरियल और लेबर की कीमत बढ़ती जा रही है। हम अपना कमरा रघु के लिए खाली करके ऊपर के कमरों में शिफ्ट हो जाएंगे।
2: तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर
1: क्या भैया,
2: घर के 2 टुकड़े हो जाएंगे।
1: नहीं होंगे भैया, हम दोनों सिर्फ रात को ऊपर सोने जाएंगे और रसोई भी तो नीचे रहेगी ना।
2: पर इसमें तो तुम दोनों को ही परेशानी आ सकती है, कभी ऊपर कभी नीचे।
1: हम कौन से बूढ़े हैं भैया, आप अभी

0: से ये सब कुछ सोच रहे हैं?
1: हाँ, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, ये काम निपटा ही देते हैं।
0: लो भाई, तुम्हारे अपने घर का सपना इतनी जल्दी पूरा कर दिया। आज तो गृह प्रवेश के कार्यक्रम में पूरी तरह थका दिया।
2: लाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। और हाँ, घर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो तुमने मेरा बस 50% सपना ही पूरा किया है।
0: हे भगवान, ये बाकी का 50% सपना क्या है तुम्हारा?
2: बाकी के 50% सपने पूरे होने की खुशी मुझे कम और तुम्हें ज्यादा होगी डार्लिंग।
0: अब ये पहेलियां छोड़ो और साफ साफ बताओ कि तुम और क्या चाहती हो।
2: मैं चाहती हूँ कि अपने घर की तरह तुम्हारी अपनी दुकान भी हो जाए। दिन रात जी तोड़ मेहनत तुम करो और कमाई 50%। इतनी मेहनत तुम अपनी दुकान पर करोगे तो पूरी की पूरी 100% कमाई तुम्हारी। और फिर हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए भैया से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या वो भी अपने ताऊजी पर आश्रित होंगे?
0: ये क्या कह रही हो तुम? पहले घर अलग, अब दुकान भी अलग।
2: अलग कहाँ, एक आवाज भर तो दूर है हम घर में।
0: मगर ये बात शायद भैया ना माने।
2: तुम बात तो करके देखो, घर के वक्त भी तुमने यही कहा था।
1: वाह भाई वाह, आज तो हल्का खा के मजा आ गया। आओ विद्या, आओ बैठो, आओ बहू। अरे रघु सो गया हो तो तुम भी आ जाओ महिमा। वाह भाई वाह, आज तो हल्का खा के मजा आ गया। आओ विद्या, आओ बैठो, आओ बहू। अरे रघु सो गया हो तो तुम भी आ जाओ महिमा।
3: लो जी, मैं भी आ गई। आज क्या खास बात है जी, पूरा का पूरा कुनबा इकट्ठा किया है आपने? हाँ,
1: मैंने सोचा है विद्या, आज से दुकान पर मैं बैठूंगा और तुम बाहर के काम देखोगे। इसी बहाने तुम्हें पता भी चलेगा कि दुकानदारी के अलावा क्या क्या काम तुम्हें देखना और समझना है।
0: पर ये सब अचानक क्यों भैया?
1: देखो विद्या, अब मैं इतना जवान तो रहा नहीं कि भागा दौड़ी करूं। तुम ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं दुकान संभालूंगा, आप आराम से दुकान पे आना। सो अब मुझे भी लगता है कि मुझे ज्यादा आराम दुकान पर बैठने से मिलेगा बजाय ये भागा दौड़ी करने में। और दूसरा, मैं चाहता हूं कि कल से घर का खर्चा, जमीन जायदाद के कागज, शेयर, ये सब रानी संभाले।
2: ये क्या कह रहे हैं भैया आप?
1: देखो बहू, अब तुम भी इस घर का ही हिस्सा हो। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें भी विद्या और अपने भविष्य को लेकर कुछ आशाएं और कुछ उम्मीदें होंगी। कल को तुम लोगों के बच्चे होंगे, मुझे केवल महीने के 1000 रुपए दे दिया करो बस।
0: पर भैया, ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं?
1: मुझे अपनी बात पूरी करने दो विद्या, बाद में इसी संपत्ति को लेकर बंटवारा हो जाए, इसलिए बेहतर है कि ये सब अब तुम संभालो।
0: भैया, मैं आपसे कभी अलग नहीं होऊंगा। लक्ष्मण भी कभी राम से अलग हुआ है।
1: अरे तू किस युग की बात कर रहा है? अगर ऐसा नहीं था तो तूने घर को क्यों अलग करने की सोची? कल को तू दुकान अलग करने की सोचेगा तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। पिताजी को मैंने मरते वक्त वचन दिया था कि विद्या मेरे बेटे समान है, जीते जी मैं इसे कभी अपने से जुदा नहीं करूंगा। अब अगर तू कल को दुकान अलग खोलेगा तो फिर रसोई कब तक साझा रहेगी? और जब रसोई साझा नहीं रही तो दिल कैसे मिले रहेंगे? इससे पहले कि हम लोग भी एक दूसरे के लिए बेगाने हो जाएं, तुम दोनों मिलकर घर, दुकान और जमीन जायदाद की जिम्मेदारी उठा लो। मुझे कोई तकलीफ नहीं है इससे। अरे क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो?
2: मुझे माफ कर दीजिए भैया, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही दो भाइयों के बीच दरार पैदा करने की सोची। मैं आपको नहीं जान पाई थी शायद, मैंने आपको बहुत गलत समझा भैया, मगर आप
1: अरे अरे अरे अरे, रो मत, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कोई भी नई बहू ऐसा सोच सकती है। अगर तुमने मुझे सीधे से ये बात कही होती तो भी मेरा फैसला यही होता, क्योंकि विद्या मेरा भाई नहीं, बेटा है।
2: भैया, मैं ही स्वार्थी हो चली थी, मेरे स्वार्थ के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए।
1: मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया
2: जी।
1: अब कभी मत भूलना कि स्त्री तो घर की धुरी होती है
2: जी,
1: जिसके दम पर घर का चक्र चलता है।
0: मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं अपनी पत्नी के प्यार में छुपे स्वार्थ को नहीं देख पाया।
1: चलो शुक्र है, वक्त रहते

0: घर पर आने वाला संकट टल गया। पश्चाताप के आंसुओं के प्रताप से तो बड़े बड़े पाप माफ हो जाते हैं। पता नहीं तुम लोग कैसे भूल गए कि जो शांति, प्यार और एकता एक परिवार में है, अकेले में कहाँ।
1: भैया, आपने हमें सच में माफ कर दिया है ना?
0: वैसे कहते हैं, गलती इंसान करता है और माफ ईश्वर करता है। फिर भी मैं अपनी तरफ से तुम्हें खुले दिल से माफ करता हूँ, अपने स्वार्थ के लिए।
2: अब इसका क्या मतलब हुआ जी?
0: ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान दूसरों की गलतियों को माफ करता है, ईश्वर फिर उसकी गलतियों को माफ करता है। समझी मेरी समझदार पत्नी?

0: अभी आप सुन रहे थे मुरलीधर बलवानी का लिखा ये नाटक बंटवारा। भूमिका सहित भाग लेने वाले कलाकारों का विवरण इस प्रकार है। डॉक्टर थे देशबंधु शुक्ला, रामप्रसाद, विजय दिंडोरकर, विद्या राम, अमित रिछारिया, ज्ञान प्रकाश, संजय मेहता, महिमा थी भारती ठाकुर, रानी की भूमिका निभा रही थी कंचन राजानी, दुलारी शिवांगी पवार और तीर्थ प्रकाश थे श्याम मुंशी। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: अभी आपने सुना मुरलीधर बलवानी द्वारा लिखित नाटक बंटवारा। प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए प्रस्तुत है पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन राग हमीर।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन राग हमीर। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे

बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने